0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी। स्वर रंजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिम

0: करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said that in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with the skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है PM सेतु। इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी ITIs को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP has secured 3 major posts in the Delhi University Students Union DUSU elections. ABVP's Yash Dabas won the post of president, while Riya Chavri secured victory for secretary and Lakshya Raj Singh for joint secretary. However, independent candidate Dipanshu Shaukeen emerged victorious for the position of vice president. Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah have congratulated ABVP for their success in the DUSU elections. Mr. Singh said this victory is a symbol of the unwavering faith of the youth in the nation first policy. In his message, Mr. Shah said that this victory reflects the unwavering trust of the youth in ABVP's ideology of nation first and its commitment to student welfare. BJP President Nitin Naveen said this victory reflects the youth's continued faith in positive and constructive student politics rooted in the spirit of nation first. He said it shows their strong resolve to contribute to the

श्रोताओं, ईश्वर को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन में प्रेम जगाइए और उस प्रेम को भक्ति में बदल दीजिए।

जहां सच्चा प्रेम है वहां प्रभु है, जहां सच्ची भक्ति है वहां शांति है, और जहां प्रभु का साथ है वहां जीवन की हर राह आसान हो जाती है। और अगर प्रेम की बात चले तो हम मीरा को कैसे भूल सकते हैं, जो कृष्ण भक्ति में, जो कृष्ण के प्रेम में सर्वस्व निछावर करती रहीं। जी हाँ, आइए उन्हीं की रचना सुनते हैं उमा गर्ग की आवाज़ में।

श्रोताओं, प्रेम हमें जोड़ता है और भक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां और अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। ईश्वर से यह मत कहिए कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, बस इतना कहिए, हे प्रभु, जब भी परेशानी आए मेरा हाथ मत छोड़ना।

0: इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के चिंतन कार्यक्रम में हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी से कुछ बातें। विषय है मन को स्वस्थ कैसे रखें।
2: घर में एक नियम, खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं हो सकता। जैसा अन्न है वैसा मन है, चाहे वो दूरदर्शन का ही सीरियल हो, लेकिन खाना खाते समय वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कोई चिढ़ रहा है, कोई नाराज हो रहा है, कुछ तो कहानी बनाएंगे ना, नहीं तो कहानी क्या होगी। एक बार कुछ सीरियल वाले सब बच्चे भाई बहने आए थे, मैं कहा कुछ तो अच्छी कहानी बना दिया करो। कहते रोज दिखाना है एपिसोड, अच्छा कैसे दिखा सकते हैं। मैं कहा क्यों? कहता क्या दिखाएंगे, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम सब बहुत खुश हैं, कल क्या दिखाएंगे उस कहानी के अंदर, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है फिर आप देखो, लेकिन खाना खाने के टाइम नहीं। अन्न के अंदर एक भी लो एनर्जी शब्द जाना नहीं चाहिए। अन्न से तन नहीं, अन्न से मन बनता है और मन से तन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। कर सकते इतना सा 10 मिनट अपने घर में हाथ उठा, और वो नियम है और वो आपके बच्चों पर भी लागू है, उनको भी नहीं यूज करना। कौन करवा सकता है अपने बच्चों से? पक्का कर देना, नियम करवा सकते हैं, करवाना ही है। एक ये भी एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, और हम वो वाले हैं जो कहते थे मम्मी पापा ने बोल दिया, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो उन्होंने बोला वो ही करना है, राइट के नहीं? जस्ट बिकॉज हम नौकरी कर रहे हैं और हम कम समय घर पे बिताते हैं, तो उस गिल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए अपने बच्चों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती है, ये उनका नुकसान कर रही है। वो ना नहीं सुन रहे, वो झुक नहीं रहे, फिर जीवन जब उनको ना बोलता है तो उनके पास वो ना सुनने की ताकत नहीं होती है। तो थोड़ा सा ना बोलना शुरू कीजिए। कौन कौन बड़े होते हुए बहुत ना सुने थे? कितने ना सुने, इतने ना सुने, फिर उतना नहीं, बस उसका 10% भी ना बोल दिया ना, उनको तो

0: उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अभी पहुंचते ही लेट हैं, फिर वो भी बोलते हैं एक तो आए लेट, ऊपर से फिर मना करे, तो अच्छा चल ठीक है। बट ये जो हमने किया ये उनको कमजोर बना रहा है। जीवन उनके सामने हांजी नहीं करने वाला हमेशा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो ऐसे बच्चे जो ऐसे पले जिनके माँ बाप ने कहा हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और वो कट्ठे शादी हुई, अब ये कैसे जिएंगे एक दूसरे के साथ? इन दोनों को हाँ हाँ सुनने की आदत है ना, तो इनको सुनने की आदत नहीं है, इसलिए इस समय रिश्ते टूट रहे हैं। 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, अरे 1 साल तो ट्राई करने में ही देना पड़ता है पहले एडजस्ट करने के लिए, लेकिन उतनी ताकत भी नहीं है। और रीज़न क्या? क्योंकि जब पहले बच्चे बड़े हो रहे थे, आपने कुछ बनाया, उन्होंने कहा मुझको नहीं खाना, हमने कहा खा लो मुझको नहीं खाना, इसी तरह वो कहते हैं मुझको नहीं रहना इनके साथ। वो इतना मतलब उसको कैजुअल कर दिया, इतना ईजी कर दिया, क्योंकि उनको लगा यही तरीका है जी। तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए, खाना नहीं खाना फोन और टीवी के साथ, उसका असर सिर्फ मन पर नहीं, ब्रेन पर, बॉडी पर। ये बच्चे इसके बाद कभी नहीं खाना खा पाएंगे अपने आप के साथ। और वो जो शब्द वो सुन रहे हैं फोन और टीवी से, वो हर शब्द उस अन्न के अंदर जा रहा है। तो पहले वो कंटेंट मन पर असर कर रहा है, फिर वो अन्न के थ्रू उनके मन पर असर कर रहा है। इतना सब करके डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, तो क्या होगा फिर? और एकाग्रता नहीं जाएगी तो क्या होगा फिर? और ठीक है, कर लें इतना सा। और एक चीज ऐड करनी है, रात को सोने से पहले 15 मिनट कंटेंट अंदर डालना है, जो हम बनना चाहते हैं उसको डालना है। मतलब आध्यात्मिक कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट, जिसके अंदर पवित्रता, शुद्धता, शांति, शक्ति, सुख, एकता, सम्मान, क्षमा, ये शब्दों का कंटेंट डालना है। रात को सोने से पहले डालने से वो सारी रात आपके मन और शरीर पर काम करेगा। सोने का समय सही कौन सा है? 10 से 4। मतलब भले आप 5 बजे तक सोचे, पर 10 बजे सो जाना चाहिए। अगर 10 की जगह 11 सोए, आपके मन और शरीर की हीलिंग को 1 घंटा कम मिला। ये सारी चीजें मन और शरीर पर असर कर रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 54।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायु वेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं संभाव्य भूराजनैतिक संकटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापी यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयम् 170,000 मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96,500 स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवा शाखानां आध्यात्मिक समूहानां शीर्ष व्यापार प्रकोष्ठानां महाविद्यालयानां स्थानीय संघटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां संचालनाय विशाल राष्ट्रिय जालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु विशेष शिविराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्य अभियानस्य उद्देश्यं नागरिक नूतन समावेशने निर्वाचक सूच्यां प्रस्तावित समावेशनस्य अथवा नाम विलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचक सूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा है कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
3: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिस इश्यू होते जाएंगे।
2: दिल्ली पुलिस

में द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है और उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे

यह आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में एबीवीपी की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा है कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये छात्र कल्याण के प्रति एबीवीपी की प्रतिबद्धता को लेकर युवाओं में दृढ़ विश्वास बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि ये जीत विकसित भारत के लिए योगदान के प्रति विद्यार्थियों के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जापान में 20वें एशियाई खेल में भारतीय निशानेबाज एलेवेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा दोनों श्रेणी में मुकाबले में उतरेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लीजिए सुनिए, पारंपरिक की ये रचना, मुझे प्रेम का अमृत पिला दो प्रभु।

0: इसी के साथ आज का संगीती का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, टीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई संभावनाएं लेकर आती है, इसलिए आज की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है हौसला और निरंतर प्रयास। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी मंजिल दूर दिखाई दे, लेकिन जो व्यक्ति, जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास रखता है और वो नई उम्मीद के साथ हमेशा हमेशा खड़ा रहता है, संघर्ष करता रहता है, तो एक दिन वो अवश्य सफल होता है।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत मुस्कान, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ कीजिए। ये छोटी छोटी खुशियों को अपनाइए और अपने परिवार और अपनों के साथ समय बिताइए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सूरज हर शाम को ढल जाता है लेकिन हर सुबह फिर नई रोशनी लेकर आता है। इसी तरह जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आए, उम्मीद का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के लिए सिर्फ चाहत नहीं बल्कि जिद और जुनून भी चाहिए। जब रास्ते मुश्किल हों, लोग कहें कि यह संभव नहीं है, तब अपने दिल की आवाज़ सुनना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही असली हिम्मत है, क्योंकि जिद्दी दिल हार मानना नहीं जानता। जी हाँ, गिर कर फिर उठना, रुक कर फिर चलना और मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है। तो आज की

वह अपने अंदर के उस जिद्दी दिल को जगाइए और खुद से कहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा क्योंकि मेरी मंजिल मेरा इंतजार कर रही है। जी हाँ, और इसी जोश और जुनून के साथ सुनते हैं फिल्म मैरी कॉम का ये गीत।

विशाल डडलानी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का गीत अमित त्रिवेदी की आवाज में।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ी कर देती है जहां लगता है कि सब कुछ बस खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि हर ठहराव के बाद नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। बस जरूरत है फिर से उठने की, फिर से सपने देखने की और फिर से उड़ान भरने की। क्योंकि हार वही है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर दिल में विश्वास हो और आंखों में सपने, तो इंसान एक बार नहीं, बार बार उड़ सकता है। जी हाँ, तो आज की इस खूबसूरत सुबह खुद से एक वादा कीजिए, जो छूट गया उसे पीछे छोड़ेंगे, जो पाना है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, और इसी नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई उड़ान के साथ सुनते हैं फिल्म रॉकस्टार का ये बेहद ही खूबसूरत गीत मोहित चौहान की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है और मुझे अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल,

0: फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से

0: भारतीयों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल मिलाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है।

0: जिसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डिगोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय

0: 1965 war hero Cook passes away. The legendary Indian Air Force fighter pilot, Flight Lieutenant Alfred Cook, played a crucial role in defending Kalaikunda in the 1965 Indo-Pak War and was awarded the Veer Chakra for the classic dogfight. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100-week Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman Nicobar. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने अगले महीने की एक तारीख से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खुसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू इस्तेमाल के एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक जरूरी होगी। काबिल इतलाक सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी ग्राहकों को इन मराकज से सिलेंडर हासिल करने के लिए बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का अमल पूरा करना होगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: बायोमेट्रिक आधार तस्दीक इस बात को यकीनी बनाती है कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सिर्फ मजाज और अहल कुंभों तक ही पहुंचे। हर कनेक्शन को आधार तस्दीक से जोड़ने से घरेलू इस्तेमाल के गैस सिलेंडरों के कमर्शियल और सनती इस्तेमाल में डाइवर्जन की रोकथाम होगी। इसके अलावा इससे जाली और गैर मजाज कनेक्शन खत्म करने में भी मदद मिलेगी और सब्सिडी फराहम करने का अमल शफाफ और मरकूज हो सकेगा। वजारत ने कहा है कि बायोमेट्रिक आधार तस्दीक का मकसद किसी भी मजाज कुंबे को एलपीजी फराहम करने से इनकार करना नहीं है। वहीं वजारत ने यह भी कहा कि हर ग्राहक के पास इस अमल को पूरा करने के कई आसान तरीके दस्तियाब होंगे। वजारत ने कहा कि 27 करोड़ 43 लाख सारिफीन पहले ही इस अमल को पूरा कर चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तस्दीक का यह अमल सिलेंडर की डिलीवरी लेते वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम जाकर या तेल मार्केटिंग कंपनियों के एप्स पर भी पूरा किया जा सकता है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने अब तक बायोमेट्रिक तस्दीक न करने वाले सारिफीन से अपील की है कि वो इस काम को 1 अक्टूबर 2026 से पहले मुकम्मल कर ले। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
2: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के 100 हफ्ते के तहत आज मुल्क भर में नौजवानों की शमूलियत वाले प्रोग्राम होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने बताया कि मुल्क भर के 1067 मकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का इनेकाद होगा। इन मकामात में 471 जिले माय भारत दफातर और 596 शराकतदार तंजीमों के मकामात शामिल होंगे। ये तकरीब मुल्कगीर सतह पर नौजवानों की शमूलियत का अहम लम्हा होगा, जिसमें माय भारत, शराकतदार तंजीमें और नौजवान अफराद सेहतमंदाना फैसलों और नशा मुक्त मुस्तकबिल के अहद के लिए यकजा होंगे। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, जिसे पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने 18 सितंबर को सरहदी जिले पठानकोट से शुरू किया था, रियासत के अवाम की जानिब से इसे जबरदस्त पजीराई मिल रही।

0: है। दिल्ली की वज़ीराला रेखा गुप्ता ने कल फतेहगढ़ साहिब से यात्रा के चार मरहलों में से दूसरे मरहले का आगाज करते हुए इसे पंजाब में एक नई तहरीक का आगाज करार दिया। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब यात्रा महज एक सियासी प्रोग्राम नहीं बल्कि पंजाब को मुनशियात, जराइम और खौफ से आज़ाद कराने की इज्तिमाई कार्रवाई की अपील है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: 13 दिन तक जारी रहने वाली नशा मुक्त पंजाब यात्रा जो भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ शुरू हुई है, पंजाब को दरपेश तीन बड़े चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज कर रही है। ये चैलेंजेस हैं मुनशियात का बढ़ता हुआ मसला, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदनवानी। यात्रा रियासत में 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और तमाम 117 संभली हलकों से लोगों को मुतहरिक करेगी ताकि मुनशियात के खिलाफ जंग को एक बड़े अवामी एहतजाज तहरीक में तब्दील किया जा सके। तीसरी यात्रा आज कानून इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से फाजिलका के सादिकी सरहदी इलाके से शुरू की जाएगी। कल चौथे मरहले का आगाज मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी की जानिब से भटिंडा के तलवंडी साबोह से किया जाएगा। नशा मुक्त पंजाब यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में इख्तिताम पजीर होगी, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की शिरकत मुतवक्के है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में नई तकरीरी पाने वाले 51,000 से ज्यादा नौजवानों में तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हालिया बरसों में नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी महारतें और मौके फराहम करने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज की है।
2: बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने का प्रयास, हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनकी स्किल्स बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चले। जैसे एक उदाहरण है पीएम सेतु, इस योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 सरकारी आईटीआई को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्री की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफर जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अंतक अजम से इबारत है, जो आज भी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इसी नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के लिए हुसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाइख्तियार बनाने के जरिए ये अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज़ के तहत अशिया और खिदमत टैक्स GST के तारुफ के जरिए इस नज़रिए को कार्रवाई में बदलने का जायज़ा पेश किया जा रहा है।
1: अशिया और खिदमात टैक्स GST साल 2017 में मुतारफ कराया गया था, जिसका मकसद मुख्तलिफ मरकजी और रियासती टैक्सों में तकसीम बाजार को वसीतर टैक्स निज़ाम में लाना था। इस मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत 17 टैक्सों और 13 सेस को यकजा किया गया और एक मुल्क एक टैक्स एक बाजार को हकीकी शक्ल दी गई। GST से पहले बैन रियासती नकल व हरकत में मुतअद्दिद टैक्स, कागजी कार्रवाई और तवील इंतजार शामिल होता था। GST शरहों की मौजूदा इस्लाहात का सनत और आम आदमी दोनों ने खैर मकदम किया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के चेयरमैन और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर डॉक्टर विजय कलंतरी ने कहा कि टैक्स शरहों को मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम आहंग करने से शहरियों की टैक्स अदायगी के तहत हौसला अफजाई हुई है। मुंबई की पेशावर नेहा कुलकर्णी ने कहा कि ज़रूरी अशिया पर GST की गई कमी से उनके कुंबे के माहाना अखराजात में कमी आई है और बजट में इजाफा हुआ है। पिछले 9 साल के दौरान GST इस्लाहात में टैक्स के निज़ाम को आसान बनाया है, जाब्तों की तामील को सहल किया है और सार्फीन और कारोबारियों को राहत पहुँचाई है। इसके नतीजे में शहरियों की ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: इंतखाबी कमीशन आज कौमी राजधानी दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंप मुनक्किद करेगा। दिन भर जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद शहरियों को वोटर फहरिस्त में नए नाम शामिल कराने, मुजवजा नामों की शमूलियत या अखराज पर एतराज दर्ज कराने और वोटर फहरिस्त में मौजूद मालूमात और तफसीलात दुरुस्त कराने में मदद फराहम करना है। बूथ सतह के अफसरान BLOs मुकर्रा पोलिंग बूथ्स पर मौजूद रहेंगे और दरख्वास्तें वसूल करेंगे। नए वोटर के इंदराज के लिए फॉर्म 6, किसी नाम के इंदराज पर एतराज या नाम हजफ कराने के लिए फॉर्म 7, जबकि वोटर फहरिस्तों में किसी भी मालूमात को दुरुस्त कराने या अपडेट कराने के लिए फॉर्म 8 जमा कराया जा सकता है। कौमी राजधानी में जारी खसूसी जाम नजरसानी SIR के सिलसिले में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर अशोक कुमार ने वाजे किया कि इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसरान EROs समाअत के दौरान नोटिस में दर्ज दस्तावेजात के अलावा दीगर दस्तावेजात को भी केस की नौयत के मुताबिक जेरे गौर ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस के साथ मुंसलिक दस्तावेजात की फहरिस्त हतमी या मुकम्मल फहरिस्त नहीं है। वोटर अपना नाम, तारीख पैदाइश या नोटिस में मजकूर दीगर तफसीलात साबित करने के लिए मुतालिका दस्तावेजात पेश कर सकते हैं, जिन पर ERO हर मामले को अलग से देखते हुए फैसला करेगा।
1: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन DUSU इंतखाबात में 3 अहम ओहदों पर कामयाबी हासिल की है। ABVP के यश दबास सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि रिया चावड़ी ने सेक्रेटरी और लक्ष्य राज सिंह ने जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों पर जीत दर्ज की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने DUSU इंतखाबात में जीत हासिल करने पर ABVP को मुबारकबाद दी है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुजाकिरात दोबारा शुरू करने के लिए बैन अलाक्वामी सालिसकारों को अपनी शरायत से वाकिफ करा दिया है। वहीं ईरान ने यह भी इंतबाह दिया है कि अगर वॉशिंगटन उसके मुतालबात को ठुकरा देता है तो तेहरान फैसला कुन जंग के लिए तैयार है। इस दौरान अमेरिका ने अपने शहरियों से कहा है कि वह इलाकाई कशीदगी, जंग में अचानक मुमकिन तेजी, परवाजों में रखना और अमरीकी मफादात पर हमलों के तनाजुर में मगरबी एशिया के अपने सफर पर नजरसानी करें। यह मशवरा ऐसे वक्त में दिया गया है जब यमन के हूसी लड़ाकों ने सऊदी अरब की जानब मिजाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहेर, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार जजायर में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज ओलंपियाड में मर्दों की भारतीय टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। इस दौरान R प्रगनंदा ने डेविड एंटन गुइजारो के खिलाफ ड्रॉ खेला, वहीं निहान सरीन को भी जेमी लतासा के खिलाफ ड्रॉ खेलना पड़ा। वहीं खवातीन के जुमरे में भारत ने मंगोलिया के खिलाफ 3-1 की जबरदस्त जीत हासिल की। भारत की सविता ने मशहूर खिलाड़ी मंगुथुन बतखुया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए लगातार 4th जीत दर्ज की है। उज़्बेकिस्तान के समरकंद के सिल्क रोड इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में आज 46वें फीडे शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड के मुकाबले होंगे। ये मुकाबले भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुनाक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामे इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, गुज़श्ता 12 वर्षों में माहौलियात के लिए भारत ने गैर मामूली पेशरफ्त की। रोजनामा प्रताप ने हाई कोर्ट्स में जजों की तकरीरी से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये करते हुए सुर्खी लगाई है। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 14 नए जजों की तकरीरी की मंजूरी दी। रोजनामा इनकलाब ने सऊदी वजारत दिफा के ऐलान की खबर को शह सुर्खी बनाते हुए लिखा, दिफाई बहरी इतिहाद के 4th मनसूबाबंदी इजलास में 41 ममालिक की शिरकत। अखबारात की कुछ अहम बैन अल्अक़वामी खबरें इस तरह हैं। ग्रीनलैंड पर

0: अमरीका और डेनमार्क के दरमियान माहिदा, इस्लामाबाद माहिदा दोबारा बहाल करने की कोशिश जारी, ईरान का बयान।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने अगले महीने की एक तारीख से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की रीफिलिंग के लिए आधार बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी करार दिया है। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज मुल्क भर में 1067 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा है। इंतखाबी कमीशन आज दिल्ली के तमाम पोलिंग मराकज पर खसूसी कैंपों का इनेकाद करेगा, ताकि शहरियों को वोटर फहरिस्तों में नाम शामिल करने या उन्हें हजफ करने से मुतालिक मदद फराहम की जा सके। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार जजायर में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारत की मर्दों की टीम ने स्पेन के खिलाफ 3-1 से शानदार कामयाबी हासिल की है, जबकि खवातीन की भारतीय टीम ने भी मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, जब कोई रचना समाज के तय दायरों को चुनौती देती है तो वह केवल पढ़ी नहीं जाती, उस पर बहस होती है, असहमतियां उभरती है और सवाल खड़े होते हैं। क्या घरेलू जिम्मेदारियों को संभालता पुरुष वाकई पितृसत्ता की जड़ों पर प्रहार है, या फिर यह मात्र काल्पनिक और सुविधा भोगी प्रयोग? क्या लेखक ने दाम्पत्य के यथार्थ को सही ढंग से छुआ है, या पाठक की नजर में कहानी कहीं लड़खड़ा गई है? पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में लीजिए सुनिए सुरजीत सिंह जलैया की कृति हाउस हस्बैंड पर चर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ लेखक, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री राहुल सिवाय, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉक्टर रजनी सिंह और युवा पत्रकार श्रीमती शिल्पा गुप्ता। चर्चा का संचालन कर रही हैं शिल्पा गुप्ता।
3: घर आखिर होता क्या है? चार दीवारें, कुछ रिश्ते और ढेर सारी जिम्मेदारियां। लेकिन जब इन जिम्मेदारियों को निभाने वाला पुरुष हो तो क्या समाज की नजर बदल जाती है? साहित्य समाज का आईना ही नहीं, बल्कि कई बार वह सवाल भी है जिसे समाज पूछने से बचता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक उपन्यास की, जो परिवार, रिश्तों, पुरुष की पहचान और समाज की बनी बनाई धारणाओं को एक नए नजरिए से हमारे सामने रखता है। उपन्यास है हाउस हस्बैंड। नाम सुनते ही एक सवाल मन में आता है। हाउस वाइफ शब्द तो हम बहुत सहजता से सुनते आए हैं, लेकिन हाउस हस्बैंड सुनकर हमारे मन में इतनी जिज्ञासा क्यों पैदा होती है? इसी सवाल के बहाने आज हम जानेंगे इस उपन्यास की कथा। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद
5: धन्यवाद।
3: राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हाउस हस्बैंड जब आपके पास प्रकाशन के लिए आई, पढ़ने के बाद आपके मन में सबसे पहला विचार या सवाल क्या आया?
5: जब भी कोई किताब हमारे पास आती है तो हम दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, एक तथ्य कैसा है और उसका शीर्षक कैसा है। क्योंकि कोई भी किताब वह बिकती बाद में है, सबसे पहले उसके शीर्षक को देखकर ही उसका पाठक आकर्षित होता है, उसका बाजार आकर्षित होता है। तो हाउस हस्बैंड नाम सुनते ही मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर यह उपन्यास किस प्रकार का है। मन में बहुत सारी बातें उठी कि क्या यह पुरुष विमर्श को लेकर लिखी गई कुछ बातों का उपन्यास है, या इसके अंदर की जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं वो पाठकों के साथ साथ बाजार को कितना प्रभावित कर पाएगी, क्या लोग उसकी तरफ देखेंगे। तो पहला प्रश्न तो बिल्कुल क्लियर था कि हाउस हस्बैंड जिज्ञासा तो पैदा कर रही है, तो इस रूप में इस किताब को लाने से हमें फायदा होगा। हमने किताब को देखा, सुरजीत से हमने बात भी की और हमें जो लगा हमने कुछ सुझाव भी दिए, और सुजीत ने उसको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया और एक बेहतरीन किताब, जो कि अपने लगातार जिज्ञासाओं के साथ साथ संदर्भ और मनोविज्ञान तीनों को प्रस्तुत करती है, आज हमारे सामने है।
3: जैसा कि राहुल जी ने कहा कि किताब का शीर्षक ही काफी अलग है, तो नृत्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाउस वाइफ हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हाउस हस्बैंड तो क्या लगता है, सिर्फ एक भूमिका है या इसके पीछे पुरुष की पहचान और सामाजिक सोच का भी सवाल छुपा है?
4: शिल्पा जी, ये जो नाम की अपनी सार्थकता है ना, ये किसी भी रचना के साथ बहुत गंभीरता से जुड़ा विषय होता है। ये आकर्षण भी होता है और उस रचना का प्रतिदर्पण भी होता है। अब ये जो शब्द है कि हाउस हस्बैंड और हाउस

0: वाइफ चलता रहा अब तक, लेकिन पहली बार एक इस तरीके के विमर्श को केंद्र में लाना या एक रचना के रूप में सामने लाना सचमुच कई तरीके की जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है। मैं जब ये उपन्यास पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि लेखक ने बीच में लिखा, ये जो जब रचना कर रहे हैं तो उन्होंने नाम दिया इसको घर का आदमी, लेकिन ये बाद में परिवर्तित हुआ, क्योंकि घर का आदमी कह देने से वो आकर्षण नहीं आ पा रहा है, वो भाव नहीं आ पा रहा है, वो संदेश नहीं आ पा रहा है, और जो परत जिसको आप उघाड़ना चाहते हैं वो परत नहीं उघड़ पाती है। इसलिए जब ये नाम आया कि हाउस हस्बैंड, तो एकाएक ना आपको ये आकर्षित करता है और उसके बाद विवश करता है कि आखिर इसमें ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं कि अब हाउस हस्बैंड किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये जो इस के शीर्षक में आकर्षण है और जो विषय उठाया गया, देखिए अभी तक की जो शिल्पा जी व्यवस्थाएं हैं उसमें हम यही देखते आ रहे हैं कि स्त्री पुरुष, और उसमें भी स्त्री की भूमिका नारी के रूप में, और हम कह देते हैं कि घर की चार दीवारी में, लेकिन वहां से आगे समाज बहुत आगे आ गया, बहुत दूर तक हम लोग यात्रा कर चुके हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष बराबर की भूमिका में है कि दोनों आजीविका के क्षेत्र में जा रहे हैं और दोनों मिलके बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं। लेकिन बधाई देनी होगी सुरजीत मान को कि उन्होंने एक नए विषय को इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया है कि कुछ विषय और भी हैं, चिंताएं और भी हैं, और ये चिंताएं यदि समाज आज इन पर ध्यान नहीं देगा तो कल बड़ी भारी हो जाएंगे।
1: जैसे कि डॉक्टर नित्य ने कहा कि हम स्त्री और पुरुष की भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर रजनी आप महिला हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, प्राध्यापक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस उपन्यास की खास बात आपको क्या लगी, कहानी, पात्र, भाषा या फिर वह सामाजिक सवाल जिसे ये उठाता है।
2: शिल्पा जी, इस उपन्यास को जैसे मैंने पढ़ा और मेरी नज़र में इस उपन्यास में सभी चीज़ें जो आपने मेरे से पूछी अपनी अपनी जगह पे सभी बहुत बेहतर हैं। अब बात शुरू करूंगी मैं उपन्यास के शीर्षक से, हाउस हस्बैंड। अब हिंदी में उपन्यास है और शीर्षक उन्होंने दिया है हाउस हस्बैंड, वो क्यों दिया, क्योंकि समाज में हाउस वाइफ ही प्रचलित है नाम पहले से, तो उन्होंने हाउस हस्बैंड दिया। सबसे पहले तो सुरजीत को मुबारक है हाउस हस्बैंड के लिए। अब बात है कि कुछ नए शब्द जो उन्होंने चुने इसमें, वो शब्द साधारण है लेकिन उन्होंने खुद के लिए, जैसे एक उदाहरण दूंगी मैं इसी उपन्यास का, जब मैंने उस उपन्यास को पढ़ा तो उन्होंने खुद को कहीं लिखा है दीवार का सुराख, तो सुरजीत जी कहते हैं कि मैं खुद को एक दीवार का सुराख महसूस कर रहा हूँ, जिसके अंदर झांकना तो हर कोई चाहता है लेकिन उस सुराख को, उस कमी को, उस कमजोरी को, उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर रहा और उस दर्द को कोई भरने की कोशिश नहीं कर रहा। समाज में जो उनको ताने मिल रहे हैं उन तानों को वो एक गिद्ध का रूप मानते हैं। लेखक ने खुद ही कहा कि तानों की जो तुलना है वो गिद्धों से करती है, जो मृत शरीर का मांस नहीं खाते बल्कि अपनी जीभ और अफवाहों से एक जीवित व्यक्ति के आत्मसम्मान को देख रहे हैं। और इसी तरीके से एक समाज में जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज की परंपरा चल रही है उसकी एक संकीर्ण सोच जो समाज में है उसको उन्होंने उभार के सामने लाए।
1: अब हमारे साथ इस किताब के लेखक सुरजीत मानजलिया सिंह भी फोन पर जुड़ रहे हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं।
3: नमस्कार। सच कहूं तो वक्त को कौन समझ पाया है, जब कुछ हो रहा होता है तब तो जरा भी नहीं पता चलता कि क्या हमारे भले के लिए है और क्या बुरे के लिए। ये सब तो बहुत बाद में समझ आता है। और अगर इस किताब की बात करूं तो सच बताऊं, मैंने कोई उपन्यास सोच समझकर लिखा ही नहीं था। बस दिन भर के काम काज के बाद जो फुर्सत मिलती, अकेले में बैठकर जो मन में आता वो कागज पर लिख लेता था। पन्ने भरते गए, दिन बीतते गए और बात यहाँ तक आ पहुंची। वो तो असल में मेरी डायरी के पन्ने थे, कब पूरा उपन्यास बन गए मुझे खुद पता नहीं चला। पर अच्छा ही है ना अगर अपने घर की आम बातें और अपनी खुद की कहानी भी एक किताब बन सकती है, तो हम सब लिखने वालों के लिए इससे बढ़िया बात और क्या होगी।
1: इन्होंने बिल्कुल ऐसे कहा जैसे अपने दिल की बात तो इन्होंने किताब में तो डाली ही और अब अपने शब्दों में भी डाली है। तो राहुल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में।
4: देखिए, जब भी हम किसी चीज को अपने हृदय से, अपनी संवेदना से, अपने जीवन, अपने भावों से जोड़ देते हैं ना, तो उसका विस्तार अपने आप दूसरे के दिल से जुड़ जाता है। आप एक तरह से कहिए कि सुरजीत का ये कहना कि ये सिर्फ डायरी के पन्ने नहीं, धीरे धीरे जो ये उपन्यास के स्वरूप में हमारे सामने आया, वह ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन से निकली हुई बात उसके पाठक के मन तक पहुंच रही है। वह उस तरीके से नहीं लिखता कि जहां पर उसे ये महसूस हो कि वह किसी प्रेमचंद के शिल्प को

0: फॉलो करना चाह रहा है या ज्ञानेंद्र की तरह लिखना चाह रहा है या किसी नए लेखक की तरह लिखना चाह रहा है, कुछ विशिष्ट करना चाह रहा है और वो दिखता भी है। सबसे विशेष बात यह है कि हाउस हस्बैंड को देखते हुए ना लोगों के मन में एक बात आती है कि यह जो हाउस हस्बैंड है यह पितृसत्तात्मक समाज या उसके विरुद्ध एक प्रयास और पुरुष विमर्श की बात करते हुए आगे बढ़ने वाला एक संग्रह होगा, लेकिन ऐसी चीज नहीं दिखती। वहां भी यह दिखाई देता है कि उस पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री है जो उसकी पत्नी है, जो कि एक विलन की तरह दिखाई देने लगती है बीच में। वो विलन नहीं रहती। जब वह उसकी डायरी को पढ़ती है और पढ़ने के बाद जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है और उसके बाद जब उसको प्रेरित करती है कि नहीं तुम इसको लिखो और अपने अंदर के लेखक को जीवित करो, तो वहां पर भी उस पुरुष के पीछे वह स्त्री दिखाई देती है जो उस पुरुष को आगे बढ़ाना चाहती है। विमर्शों के साथ यह बात मुझे मुख्य रूप से नजर आती रही है कि हम जब किसी विमर्श की बात करते हैं तो उसके केंद्र में जो वस्तु है उसके आसपास की सारी चीजों को या उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली चीजों को बिल्कुल उसके दुश्मन की तरह हम सामने रखने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी विमर्श जो है वह सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ता है। जैसे हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वह सह अस्तित्व के साथ बढ़ रहा है। किसी भी चीज को सफल या सफलता तक ले जाने के लिए एक साझा प्रयास की आवश्यकता है। इस उपन्यास में वह साझा प्रयास दिखता है और वह इसलिए दिखता है कि सुरजीत इसको कोई मसालेदार कहानी या किसी ऐसे ढंग के उत्तर की तरह परोसना नहीं चाहते कि जहां पर पढ़ने के बाद व्यक्ति अचंभित हो और लगे कि नहीं उसको इसने ठुकरा दिया और अंत में इसने ऐसा कर दिया और ये बहुत बड़ा कोई एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देने लगे। संपूर्ण रूप से जीवन उसमें साथ साथ दिखाई देता है। पढ़ते हुए आप आज की कहानी या उसकी तरफ इसको मत देखिए, इसके विषय और चीजों को नया देखें, लेकिन इसको पढ़ते समय यह महसूस करें कि 70-80 के दशक की जो फिल्में धीरे धीरे बढ़ती थीं, जिसमें पारिवारिक और आपसी सद्भाव प्रेम दिखाई देता था, जो छोटे छोटे परिवर्तन होते थे और अंत में एक सुखद कथा की तरह कहानी समाप्त हो जाती थी, तो ये पूरा उपन्यास उसी रूप में दिखता है। और ये इसलिए दिख पाता है क्योंकि सुरजीत जो है ये अपनी कहानी को उन्हीं डायरी से बाहर निकलते हुए सिर्फ शब्दों का नयापन देते हैं, उसे कोई काल्पनिक चमक दमक प्रदान नहीं करते हैं।
1: अगर हम मान के चरित्र की बात करें तो उसे किस तरह देखते हैं डॉक्टर नृत्य? क्या वह परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति है या अपनी पहचान को तलाशता हुआ एक आम इंसान?
2: शिल्पा, इस उपन्यास की ये बड़ी ताकत है जो प्रश्न आपने उठाया है। यद्यपि इससे पूर्व जो अभी चर्चा चल रही थी उसमें एक बात और भी कहने योग्य या मुझे ऐसा लगता है कि पाठकों तक पहुंचनी चाहिए, परंपरागत शिल्प का उपन्यास ही नहीं है। डायरी और उपन्यास के बीच की एक नई धरती विकास करता हुआ ये एक उपन्यास हमारे सामने आया है। अब रही बात इस उपन्यास के पात्र को और उसकी मानसिकता और उससे जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, तो देखिए एक बात तो हमें बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। प्रेम को केंद्र में रख के बात आरंभ हुई। उपन्यास जहां आरंभ होता है प्रेम से आरंभ होता है कि और ये प्रेम दो बेरोजगार युवाओं का ही और बहुत महत्वपूर्ण है। दो बेरोजगार आज के समय में प्रेम करें और उसके बाद उस प्रेम को गृहस्थ के रूप में परिवर्तित कर लें, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऐसा किया। यद्यपि बाद में थोड़ा संकेत मिलता है कि कुछ कार्य पूर्व में कर रहे हैं, जो महान है वो कर रहा है, लेकिन वो ऐसी स्थिति भी नहीं है कि बहुत जल्दी आसानी से निर्णय ले लिया जाए। तो बहुत सोच समझ के ये दोनों युवा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं। और इस निर्णय की जो चुनौतियां जो कि वो पूर्व में भास चुके, उन्हें आभास है कि इसकी चुनौतियां होंगी, और उन चुनौतियों पर बड़े गंभीरता के साथ बैठ के उन लोगों ने आपस में चर्चा की। और ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि समाज किस दृष्टि से देखेगा, और दोनों के हृदय में ना समाज को बनाए रखने की चिंता बहुत ज्यादा है। दोनों आपस में जब आरंभ में बात करते हैं तो उन्हें लगता है, मान कहता है कि देखिए वो उच्च कुल से है और मैं मध्यवर्गीय परिवार से हूँ, और वहाँ जो उच्च कुल की समस्याएं हैं वो मोनिका को बहुत घेरे हुए हैं। और वो कहता है कि उसकी बहन है, उसके माता पिता हैं, वो उस संस्कार से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी मान के। उसे कष्ट भी होता है, आप पूरा उपन्यास देखो, उसे कष्ट भी होता है कि जब वो बाद में देखता है कि जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं उसमें उसकी डायरी रखी है, और उस डायरी में और वहां एक बक्सा में बहुत सारा सामान रखा है, और उस बक्से में जिस समय वो अपनी पुरानी यादें खोजता है और वहां पर उसे एक चित्र मिलता है कि वो अपने पिता के साथ में है, तमाम उसके जीवन

0: जितनी भी संभावनाएं ना एकाएक साकार होती हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को बहुत संभालता है और उस रूप में संभाल के और कहता है कि नहीं, मुझे अपने आप को बनाए रखना है। देखिए लगभग लगभग पूरा उपन्यास अकेले मान के चरित्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोनिका की भूमिका है कुछ संवाद तक, और आप उसमें देखेंगे कि बहुत जगह अधूरापन नजर आता है। इस दृष्टि में सुरजीत को इस बार भी मैं ध्यान भी देना होगा, केशव और जिया यानी उसके पुत्र और पुत्री वो बच्चे भर के रह जाते हैं, लेकिन उनका कोई चरित्र, उनकी अटखेलियां, उनका रुदन, उनकी जिद वो कहीं सामने नहीं आ पाती है। जबकि आप हाउस हस्बैंड के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अगर वो स्कूल जा रहा है बच्चा तो बोले मम्मा मेरा लंच, जबकि लंच बना रहे हैं पिता। तो अब हाउस हस्बैंड की ये जो भूमिका है, और समाज में सिर्फ एक चरित्र इन्होंने बीच में दिखाया कि एक दत्ता जो है पड़ोसिन वो एक कमेंट करती हैं, या एक पड़ोसी आके कमेंट कर जाता है और वो कहता है कि आप हैं तो यह है। मोनिका सामने खड़ी और मोनिका को कहते हैं, उस दिन वो सामने होती है, बोले आप हैं तो ये है। और ये जो एक वाक्य होता है ना, मान के पूरे अस्तित्व को झंकार देता है। और आप देखेंगे कि नए शहर में जाके पहली बार मान अपना मुंह खोलते हैं, और वो भी तब खोलते हैं जबकि मोनिका सामने, और मोनिका उन्हें पूरा बचा दी है। लेकिन मान जिस तरीके से, जिस हिम्मत और जिस संघर्ष का साक्षी बनता है, ये आगे आने वाले समाज के लिए एक नजीर बन के होगा। और मैं ये मानता हूँ, और मैं ये जितने भी हमारे श्रोता या समाज जो भी सुन रहा है, इस बात का विशेष संज्ञान लेना होगा। देखिए लेखक बमुश्किल इस समय लगभग 35 साल की उम्र में है, लेकिन एक बालक जो इस तरीके की त्रासदीनुमा वातावरण में घिर जाए, ये आज एक मान है, कल एक दो तीन चार में परिवर्तित हो सकते हैं। समाज को इनके लिए मार्ग खोजना होगा। इस मान को भी जो कि कल हाउस हस्बैंड की भूमिका में आना है, आज अब उसे आप बचा नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको व्यवस्था देनी हो।
1: ये तो आपने हमें बताया कि मान की भूमिका के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा जाए तो कुछ संघर्ष, चाहे मेंटली लेवल पर भी हो, तो मोनिका के जीवन में भी था। तो डॉक्टर रजनी आपसे जानना चाहेंगे कि मोनिका की चरित्र को आप किस तरह से देखती हैं?
2: जी शिल्पा जी, जैसे कि अपने समाज में भी क्या है कि जब कोई स्त्री प्रगति करती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है, आगे बढ़ती है, तो समाज जो है उसे अप्रिशिएट करता है, उसे मोटिवेट करता है। लेकिन अगर कोई पुरुष घर संभाल रहा है, बच्चे संभाल रहा है, उनका ध्यान रख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बेकार है। लेकिन अब इस उपन्यास में जो हम देख रहे हैं कि मोनिका जो है वो भी जो मान अंदर महसूस कर रहे हैं, मोनिका भी कहीं ना कहीं, जैसे उनके कुलीग्स जो हैं, जब उनको ये कहते हैं कि आपके पति क्या करते हैं, तो मोनिका उनको बोलती है घर देखते हैं, तो उनके कुलीग जो है उनकी तरफ देखते हैं सवालिया नजरों से। वो आगे कहते कुछ नहीं है, लेकिन सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है इस चीज के लिए कि अगर वो घर देखते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं कर रहे। तो मोनिका जब इसके बारे में घर आके भी बोलती है, मान हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, और उस मुस्कान का जब जवाब मोनिका देखती है तो वो दे नहीं पाती, ना ही कुछ बोलती है वो, क्योंकि मान कुछ कहता ही नहीं आगे। अब अचानक उसके सामने डायरी आती है, क्योंकि ऑफिस से जल्दी आ गई, मीटिंग थी कोई, कैंसिल हो गई, अचानक से जल्दी आ गई। ऑफिस से आने के बाद जब उसने डायरी के पन्ने खोले, तो उसने वो बहुत सारी बातें पढ़ी जो उसने महसूस भी नहीं की थी। हम अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपने नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक ही घर में, एक ही कमरे में हम साथी के बारे में अंदर तक की बात सोच भी नहीं सकते कि वो क्या महसूस कर रहा है। मोनिका को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना घर बार, नौकरी, शहर, सब कुछ, लगाव जो होता है अपनी घर की खिड़कियों से भी, पंखों से भी, धरती से, सब हर जगह से भी ना, तो वो सारा कुछ छोड़ के जब वो अपनी पत्नी के साथ उसकी नौकरी के लिए गए, उसकी खुशी में उसका साथ दिया, तो मोनिका इस चीज से खुश थी। लेकिन जब उसे मोनिका को भी लेटर मिलता है या उसको फोन पे सूचना मिलती है नौकरी की, तो उसके मन में भी सवाल था, उसके मन में भी शंका थी कि मान आगे से क्या रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन मान का जवाब हाँ में था और वो उसकी खुशी में खुश थे। तो एक स्त्री होने के नाते भी इसमें मोनिका को सौभाग्यवती माना जाता है कि सौभाग्य था उसका कि उसने एक ऐसे पति को पाया कि जिसने अपना सब कुछ त्याग के अपनी पत्नी का साथ दिया उसकी नौकरी के लिए। लेकिन अब समाज की विडंबना देखिए आगे, समाज जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा।
1: कुछ भाव ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस हाँ महसूस किए जाते हैं।
0: शिल्पा जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। रजनी जी ने बहुत अच्छा सा जो इसका विश्लेषण किया है, देखिए मोनिका का चरित्र भले से संवाद में कम बोलता हो, लेकिन एक बात बहुत सिरे से मजबूती के साथ पक्ष प्रस्तुत करता है कि मोनिका अगर यहाँ मान को सपोर्ट न करे तो मान टूट जाता, खत्म हो जाता। मोनिका ने इतनी व्यस्तताओं के बाद कि वो रात को 11 बजे

0: भी आ रही है। और जिस दिन उसने देखा कि माँ ना बिल्कुल भीतर से देखती है ना कि टेबल पर वो रख के गया कि कॉफी साथ पियेंगे, और उस दिन जाके पूछती है उससे कि मान क्या बात है हम दोनों के बीच में, तो अगर ऐसा नहीं करती ना, मोनिका नहीं संभालती, तो आप देखते कि मान टूट जाता, इसलिए टूटने से बचता है। तो उसको धन्यवाद तो देना ही होगा आपको जी।
1: जी, एक इस किताब में प्रसंग भी है जली हुई रोटी। तो राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जली हुई रोटी

0: समय से स्त्रियां वो महसूस करती रही हैं बतौर हाउसवाइफ। तो हाउस हस्बैंड वाली जो पीड़ा है ना, वो हाउसवाइफ की पीड़ा से बहुत अलग नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि स्त्रियों के लिए यह कार्य है, घर का कार्य, उसको कर्तव्य की संज्ञा देकर उसको, मतलब जो है, हम एक उच्च मानक की तरह देखने लग जाते हैं। लेकिन जब हम पुरुष की तरफ जाते हैं, जब कोई कहता है ना कि आपकी माँ क्या कर रही है, आपकी पत्नी क्या कर रही है, जब उसको कहते हैं तो कहते हैं वो हाउसवाइफ है, तो उसको कभी इस रूप में हम नहीं देखते कि एक बेरोजगार स्त्री है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो हाउस हस्बैंड की भूमिका में आता है, तो वहां पर उसके काम के प्रति या उसके कर्तव्य के भाव को समाप्त करके अंदर का एक भाव सामने आता है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है, उसको कुछ काम नहीं मिला, या वो पत्नी के पैसे पर जीने वाला व्यक्ति है। इस तरह की स्थिति तक भी पहुंच जाती है बात, चाहे वो जलती हुई रोटियां हों या किचन के अन्य चीजें, दीवार हो, दीवार की सुराख हो, या जो भी है। देखिए, सुरजीत ने बहुत कोमल तरीके से इन चीजों को एक बिंब की तरह यूज किया है उस पूरे उपन्यास में। वो जब बोलते हैं ना, वो जली हुई रोटियां, तो लगता है जैसे कि सुरजीत के मन की पीड़ा जो है वो बोलने लगी है। और ये सिर्फ मन की पीड़ा नहीं है, मैं फिर कहूंगा कि लंबे समय तक जो स्त्रियां जो घर में काम करती रही हैं, उनकी पीड़ाओं को भी उन रोटियों ने बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त किया है, उन दीवार की सुराखों ने, उन वस्तुओं ने। तो सुरजीत ने सिर्फ लैंगिक परिवर्तन किया उसके अंदर, असल में उसके अंदर का जो पुरुष विमर्श है ना, वो अंदर के उस स्त्री विमर्श और उस दाम्पत्य विमर्श को भी जिंदा करता है, जो दोनों की तरफ सोचने के लिए आपको मजबूर करता है। वह अनकहे में इतनी बात कह रहा है जिसे पाठक जब देखेगा, जब उसको समझेगा, जब उसको महसूस करेगा और अपने जीवन से जोड़ेगा, तो कई नए प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है इस हिसाब से आपको आपका उत्तर मिल गया है।
1: जी हाँ, अगर हम साहित्यिक दृष्टि से बात करें तो क्या कोई बात ऐसी है जो सामने नहीं आनी चाहिए थी?
2: शिल्पा, देखिए, मुझे इस समय पंक्ति किन की है, किन शायर की है, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बात इतनी है कि अब वह मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। तो यहाँ पर मान को जितनी उलझन है ना, वो इसी बात की है। और जितना कथ्य उन्होंने बुना है, उस कथ्य में जो अपने आप को कहीं खोता हुआ पाते हैं, कि आरंभ में बात कही गई शिवाजी जी के द्वारा कि साहित्य तो समाज का दर्पण है, और मान कोई नई चीज अलग बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतनी सहजता से उस बात को हमारे तक पहुंचा रहे हैं कि समाज में ये भी है, और इस परिदृश्य को, इस दृश्य को हमें अब हृदयंगम करना है, हमें स्वीकार करना है। तो अगर आप साहित्यिक दृष्टि से देखेंगे, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुरजीत भी इस बातचीत को जरूर सुन रहे होंगे, जो अभी थोड़ा सा अनगढ़पन है कि एक आधे से ज्यादा हिस्सा बहुत गंभीरता के साथ और बहुत उलझनों को सुलझाने की कोशिश में जाता है, लेकिन लगता है कि बाद में, चाहे जली हुई रोटी की आपने बात कही, वो लगता है कि जैसे कुछ समेटने के अंदाज में आगे, जबकि मुझे लगता है अभी इस उपन्यास को समेटने की आवश्यकता नहीं थी। जहां पर उन्होंने इस पूरे कथ्य को समेटने की कोशिश की है, और बड़ी जल्दी से डायरी भी प्रस्तुत हो गई, जबकि वो अंधेरे रात में, जबकि दोनों के दो बिस्तर भी अलग हो गए हैं, बावजूद इसके वो अंधेरे कोठरी में जाकर के लिख रहा है इतनी जल्दी डायरी को, मेरे ख्याल से क्योंकि मोनिका को भी अभी उसकी और कीमत समझने की आवश्यकता थी, तब दोनों समानता से, क्योंकि लेखक लिख चुका है कि बोले जो अहंकार सरकारी नौकरी प्राप्त करके किसी पुरुष में आता है, वो स्त्री में भी आता है। तो ये जो अहंकार का गलना है ना, जो कि साहित्य के नजरिए से बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता थी। तो बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छा लिखा है और एक समाज को दिशा देने वाला उपन्यास लिखा है। सुरजीत को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो ये थी बातचीत हाउस हस्बैंड के बहाने घर, रिश्तों और बदलती सामाजिक सोच पर। कहते हैं घर चलाने के लिए सिर्फ कमाई नहीं, समझ, संवेदना और साझेदारी भी चाहिए। शायद इसी वजह से हाउस हस्बैंड हमें सोचने का अवसर देता है कि घर संभालना किसी एक लिंग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी है। और एक और बात, रिश्तों में बड़ा वो नहीं जो ज्यादा कमाए, बड़ा वह है जो साथ निभाए। इसी खूबसूरत विचार के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी साहित्य की एक नई रचना और एक नई विचार यात्रा के साथ। नमस्कार।
3: पाठक को शिकायत लेखक से क्रम में अभी आप सुरजीत मान जलैया सिंह की कृति हाउस हस्बैंड पर ये चर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक और समीक्षक श्री

0: राहुल सिवाय, वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापक डॉ. रजनी सिंह और श्रीमती शिल्पा गुप्ता चर्चा का संचालन कर रही थी शिल्पा गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रहे हैं युवा पत्रकार श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा।
1: साहित्य जब कला से मिलता है और कला को काव्य की संवेदनशीलता का साथ मिलता है, तब सृजन का एक ऐसा संसार आकार लेता है जो लंबे समय तक स्मृतियों में बना रहता है। ऐसा ही अनूठा दृश्य 13 सितंबर 2026 को जशाला फाउंडेशन दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित त्रिवेणी समारोह साहित्य काव्य एवं कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। ज्योति नगर दिल्ली में आयोजित इस समारोह में काव्य अनुगूज कवि सम्मेलन ने वातावरण को काव्यात्मक संवेदनाओं से भर दिया। कवियों की रचनाओं में जीवन, समाज और मानवीय सरोकारों की विविध छवियां दिखाई दी। वहीं समारोह का कला पक्ष अपने आप में बेहद अनूठा रहा। रस्सी चित्रकार सुरेश पाल वर्मा जसाला के रस्सी चित्रों की प्रदर्शनी ने उपस्थित साहित्यकारों और कला प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। सामान्यतः उपयोग में आने वाली रस्सी को कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर तैयार की गई उनकी कृतियों ने यह संदेश दिया कि सच्ची कला साधारण वस्तु में भी असाधारण संभावनाएं खोज लेती है। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर जयसिंह आर्य ने की, जबकि श्री जितेंद्र बच्चन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश प्रजापति, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह संत, श्री प्रीतम सिंह प्रीतम, श्री राजेंद्र वर्मा मंचासीन रहे। श्री रामचरण सिंह साथी, श्री निर्दोष कुमार शर्मा, श्री राजेश मंडार एवं श्री सोनू सागर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्वों की विशेष उपस्थिति रही। समारोह में दिल्ली NCR सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और समाज सेवी सहभागी बने। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 2026 को दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को अकादमी के सभागार में हिंदी के विकास में संस्कृत का योगदान परंपरा से आधुनिकता तक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संगोष्ठी में लगभग 100 विद्यार्थियों तथा 30 अतिथियों, साहित्यकारों एवं भाषा साहित्य से जुड़े विद्वानों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाषा विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि संस्कृत और हिंदी भारतीय संस्कृति, चिंतन और ज्ञान परंपरा की दो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। हिंदी की शब्द संपदा साहित्यिक अभिव्यक्ति और वैचारिक परंपरा को समृद्ध बनाने में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों भाषाओं के समन्वय से भारतीय भाषाओं को नई शक्ति और व्यापक अभिव्यक्ति मिल सकती है। शर्मा ने कहा कि आज डिजिटल युग में हिंदी तेजी से नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। विज्ञान, तकनीक, पत्रकारिता, सोशल मीडिया और रोजगार के क्षेत्र में हिंदी का विस्तार हो रहा है। ऐसे समय में संस्कृत से प्राप्त वैज्ञानिक शब्दावली और हिंदी की सहज अभिव्यक्ति का समन्वय भाषा के विकास को अधिक प्रभावी बना सकता है। दिल्ली संस्कृत अकादमी के उप सचिव प्रशासन श्री सौरभ कुमार मिश्र ने दोनों विशेषज्ञों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, दर्शन, साहित्य और वैज्ञानिक चिंतन की संवाहक भाषा है। कमला नेहरू महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने हिंदी के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालते हुए संस्कृत की शब्द संपदा, व्याकरण और साहित्यिक परंपरा के योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर संस्कृत विशेषज्ञ रेणु रतन मिश्रा, उपन्यासकार श्री सत्यपाल चावला तथा अध्येता शिव कुमार मिश्रा सहित अनेक साहित्यकार, शिक्षक और विद्वान उपस्थित रहे। सहायक परियोजना अधिकारी राजेश चंद्र वाजपेयी ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 15 सितंबर 2026 को हिंदी साहित्य परिषद एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अभिनंदन अपनी भाषा का शीर्षक से विशेष कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में हुआ। इस अवसर पर हिंदी भाषा एवं साहित्य के महत्व पर विचार विमर्श के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति सम्मान, आत्मीयता, गौरव की भावना को और मजबूत किया।
0: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे युवा पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र शर्मा। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
3: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी कवित्री डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल से। इनसे भेंट कर रही है काजल सूरी। नमस्कार श्रोताओ, हमारे अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट काजल। और आज हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में है एक जानी मानी कवित्री और लेखिका डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल। डॉक्टर उर्वशी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।
3: वो कहते हैं ना, लफ्ज जब एहसास बन जाए और ख्वाब जब हकीकत का रूप ले तो सफर खूबसूरत हो जाता है। डॉक्टर उर्वशी, आप जानी मानी कवित्री हैं, लेखिका हैं और इसके साथ बिजनेस में भी आपने बहुत नाम कमाया है, तो आपको जो सफर रहा है साहित्य के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में किस तरह से आपका सफर रहा, आपकी जो इस दोहरी शख्सियत की जो यात्रा है, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: इससे पहले मैं दो पंक्तियां अगर आप मुझे परमिशन दें तो। हसीन चेहरे सलाम तुमको, सुना रही हूँ कलाम तुमको, मेरी तरफ भी हो तवज्जो, मेरी तरफ से प्रणाम तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बात कर रही थी बिजनेस की,
3: आपके या सफर की?
4: मेरे सफर की, कम उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने ले लिए हैं। बिजनेस का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है 10 से 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने सबसे पहले मेरे ख्याल से मैंने एक बुटीक से अपने जीवन की शुरुआत की थी और उसके साथ साथ मैं एक्सपोर्ट में आई और फिर उसके बाद साथ साथ एक्सपोर्ट्स के साथ साथ मैंने अपने आउटलेट्स तक खोले। और भारत की धरती पर नहीं, भारत की धरती पर मैंने शुरुआत जरूर की, लेकिन उस शुरुआत को, उस आरंभ को, उस प्रारंभ को जो अंजाम दिया वो इंटरनेशनल धरती पर जाकर के दिया। और मैंने मलेशिया में बिजनेस किया था, लेकिन मेरी धरती ने मुझे वापस पुकारा और यू टर्न लेना पड़ा
3: जी।
4: तो किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा यहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर थी, शायद उस वक्त मेरी उम्र 35 या 36 बरस रही होगी। तो उसके बाद मैं वापस आई तो वो एनर्जी मेरे अंदर थी, मैंने कहा ना मैं एक चकाचौंध में आ गई थी, यानी कि लाइट्स में आ गई थी। लेकिन मैंने क्योंकि अपने आप को हमेशा एक क्षमा या फिर चराग से अपनी तुलना की, एक दीपक से अपनी तुलना की है, तो उस चकाचौंध में काजल दीपक का कोई काम नहीं होता। अगर हम सूरज की रोशनी में उस दीपक को जला के रख देते हैं तो कौन ही उसको देखेगा। तो मैंने एक अंधेरे कोने में अपनी जगह बनाई और अपने साहित्य को जगमगाने का काम किया और आज मैं आपके साथ आपके स्टूडियो में बैठी हुई हूँ।
3: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने,
4: बहुत शुक्रिया।
3: तो आपकी साहित्यिक यात्रा, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
4: जी जी काजल, साहित्यिक यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है। मीन्स मैं यही कहूंगी कि जब हम लिखना शुरू करते हैं या लिख लेते हैं और हम अपने आप को आंकने लग जाते हैं कि हमने 2, 4, 5, 6, 10 किताबें लिख ली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक मीन्स प्रैक्टिस होती है। साहित्यिक यात्रा तो अब शुरू हुई है, अब हम अपने अग्रज अपने बड़ों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से ये यात्रा बहुत आगे तक जाएगी। और इस यात्रा में जो मेरे माइलस्टोन्स रहे हैं, मैं शबरी हूँ राम की एवं व्यथा कहे पांचाली जैसी अनेक पुस्तकें मैं नहीं लिख पाई हूँ, बट हां जी, मैं गजल मेरा पैशन है उस पर मैंने 5 किताबें कही हैं, बेसिक बनाम डिजिटल बचपन पर मैंने हमारे जमाने और हमारे मम्मी पापा के जमाने या फिर इनके हमारे दादी दादा के जमाने की बात करने की कोशिश की है और उसको मैंने रिलेट किया है आजकल के बचपन के साथ। इस पुस्तक का नाम मैंने रखा है काजल बेसिक बनाम डिजिटल बचपन।
3: क्या बात,
4: तो कंप्लीट, बिकॉज हम आजकल डिजिटलाइज हो चुके हैं, हमारे जो बच्चे हैं आजकल की जो जनरेशन है, जेंजीज तो हैं ही, उनसे जो अब बच्चे आ रहे हैं वो फोन के साथ पैदा हो रहे हैं, राइट। तो साहित्यिक यात्रा में बहुत सारे तजुर्बे मिले हैं।
3: अभी आपने कहा कि आपका गजल लिखना आपका पैशन रहा है, तो मैं जरूर चाहूंगी अपने हमारे श्रोताओं को आप कोई गजल जरूर सुनाएं।
4: जो मेरी पहली गजल थी जो मुझे गजल की तरफ लेकर के गई थी और ये गजल मुझे प्रिय है और इसको मैं अक्सर मंचों पर भी सुनाती हूँ और पसंद की जाती है, वो इस तरीके से है कि शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या लड़ती।
3: क्या बात,
4: शबनम की एक बूंद दहकते अंगारों से क्या

0: लड़ती एक अकेला जुगनू थी मैं, अंधियारों से क्या
1: क्या
0: लड़ती।
1: बात, बहुत खूबसूरत।
0: मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर, मीनारों से क्या लड़ती।
1: आहा,
0: मैं थी नींव जड़ा एक पत्थर, मीनारों से क्या लड़ती। और मेरे समर्पण में तड़पन थी,
1: आहा,
0: किस किस से ये बात कहूं।
1: वाह,
0: एक अकेली मछली थी मैं, मछुआरों से क्या
1: बहुत
0: लड़ती।
1: खूबसूरत।
0: समर्पण की इंतहा मैंने इस शेर के द्वारा कही। और वही हालात हमारे कई बार लड़कियों के लिए भी पैदा हो जाते हैं। और फिर तब मैं कहती हूँ कि काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बचपाना, फिर अरियों का ही वध करने को बेटी तुम दुर्गा बन जाना।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और तन्हा ही कर डाला खुद को मैंने मीन कहानी से, पल पल रंग बदलने वाले किरदारों से क्या लड़ती। अब मक्ता पेश करती हूँ कि जी में तो आया था उर्वी, अपना जीवन जी लूं मैं, लेकिन अपने आदर्शों और संस्कारों का क्या करती। जो कि जिनकी आज मुझे लगता है कि जरूरत नहीं होती है ना, या फिर उन आदर्शों और संस्कारों के साथ ही तो हम आगे चल रहे हैं,
1: उन्हीं के साथ आगे चल
0: पहलुओं के साथ
1: हैं।
0: हम बात कर सकते हैं।
1: बहुत खूबसूरत,
0: बहुत
1: शुक्रिया
0: आपका।
1: खूबसूरत बात कही आपने, आपके आपने भी बात की। मैं शबरी हूँ राम की विधा कहे पंचाली, इस पर भी मैं जरूर आऊंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शब्दों में संवेदना और निर्णय में दृढ़ता, क्या एक सफल महिला के लिए व्यक्तित्व में इन दोनों का होना जरूरी है कि आपके शब्दों में संवेदना हो और आपके फैसलों में एक दृढ़ता हो? क्या
0: बिल्कुल, जब हमारे फैसले ही दृढ़ नहीं होंगे, जब हम मीन्स कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा, हमें तो सबसे पहले अपनी दृढ़ता को आगे लेके जाना होता है, और तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। अगर किसी चीज का हम फैसला ही नहीं करेंगे तो हम उसको अंजाम कैसे देंगे?
1: बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अब मैं आपकी जो विधा कहे पांचाली बहुत बड़ा कविता संग्रह है उस पे मैं आती हूँ, और मैं कहती हूँ उसके बारे में आप जरूर बताएं, विधा कहे पांचाली के बारे में जरूर बताएं, आपका जो अनुभव रहा है उसको लिखने में, वो मैं चाहूंगी कि आप श्रोताओं से हमारे
0: जी
1: जरूर
0: अवश्य
1: शेयर करें।
0: तो अब आप पांचाली के बारे में जो पूछ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा सफर रहा है। पांचाली को लिखने में मैंने 9 वर्ष लगाए, लेकिन सोचिए पांचाली ने तो जब तक जीवन पर्यंत वो जी थी, एक दुखों और कष्टों के साथ जी थी। उस वक्त ही शायद मैंने सोच लिया था कि मुझे इस कैरेक्टर को जानना है, इस परिचय को मुझे जानना है। तो जब मैंने ये देखा और मैं ये इस चीज के साथ बड़ी होने लगी, राइट, ये क्या है। उसके बाद धीरे धीरे धीरे आज इसको मैंने पढ़ा और एक कविता लिख डाली। जब मैंने वो कविता परम पूजनीय अपने ससुर जी को सुनाई, तो उन्होंने कहा, उर्वशी ये कविता पर आपका काम हो सकता है। उन्होंने भरे मन से और बहुत मन भर करके मुझे आशीर्वाद दिया
1: और प्रोत्साहन भी दिया,
0: प्रोत्साहन दिया। और पता नहीं कब ये व्यथा कहे पांचाली की रचना शुरू हो गई। काजल, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि इस किताब को लिखने में मुझे 9 वर्ष का समय लगा।
1: 9 वर्ष लग गए, एक बहुत लंबा अरसा।
0: 7 से 8 साल में मैंने इसको लिखा होगा, और इसके केश बांधने में अंतिम जो इसका मीन्स साज सज्जा थी इस किताब की, उसमें मुझे लगता है कि मैंने 1.5 से 2 वर्ष लगाए, और उसके साथ साथ काम करती रही। तो अपनी तरह की एक अनूठी कृति है ये। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये किताब मैंने लिखी है, लिखने वाले लेखक को अपनी कविता की हर पंक्ति और अपनी हर एक किताब प्रिय होती है, बच्चों के समान होती है। तो 9 वर्ष लगाए, और जब मैंने इसको एज ए श्रोता भी पढ़ा, इस पर नाटक भी हो चुका है,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत पसंद किया गया। आज भी आगे चर्चा चल रही है इस पर नाटक करने की। और इसी तरीके से जब ये किताब पूरी हुई, दर्शकों के हाथ में आई, काजल मेरे 5 संस्करण इस किताब के आ चुके हैं, और इसकी कई पंक्तियां मैं अगर आप कहो तो
1: जरूर,
0: सुना
1: जरूर,
0: देती हूं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें मैंने जो बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि मैंने इसको आज की पांचाली के साथ जोड़ दिया, जो चीजें उस वक्त थी वो आज भी हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा, और इसको जो सबसे अच्छा काम मुझे इस किताब में लगा है काजल, वो ये लगा है कि मैंने एक अध्याय लिखा है द्रौपदी की ऊहापोह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पढ़ा है आपका। हाँ। ये इसको मैं अगर ग्रंथ कहूँ तो
0: जी, काव्यखंड को आप
1: बड़ा, बहुत खूबसूरत,
0: क्योंकि यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग महाभारत अपने घरों में नहीं रखते, महाभारत से बड़ी कोई सीख नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और मैंने, आप कहोगे कि मैंने एक मिनी महाभारत द्रौपदी के दृष्टिकोण से
1: आपने लिखी,
0: मैंने कोशिश की है,
1: और बहुत खूबसूरत कोशिश,
0: अगर दर्शक पढ़ेंगे तो मेरी कोशिश कामयाब होगी।
1: बहुत खूबसूरत लिखा है।
0: ऊहापोह से मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
1: जरूर।
0: ये द्रौपदी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। पीड़ा एक खरी है मन में, पीड़ा एक खरी है मन में, ऊहापोह भरी है मन में, युद्ध हुआ था ये दुखदाई, या केवल मैं उत्तरदाई, कुंती कर्ण व 5 भाई, सब कौरव थे उत्तरदायी, उत्तरदायी

0: अभी बड़े थे, भरी सभा में मौन खड़े थे, युद्ध का कारण बतलाऊंगी मैं, आगे तब बढ़ पाऊंगी।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: तो यहां से मैं शुरुआत करती हूं कि काश वचन स्वीकार न करती, काश वचन स्वीकार न करती मैं भी रेखा, मैंने क्यों मानी थी कुंती की वो शर्त। इससे पहले मैं फिर से शुरुआत करती हूँ कि काश वचन स्वीकार न करती, आपको ले जाती हूँ कुंती की उस कुटिया में जब अर्जुन उसे ब्याह करके लेके गए थे। काश वचन स्वीकार न करती मैं भी रेखा पार न करती, पांच पिया स्वीकारे क्यों थे, खुला शिवा का नेत्र न होता तो शायद कुरुक्षेत्र ना होता। मैं बीच बीच में सुना रही हूँ आपको।
1: आपने इसमें गीता का भी बहुत खूबसूरत लिखा है जब मैंने
0: जी पढ़ी मैं आपको थी। सुनाती हूँ। मैंने कोशिश की है यहाँ पर युद्ध के पर्यायवाची शब्दों को अपने इस ऊहापोह के अध्याय में लेने का ठीक है ना। तो अभी कारण मैं आपको बता चुकी हूँ, अर्जुन भी बता दिया है मैंने, कुंती भी बता दी है। अब मैं कहती हूँ कि काश ना मुझको वर के लाइए काटना, जो मैं अभी कह रही थी कि युद्ध के पर्यायवाची है, तो मैं यहाँ कहती हूँ कि काश ना मुझको वर के लाता अर्जुन सारे दुख का दाता, सत्य यही जो समर ना होता कुरुक्षेत्र फिर अमर ना होता।
1: क्या बात
0: समर युद्ध का पर्यायवाची,
1: बिल्कुल
0: काश कर्ण। अब एक कारण कर्ण भी था, काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं, कर्ण अगर ना रोता शायद तो संग्राम ना होता शायद। संग्राम
1: बिल्कुल,
0: दुशासन को माफ जो करती लाल ना होती फिर ये धरती, दुशासन मति मंद ना होता रिश्तों में फिर द्वंद ना होता। द्वंद दुर्योधन से हुई लड़ाई सचमुच कृष्णा अब पछताए, जो दुर्योधन क्रुद्ध ना होता तो शायद यह युद्ध ना होता।
1: बिल्कुल,
0: जो यह नहीं लड़ाई होती फिर भी तो पछताई होती। तो ये मैंने जो कारण देने की कोशिश की है, मैंने हर उस पात्र को इसमें घेरा है जो द्रौपदी के चिरहरण में उस वक्त मौन था या जो भी उसका कारण था। अभी आप गीता की बात कर रही थी तो मैंने अंतिम पंक्तियां आपको ये भी सुनाना चाहूंगी इससे रिलेटेड, अगर पाप का वर्ण ना होता गीता। अच्छा, ये मैं इससे पहले ये जरूर कहना चाहती हूँ काजल, यानी कि कहते हैं कि इतना 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ, कितना खून खराबा हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, भला क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, इससे क्या मिला। मैं बताती हूँ इससे क्या मिला।
1: बिल्कुल,
0: दुश्मन को यदि सजा ना मिलती सही हमें फिर दिशा ना मिलती, दूर अंधेरा कैसे होता नया सवेरा कैसे होता, कृष्ण अगर अवतार न धरते अर्जुन भी संहार न करते, अगर पाप का वर्ण न होता गीता का अवतरण न होता, कली ज्ञान की खिलती कैसे अद्भुत गीता मिलती कैसे।
1: बहुत खूबसूरत पंक्तियां ये। अब मैं आपकी दूसरा जो आपने जिस तरह से अपनी व्यथा कहे पांचाली लिखा, उस तरह से आपने कहा कि आपकी 16 किताबें आ चुकी हैं कविता की और अभी आप रामायण पे भी काम कर रही हैं, तो आपकी एक और कृति मैं शबरी हूँ राम की, इस पर आते हैं, इसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। ये भी बहुत खूबसूरत किताब आपने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत कविता।
0: ये जो शबरी है ना काजल, ये हर एक दिल में मौजूद है, हर एक जगह में, हर एक दिल में, सबके दिल में है। तो मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी हुई कहाँ पर देर।
1: क्या बात,
0: कितने अचरज से भरा। इस दोहे ने मुझे बहुत पहचान दी है काजल, संत समागम, संतों में ये दोहा एक आकर्षण का केंद्र है, वहां पर कोट होता है ये दोहा, और वो दोहा इस प्रकार से है कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम।
1: बहुत खूबसूरत,
0: कौन कहता है कि शबरी ने बेर झूठे किए थे। और इसका अंतिम दोहा भी मैं इस तरीके से सुनाना चाहूंगी कि आए हैं वो द्वार पर चाहे देर सवेर, स्वीकारे हैं राम ने शबरी तेरे बेर।
1: बहुत खूबसूरत,
0: स्वीकारे हैं राम।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। तो उर्वशी जी, इतना खूबसूरत आपने अपना लिखा हुआ सुनाया और आपने कहा कि आपकी 16 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और जिसपे आप रामायण पे भी काम कर रही हैं।
0: बस अगर पांचाली ने 9 वर्ष लिए हैं तो ये भी
1: टाइम वर्ष तो ये भी लेगा, लेकिन तो आपकी निरंतर ये साहित्यिक यात्रा चलती रही, यही हमारी कामना है। तो आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी खूबसूरत बातें की, इतनी खूबसूरत अपनी कविताएं हमको सुनाई, हमारे श्रोताओं को सुनाई, खासतौर पर व्यथा कहे पांचाली आपकी गजल और मैं शबरी हूँ राम की, बहुत खूबसूरत।

0: तो डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की अतिथि डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त काजल, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। हमारे अतिथि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल से भेंट वार्ता, इनसे भेंट कर रही थी काजल सूरी।
2: और श्रोताओं, अब समय हुआ है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप ये कार्यक्रम।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजर हाँ तुहाडी सेवा विच हरजीत कौर। हाँ जी, तुसी सारे ठीक ठाक हो ना? घर सब वधिया? ते चलो फिर अज असी तुहानू अवनीत कौर दी वार्ता सुनवाउंदे हाँ, जल जीवन मिशन। ते एक आवाज़ प्रोग्राम च लाल चंद यमला जट दे गाए गीत भी सुनांगे। तुहानू पता ही ना, अज वर्ल्ड क्लीनअप डे यानी विश्व सफाई दिवस है। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। इस दिवस का मंतव समाज के सारे वर्गों नूं सफाई कम्मां च शामिल करके इस कचरे के संकट प्रति जागरूक करना है। 2025 च विश्व सफाई दिवस ने 212 देशों चो 93.9 करोड़ तो वध लोगों नूं इस कार्ज वास्ते इकट्ठा किया है। 20 सितंबर 2026 का विश्व सफाई दिवस भोजन के कूड़े ते केंद्रित है, यानी बचा हुआ भोजन कूड़ेदान च पा देना। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਫਾਈ ਦਿਵਸ 2026 ਦਾ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਬਚਿਆ ਭੋਜਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਆਦਿ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ, ਗੰਦਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ, ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ।
1: ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਜਲ। ਜਲ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਜਲ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ पानी की पूरी सप्लाई प्रणाली नूं मजबूत करके हल करन दी कोशिश करता है। इस विच पानी दे स्रोत दी पछाण, पानी नूं साफ करन दी व्यवस्था, पाइपलाइन, पानी दी टैंकी, घर दे कनैक्शन अते पानी दी गुणवत्ता दी निगरानी वर्गे कई पक्ष शामिल हन। इस मिशन दी खुशहाल गल यह है कि इस विच पानी दी गुणवत्ता उत्ते भी जोर दिता गया है। सिर्फ पानी घर तक पहुंचाना काफी नहीं, पानी पीण योग सेहत लई सुरक्षित होना भी बहुत जरूरी है। कई पेंडू इलाकियां विच भूजल विच आरसैनिक, फ्लोराइड, आयरन अते होर प्रदूषकां दी समस्या मिलती है। इसलिए पानी दी जांच अते गुणवत्ता दी निगरानी भी इस मिशन दा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इत्थे एक होर महत्वपूर्ण गल है, पानी सिर्फ सरकार दी जिम्मेदारी नहीं, साड़ी सारे दी जिम्मेवारी है। जे सरकार घर तक पानी पहुँचा देवे तो असी पानी नू बेलोड़ा बहाउंदे रहिए तो यह योजना अपना पूरा मकसद हासिल नहीं कर सकती। पर इसलिए जल जीवन मिशन नाल पानी दी संभाल अते भागीदारी नू भी जोड़िया गया है। इस मिशन दा सब तो वड्डा समाजिक प्रभाव औरतां दी जिंदगी विच वेख्या जा सकता है। साढ़े पिंडां विच कई औरतां दा सारा समा पानी लियाउण विच लग जांदा सी, घर विच नल राही पानी मिलण नाल ओह समा बच सकता है। यह समा अपनी पढ़ाई, बच्चियां दी देखभाल, स्वयं रोजगार जा होर आर्थिक गतिविधियां लई इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह पानी दी सहूलत सिद्धे तौर ते महिला सशक्तिकरण नाल भी जुड़ जाती है। बच्चियां लई वी वड्डे फायदे हन। जदों पानी लैण दी जिम्मेवारी घटदी है तां बच्चियां नूं स्कूल जाण अते पढ़ाई करन लई वधेरे समा मिलदा है। स्कूलां अते आंगनवाड़ी केंद्रां विच पानी दी उपलब्धता नाल हाथ धोण, सफाई अते सेहत संबंधी आदतां नूं उत्साह मिलदा है। जे हुण गल करिए सेहत दी, गंदा जां दूषित पानी कई बीमारियां दा कारण बन सकता है। दस्त, हैजा, टाइफाइड अते होर पानी नाल जुड़ियां बीमारियां दा साफ पानी दी उपलब्धता नाल घटाया जा सकता है। इस लई जल जीवन मिशन नूं सिर्फ पानी दी योजना नहीं, सगों सेहत अते सफाई नाल जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल वजों भी देखा जा सकता है। जल जीवन मिशन दा एक हर महत्वपूर्ण पक्ष है ग्राम पंचायतां अते स्थानक भाईचारे दी भागीदारी। पानी दी योजना लंबे समय तक तद तक ही सफल हो सकती है जदों पिंड दे लोग आप इस नाल जुड़न। पानी दी टैंकी, पाइपलाइन अते होर सहूलतां दी देखभाल, पानी दी गुणवत्ता दी निगरानी विच स्थानक लोकां दी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह दी भागीदारी नाल लोकां विच इह भावना पैदा हुंदी है कि पानी दी सहूलत सिर्फ सरकार वल्लों दित्ती कोई चीज़ नहीं, बल्कि पिंड दी सांझी जिम्मेवारी भी है। जल जीवन मिशन दी गल करके समय पानी दी संभाल नूं भुलना नहीं चाहिदा। भारत दे कई हिस्सों विच धरती हेठले पानी दा पद्धर तेजी नाल घट रहा है। जे असी पानी दी वरतों समझदारी नाल ना कीती तां आउण वालियां पीणियां लई पानी दी समस्या होर गंभीर हो सकती है। इस लई सानू वर्खा दे पानी नूं संभालना चाहीदा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भाव वर्खा जल संभाल पानी दे भविख नूं सुरक्षित करन दा एक महत्वपूर्ण तरीका है। घरां दीआं छत्तां तों इकट्ठा कीता वर्खा दा पानी धरती विच रीस्टोर कीता जा सकता है। पिंडां विच छप्पणा, तालाबां अते रवायती जल स्रोतां दी संभाल भी बहुत जरूरी है। पंजाब दी गल करिए तां साडे लई इह विशा होर भी महत्वपूर्ण है। पंजाब नूं कदे पंज दरियावां दी धरती कहा जांदा सी, पर अज कई इलाकियां विच धरती हेठले पानी दा पद्धर चिंता दा विशा बन चुका है। खेतीबाड़ी विच पानी दी वध वरतों, खास करके कुछ फसलां दी पानी आधारित खेती ने भूजल उत्ते दबाव वधाया है। इस लई सानू हर घर जल दे नाल हर बूंद दी संभाल दा संदेश भी देना चाहिदा है। गुरबाणी विच पानी नू बहुत महत्व दिता गया है, बल्कि जपजी साहिब की बाणी दीप सलोक की पहली पंक्ति यह है कि पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। इस पंक्ति विच पाणी नू पिता ते धरती नू माता दा दर्जा दिता गया है। यह सानू कुदरत प्रति सतिकार अते जिम्मेवारी दा संदेश देंदी है। इसलिए पाणी दी संभाल करना सिर्फ वातावरण दी लोड़ नहीं सगों साडी नैतिक जिम्मेवारी है। असी अक्सर ये कहंदे हां जल बचाओ जीवन बचाओ, पर असी इस नारे नू सिर्फ बोलना तक ही सीमित नहीं रखना। घर विच नल खुला ना छड़ना, लीकेज सुरन ठीक करवाउणा, लोड़ अनुसार पाणी वरतना, वर्खा दा पाणी अते धरती हेठले पाणी नू रीचार्ज करना वड्डा बदला लिया सकदे हन। हुण जे असी जल जीवन मिशन दियां चुनौतियां दी गल करिए तां सब तो पहली चुनौती है पानी दे स्रोतां दी उपलब्धता। हर पिंड विच पानी दा स्रोत इक्को जिहा नहीं हुंदा, किते भूजल उपलब्ध है, किते दरिया जां नहर दा पानी है, अते किते पानी विच कुदरती जां मनुखी कारना करके प्रदूषण दी समस्या है। दूजी चुनौती है सिस्टम दी लगातार देखभाल नाल नल लगा देना पहला कदम है, पर पाइपलाइन पंप टैंकियां अते होर ढांचे दी समय सिर मुरम्मत भी जरूरी है। जे सिस्टम दी देखभाल ना होवे तां पानी दी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तीजी चुनौती है पानी दी गुणवत्ता। पानी दी जांच नियमित तौर तो होनी चाहिदी है तां जो लोकां नूं सुरक्षित पानी मिले। इस नूं स्थानक पद्धर ते जागरूकता अते निगरानी जरूरी है। एक होर चुनौती है पानी दी बेलोड़ी वरतों। जे घर विच नल आ गया अते असी पानी दी कदर ना कीती तां इह सहूलत वी भविख विच समस्या बन सकती है। इसलिए जल जीवन मिशन दी वरतों सफलता सरकार अते लोकां दोवां दी सांझी जिम्मेवारी है। सानू यह भी समझना चाहिदा है कि पानी सिर्फ अज दी लोड़ नहीं, यह साडियां आउण वालियां पीढ़ियां दा हक भी है। असी अपने बच्चियां नूं जायदाद पैसा अते सिक्ख्या देण दी गल करदे हां, पर जे उहनां लई साफ पानी ना बचिया तां बाकी सारियां चीज़ां दा की महत्ता रह जावेगी। इस लई जल जीवन मिशन नूं एक सरकारी योजना तों वध एक समाजिक अंदोलन बनाउण दी लोड़ है। हर घर हर स्कूल हर पिंड अते हर नागरिक नूं इस नाल जोड़ना जरूरी है। आओ अज असी एक छोटा संकल्प लईए, नल खुला नहीं छड़ांगे, पानी नूं व्यर्थ नहीं वहावांगे, वर्खा दा पानी संभालांगे, धरती हेठले पानी नूं रीचार्ज करांगे अते दूजियां नूं वी पानी दी संभाल लई प्रेरित करांगे। क्योंकि याद रखो बूंद बूंद नाल सागर बनदा है ते बूंद बूंद नाल ही साडा भविख वी बच सकदा है। जल जीवन मिशन सानू इह संदेश देंदा है कि हर घर तक पानी पहुंचाना जरूरी है, पर हर बूंद नू बचाना उस तो भी ज्यादा जरूरी है। आओ हर घर जल दे सुपने नू हर बूंद संभाल दे संकल्प नाल जोड़िए। जल है तां कल है, जल है तां जीवन है, जल बचेगा तां भविख बचेगा। इस संदेश नाल

लाल चंद यमला चढ़ते गाए इस गीत के नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी की महक खत्म होता है। अगले प्रोग्राम च फिर मुलाकात होएगी। उदों तक लई हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी कुमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की वीना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज

भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकेंड। सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा। आप सुन रहे हैं आपका अपना स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली। जी हाँ, आपका फेवरेट AIR लाइव न्यूज 24/7। तो हमें भी इंतजार रहता है कि आपसे ढेर सारी बातें करें, मुलाकातें करें और आपके दिल की जज्बात भी हम जानें, उन दिल की गहराइयों में थोड़ा झांक कर देखें कि क्या चल रहा है उसमें। और आज भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं आपके कॉलेज के दिनों में। कुछ ऐसे बेहतरीन नगमे चुनकर लाई हूँ मैं हमेशा की तरह। तो भी कॉलेज की बात चली है तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाऊँ साथ साथ फिल्म से। और उम्मीद करती हूँ कि आपके वो सुनहरी कॉलेज की जो यादें हैं वो ताज़ा ज़रूर हो जाएंगी। आपको याद है ना वो कॉलेज के दिन कितने खूबसूरत थे, जब सुबह लेक्चर अटेंड करने की नहीं बल्कि कॉरिडोर में किसी एक चेहरे को देखने की जल्दी होती थी। बस वो छुपा छुपा सा एहसास मन को ऐसे गुदगुदा जाता था ना, लगता है जैसे बने हमने ना पता नहीं कितना बड़ा मेडल हासिल कर लिया है। और दिल बस उस खास को देखकर ही धक धक करना शुरू कर देता है चुपके से। ऐसे एहसास जिन्हें हम बयां भी नहीं करते थे, या फिर अपने ही साथियों के नाम एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर देते थे। तो ऐसे मीठी मीठी यादें, मीठे मीठे एहसास, कॉलेज क्रश और दिल की भर्ती, जी हाँ, दिल की बढ़ती धड़कनों को और तेज करने के लिए वो कॉलेज की यादों का कारवां सीधे कॉलेज में जाने के लिए अब हम भी तैयार हैं। तो आप भी हमारे साथ तैयार हो जाइए और रुक कीजिए अपनी पुरानी यादों की तरफ, अपने कॉलेज के दिनों की तरफ। और सवाल सिर्फ इतना सा, क्या आपको भी कभी कॉलेज क्रश हुआ? आपने वो गुफ्तगू की अपने दोस्तों का नाम, अरे वो लड़की तुझे बड़ी देख रही है, वो लड़का यार बार बार तुझे देखता रहता है, क्या कुछ है? तो इस तरह की कोई गॉसिप,
4: माय गुडनेस, कौन है वो?
0: क्या अगर आपकी भी हुई है तो जरूर बताएं।
5: तुमको बता देता हूँ, लेकिन देखो यानी समझी।
4: ओफो, हद है,

जी हाँ, कॉलेज का वो क्रश, जैसे हमने आपसे कहा ना कि सबके क्रश होते हैं और फुसफुसाते हुए हम सभी क्या करते हैं, एक दूसरे, सभी जो दोस्त होते हैं एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जोड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और क्रश की बात की जाए तो भाई, छुप छुप के जिससे क्रश होता ना, तो लगता है बस उसे ही देखते रहें। अगर ये महसूस आपने भी किया है तो अपने जो आपकी कॉलेज के दिनों के जो अच्छे अच्छे से आपके अनुभव हैं उन्हें ज़रूर साझा करें। हमारी मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। आपने वैसे वो किया है, समोसा लेने के बहाने जाना कैंटीन में और उसके बगल में जाके बैठ जाना, या फिर लाइब्रेरी में जाना, पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को देखते रहना, या किताबों से पीछे खड़े होकर जो सेल्फ्स होती हैं उसमें से चुपके चुपके झांक कर बस घंटों देखते रहना, या कॉलेज से क्लास बंक करके ऐसे ही पार्टी के बहाने दोस्तों के साथ निकल जाना, ये नहीं किया? या फिर फिल्मों के लिए जाना और सर से झूठे से बहाने लगा देना, या उसके लिए कई बार डांट खा लेना टीचर से या घर वालों से। सिर्फ कॉलेज की बात करें तो भी कुछ दोस्त ऐसे भी होते ना जो दो ऐसी प्रेम कहानियां पनप रही होती हैं तो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। अगर अपने बिहाइंड दी सपोर्ट किया है तो वो भी आप बता सकते हैं, आपके क्या अनुभव हैं, आपकी क्या यादें हैं, हमें ज़रूर साझा करें। उम्मीद है कि आपके दिल में भी फिलहाल कुछ कुछ हो रहा होगा, वो पुरानी यादों को याद करते हुए वो ताजा हो गई होंगी यादें, तो जरूर अपने अनुभव हमें बताएं। और अगला गीत दिल है कि मानता ही नहीं फिल्म से, शान और निहारा की आवाज में।

तो कॉलेज के दिनों की बात ताज़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं या कॉलेज के दिनों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे साथियों ने हमें संदेश भेज दिए हैं और आजकल के जो कॉलेज लाइफ है ना, उस पर तो पिछले कुछ दिनों से जब से सोशल मीडिया का चलन शुरू हुआ है ना, तो सभी लोग क्या करते हैं कि जिसे पसंद करते हैं कॉलेज में, हमने भी ये बहुत किया, अरे सोशल मीडिया पर खंगालते हैं, देखते हैं इसका प्रोफाइल कैसा है, फोटो कैसी लगी है, हर एक एक्टिविटी पर चुपचाप नज़र रखना, ये सब भी करते थे हम लोग। अब आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है, तो सब चुपके से इंस्टा आईडी से एक दूसरे को बस उसके ऊपर नजर बना के रखते हैं, देखते रहते हैं। और देखिए, एक साथी हमारे धर्मेंद्र छीपा जी, इन्होंने लिखा है कि इनको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, लेकिन कॉलेज के दिनों की याद करें कि आपने हमें दिला दी। अब तो आज भी हमें कॉलेज के वो हमारे मित्र हमें फोन पर बतियाते रहते हैं, और हमारे सखी मित्र और सखा मित्र आज कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और कॉलेज के दिनों को याद करते हुए खिलखिलाते हैं।

ये संदेश भेजा है इन्होंने भोपालगढ़ राजस्थान से कपिल, ईशान, छीपा और पूजा परिहार के साथ। साथ ही साथ हमें चरणदास जी का संदेश आया है, इन्होंने ये संदेश चौधरीवास हिसार हरियाणा से भेजा है अपने साथी केशव और राजू अग्रवाल विवेक के साथ। रामेश्वर जी का भी संदेश आया है और ये लिखते हैं, रामेश्वर जी ने लिखा है अपने परिवार के साथ है, सभी सदस्यों के इन्होंने नाम उसमें शामिल किए हैं, जैसे उमा, कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद और साथ ही साथ अन्य परिवार के सदस्य। इन्हें भी है, इन्हें इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें किसी भी गीत में शामिल करें। तो लीजिए, अब आपका संदेश हम शामिल कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे अगले साथी हैं जिनका संदेश हम अब शामिल कर रहे हैं, ये है गोविंद वैष्णव। इन्होंने भी संदेश भेजा है ग्राम लसूड़िया से, तहसील नरसिंहगढ़ से, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। साथ ही हैं इनके सुमन कोमलपरी और कृतिका रमेश चंद्र डांगी। इन्होंने भी सिर्फ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ही कहा कि इनका संदेश शामिल करें। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा और कोयल नानक चंद जी का ये संदेश आया है और इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। फागू राम जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा है संबलपुर कांकेर से ज्योति यादव और ओजस्वी यादव के साथ। ओम प्रकाश राय हैं, इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि दीदी जी, हम लोगों को कॉलेज के दिनों की यादें आज भी दिलों में संजोए हैं। उन दिनों अपने दोस्तों से मिलना, उनके सुख दुख में भाग लेना और गुरु जी की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना कितना सुखदायक लगता था, जिसका बयां हम नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। तो भी अपने कॉलेज क्रश की भी बात हमें ज़रूर बताएं। हमने कहा ना कि अगर आपको कोई पसंद आता था, आती थी, तो उसके बारे में, उसको देखने के लिए या किस तरह की गॉसिप्स अपने दोस्तों के साथ आप सब करते थे, ये ज़रूर हमें बताएं। इन्होंने ये संदेश भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से उषा राय, अमित कुमार राय के साथ। और इसके साथ साथ ही हम अगला संदेश भी ले रहे हैं, ये है हिमकेश्वर साहू जी। इन्होंने भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेजा है राहुल और करण चंपा के साथ। बोधराज खोरवाल जी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, इन्होंने कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश के साथ संदेश भेजा है और ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। तो अगला जो गीत है वो भी उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा और गीत सभी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बस डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कौन सा पहला बजाएं और कौन सा बाद में। तो लीजिए ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए, ये गीत है कुछ ना कहो का। जी हाँ, कुछ ना कहो फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद और आपकी पसंद में आप जुड़ सकते हैं IP Radio Delhi @gmail.com के जरिए।

जी हाँ, कॉलेज की खूबसूरत यादें, खूबसूरत दिन दिल को कुछ कुछ कर देती है, गुदगुदा जाती हैं, पुराने एहसास जगा जाती हैं। तो हम भी तो यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पुरानी यादें, पुराने एहसास ताज़ा हों और आप ऐसे उन खूबसूरत यादों को याद करके अच्छा सा महसूस करें। कहते ना, पुरानी यादें जब हम याद करते हैं ना तो अच्छा लगता है, और ख़ासतौर पर कॉलेज की बात हो तो सोने पर सुहागा। हमारे साथी हैं टीडी मल्होत्रा जी, इन्होंने लिखा है कि जब मैं प्रैप क्लास में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान सोडियम धातु के टुकड़े पर प्रयोग कर रहा था, तब उस पर थोड़ा पानी गिर गया और वो धमाके के साथ फट गया। उसके बाद लेक्चरर साहब ने मेरे साथ क्या किया ये मत ही पूछिए, क्योंकि सोडियम धातु पानी के साथ बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। वो धमाका, छात्रों का हंसना, लेक्चरर साहब का बौखला जाना, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। बहुत ही बढ़िया। वैसे हमने कॉलेज क्रश की बात की थी, ये भी आपने बहुत अच्छा सा अनुभव शेयर किया अपने साथ। और हमने आपसे पूछा था कि भाई ऐसा कभी हुआ कि आप लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती की, कोई अच्छा लगा और बस उसे देखना, घूरना, दोस्तों के साथ बातें करना, फुसफुसाना, या एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लिंक

कनक जोड़ियां बनाना ये सब भी किया है तो जरूर बताएं। टीटी मल्होत्रा जी ने ये संदेश भेजा हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा और अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप के साथ साथी कालका जिसे इन्होंने कुछ साथी हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज है जिनका नाम भी इन्होंने साथ में दिया है। अगला संदेश मैं देख रही हूँ मसरूर हसन है, इन्होंने संदेश भेजा है अपने साथियों के साथ। ये संदेश इन्होंने सहारनपुर से सैयद और शाइना हसन के साथ, नाजिया इब्राहिम के साथ भेजा है। संदीप मक्कड़ ने भी संदेश भेजा है, ज्योति मन्नत भारत और मक्कड़ के साथ, ये कमल साहिनी पिंगा वाला चौक गोराया जलंधर से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। और साथ ही साथ हमारे और भी साथी हैं जैसे कि अनिल मोहन जी, इन्होंने पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से ये संदेश भेजा है। उषा मोहन और टिल्लू नायक के साथ कैथल से कुछ साथियों के नाम लिखे हैं जैसे कि मधु नायक हैं उनका नाम भी। वैसे ये बड़ी दोस्तानी बहुत ही याराना सब लोग निभाते, एक दूसरे का नाम लिखते, कोई छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये भी तो प्रॉमिस करिए कि आप हमें सुन रहे हैं ना, जुड़े हुए हैं ना आप हमारे प्रोग्राम के साथ, यही हम भी मान रहे हैं। बहुत अच्छी बात अगर आप हमें सुन रहे हैं। मलियाना सरधना मेरठ से भी, अनिल जैन और संयम जैन, मुस्कान जैन, जिव्यम जैन ने हमें संदेश भेजा है और अपनी पसंद के फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक अगला संदेश आया है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का, ये भी लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि हाँ इन्होंने अपनी पसंद का गीत लिखा है। स्टेशन रोड जमशेदपुर से एंजल भाटिया और सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। और ये लिखते हैं अगले हमारे कौन से साथी हैं भी देख लें, रोशन देवांगन जी हैं जिन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि कॉलेज के दोस्तों के साथ की वो गुफ्तगू, बेफिक्र हंसी और छोटी छोटी शरारतें आज भी यादों के पन्नों पर मुस्कुरा देती हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया लिखा आपने, वक्त आगे बढ़ गया मगर दोस्तों के साथ बिताए वो सुनहरे पल आज भी दिल में वैसे ही जिंदा है, काश वो कॉलेज के दिन और दोस्तों वाली महफिल फिर से लौट आए। बिलाई छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेजा है कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन के साथ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कहते हैं ना जो वक्त बीत जाता है उसे हम बार बार याद करते हैं। तो दोस्तों ऐसे खूबसूरत लम्हे, ऐसे खूबसूरत पल, जब लगे ना कि चेहरे पर आसपास बहुत निराशा है, दुख है, तकलीफ है, ऐसी बातों को याद कर लें। कॉलेज की याद, जिंदगी में जो खूबसूरत पल होते उन्हें याद करें और बस अपने आप को तसल्ली देते हुए मुस्कुराएं, खुश रहें, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। हमारे ये अगले साथी हैं, इन्होंने एक शिकायत भरा मेल हम तक पहुंचाया है, मुल्लांपुरा दाखा से है ये राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, इन्होंने थोड़ा शिकायती भरा मेल लिखा है। शायद देखिए हम लिसनर्स हमारे पास बहुत सारे तरह होते हैं, हमारे लिए हर एक लिसनर कीमती है और आप सभी लिसनर्स की वजह से ही हम हैं, हमारा वजूद है, हमारा शो है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि साथी जो बार बार मैसेज भेजते हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश करें और साथियों के संदेश भी हम शामिल कर पाएं, क्योंकि एक बार भेजेंगे तो बड़ी आसानी से हम भी आपके संदेशों को देख सकते हैं। क्योंकि बार बार एक आप ही मैसेज को भेजते हैं 10-10, 12-15 बार तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे साथियों के संदेश हम ले नहीं पाते, उसको स्क्रॉल ढूंढना, सर्च करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो जैन साहब हम आपकी तकलीफ समझते हैं और हमें भी बड़ी तकलीफ होती है जब हम बहुत सारे साथियों के संदेश अपने इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते हैं। बसंत अकीला है, अली का है, इन्होंने ये भेजा है बसंत सिंह चन्न, राजकुमार कुलदीप गांधी के साथ, अलिंका डब वाली से इन्होंने ये संदेश भेजा है। एक्चुअली बसंत अलिका नहीं बल्कि इन्होंने अलिंका इनकी जगह का नाम है जहां से ये संदेश भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने साथियों के साथ हमें सुन रहे हैं। और भी हमारे साथी हैं जिन्हें हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। मोहम्मद फरहान है, इन्होंने भेजा है सलमान और इरफान इसरार और नरगिस खातून के साथ है, इन्होंने भी लिखा मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। इसके साथ ही हमारे एक और साथी हैं अकमरुद्दीन, इन्होंने सीतामढ़ी से भेजा है ये नगर
नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से रुबीना वसीम, आरिज नदीम, अक्रम शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी कलीर बिहार से, अपने साथी मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है। तो लीजिए अक्रम साहब, अब आपका संदेश भी हम शामिल कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि साथियों में शिकवा कम होगा, क्योंकि कोशिश है कि सभी साथियों के संदेश

संदेशों को शामिल जरूर करें। रमेश चौहान हैं, इन्होंने संदेश भेजा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान और गर्बी और हिमांश के साथ। और हमने आपसे कहा था कि कॉलेज के दिन अगर आपको याद है, वो खुशफुसाहट, वो क्रश, कॉलेज क्रश, या एक दूसरे साथियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, मस्ती करना, ऐसा कुछ भी लम्हा, ऐसा कुछ भी पल अगर आपको याद है तो हमें ज़रूर बताएं साथियों, हम ज़रूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अनिल बुरांडे हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री बुरांडे के साथ बलहार शाह से इन्होंने कुछ साथी हैं, जैसे कि सूरज लोंढे और प्राची एकलव्य, इनके साथ भी ये संदेश भेजा है। अगला संदेश है रविंद्र मोहन दास जी का, इन्होंने बिहार किशनगंज से भेजा आशा देवी जी के साथ संदेश। छावड़ा जी का भी संदेश आया है, ये हैं रविंद्र छावड़ा जी, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा के साथ नई दिल्ली से इन्होंने संदेश भेजा, और ये लिखते हैं कि कॉलेज के वो दिन शायद जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, क्लास में कम और दोस्तों के साथ मस्ती में ज्यादा वक्त गुजरता था, कैंटीन की चाय, बेवजह की हंसी, छोटी छोटी शरारतें और दोस्तों के साथ बिताया हर पल आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आता है। वक्त गुजर गया, कॉलेज छूट गया, मगर उन दिनों की मस्ती और यादें आज भी दिल में वैसी ही ताजा है। बिल्कुल सही कहा आपने छावड़ा जी, क्योंकि कॉलेज के वो खूबसूरत दिन सच में सभी मिस करते हैं, उन्हें पूरी जिंदगी हम सब मिस करते रहेंगे। साथ ही हमारे लिस्नर है तुलसी मस्किन, उन्होंने भी संदेश भेजा बिहारी कॉलोनी शाहदरा से बीना मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित और केशव रिधान खुराना के साथ। ये लिखते हैं कि देखिए मस्किन जी, इंतज़ार में जो मज़ा है वो शुरू शुरू में ही शामिल होने में थोड़ी मज़ा है, आप देखिए जितना इंतज़ार करते हैं उतना प्रोग्राम भी हमारा ध्यान से सुनेंगे। ये इन्हीं भी शिकायत है कि मैसेज अभी तक शामिल नहीं हुआ, अब आपका मैसेज शामिल हो गया, और ये कहते हैं कि हमने कॉलेज गए नहीं तो क्या बताएं। तो कोई नहीं, आपने आपके ऐसे भी साथी होंगे ना, जैसे जब आप जवान होंगे, जवान थे मतलब, तब आपके भी तो साथी मित्र होंगे ना, उनके साथ भी तो आप खुशफुसाहट, वो मोहल्ले की लड़कियाँ, गली नुक्कड़ पे खड़े होना, उनसे बातें करना, अगर ऐसा कुछ आपने भी किया है तो आप जरूर साझा कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका संदेश हम जरूर शामिल करें। और ये देखिए अगला संदेश, ये भी हमारे साथी ऐसा ही लिख रहे हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने संदेश भेजा जमशेदपुर से, ये कहते हैं कि जो इंसान कभी कॉलेज गया ही नहीं वो क्या शेयर करेगा। आपकी बात सही है, तो कोई नहीं, आपकी भी तो खुशफुसाहट होगी भाई, आपकी आपका अपना कॉलेज के अलावा अपना सर्कल होगा ना, अपने मोहल्ले गली का, वहाँ पर भी तो होता है ना चुपके चोरी चोरी, चुपके चुपके आमने सामने नज़रें मिलाना, इधर उधर देखना, कोई अच्छी सी दोस्त समझ में आ जाए, अच्छे और अपने दोस्तों के साथ, हम उम्र दोस्तों के साथ मस्ती करना, खूब सारी मस्ती करना, खेलना, मार्केट जाना, खाना पीना, हंसना, एक दूसरे के साथ खूब सारी हुड़दंगबाजी करना, ये सब चीज़ें भी अगर आपने की हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज के ही दिन सब कॉलेज में ही गए हैं, हम आप समझ सकते हैं। और अगले साथी हैं हमारे चंडीगढ़ सिटी से भेजा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने ये संदेश, और ये भी कहते हैं कि अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनने की फरमाइश की है, तो कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत भी सुनवाने का। फारूक अली खान है, इन्होंने संदेश भेजा है, ये लिखते हैं, इन्होंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं है लेकिन आपको हम शामिल कर चुके हैं। रमेश चौहान है, इनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं साथियों, अधिकतर हमने साथियों के अभी तक जितने प्राप्त हुए हमें संदेश हैं वो शामिल कर चुके हैं। एक और हमारे साथी हैं जिनका संदेश हमने अभी लिया जी, आपका संदेश भी शामिल कर चुके हैं, तो अब सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। दिल है कि मानता है नहीं, उस फिल्म से बहुत ही खूबसूरत गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। दिल है नहीं नहीं अदाएं भी है।

तो हमारे जो साथी हैं उनके दिल में बहुत सारी मोहब्बत है हम सब के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा उन्हें तब आ जाता है जब उन्हें लगता है कि जी हाँ, जब उन्हें लगता है कि हमारी मेल शामिल नहीं हो रही। अब साथियों, हम हर बार गुजारिश करते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी शिद्दत के साथ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और लिखते भी हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि सभी साथियों के संदेशों को शामिल करें हम, लेकिन आपकी आप ही में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं ना जो आपकी मेल्स को पीछे कर देते हैं, एक ही संदेश को 10-10, 12-15 बार भेजते हैं, तो बताएं फिर आपकी छुप जाती है ना। तो हमारे पास भी आप समझ सकते हैं तकनीक की भी एक सीमा

होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें अपने सभी साथियों के साथ, आप तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लिसनर्स क्लब्स के थ्रू, तो उसमें डिसाइड करें ना कि सभी लोग एक ही बार मैसेज भेजेंगे, बार बार मैसेज नहीं भेजेंगे, ताकि सबके संदेशों को हम शामिल कर पाएं। आपका कॉपरेशन, आपका सहयोग हमें चाहिए, और ताकि हम भी ज्यादा से ज्यादा लिसनर्स को शामिल कर सकें। और हमारे लिसनर्स मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं शोभापुर गांव से, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा और फरमाइश में इन्होंने 3 से 4 फिल्मों के नाम दिए हैं। आर कुमार जी हैं, इन्होंने संदेश बड़िंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है। ताज मोहम्मद जी ने भी हमें संदेश भेजा है लक्सर हरिद्वार आजाद नगर उत्तराखंड से, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां के साथ, इन्होंने भी अपनी पसंद के फिल्म के गीत में शामिल होने के लिए कहा है। अनिल मोहन जी का संदेश शामिल कर चुके हैं, बोधराज खोरवाल जी हैं, इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ संदेश भेजा है और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा और नवीन शर्मा, मैंडी, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा के साथ संदेश भेजा और इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश चौहान जी ने भी हमें संदेश भेजा और आपका संदेश हम शामिल कर चुके हैं। रमेश जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से हमें छाया, प्रियांश और अनिल कोल्हेर का संदेश आया है। इसके साथ साथ हमारे और साथी हैं जिन्हें हम शामिल करना चाह रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई भी साथी हमारा छूटे नहीं। हाँ, इंद्रजीत जी हैं, इनका संदेश है नई दिल्ली वेस्ट, स्वीटी इंद्रजीत और रविंदर सिंह के साथ। आपका संदेश फिर से शामिल कर चुकी थी मैं, लेकिन इस संदेश में आपने बड़ा अच्छा सा लिखा है कि कॉलेज में एक ऐसा शख्स था जिसके आते ही दोस्तों की बातें कम और हमारी नजरें ज्यादा बोलने लगती थी। उसे देखकर मुस्कुराना, सामने से गुजरते हुए अनजान बनना और फिर दोस्तों से उसी के बारे में बातें करते रहना, यही तो था उस उम्र का प्यारा सा क्रश। बिल्कुल सही, ना कोई इजहार हुआ ना कोई वादा, फिर भी वो चेहरा कॉलेज के दिनों की सबसे खास याद बन गया। यही तो सब हम जानना चाह रहे थे। अब जो साथी कॉलेज नहीं गए तो वो तो अपनी गली मोहल्ले आसपास की स्कूल की बातें बता सकते हैं। भाई, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आप कॉलेज नहीं गए तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप देखिए, हमारे साथी बार बार एक संदेश भेजते हैं, तो गुलाब दास जी हैं, इनका भी संदेश मैं शामिल कर रही हूँ, माणिकपुरी जी का। ये लिखते हैं कि आज आपने स्कूल के दिनों को की याद दिला दी, और जब हम अपने गांव के दूसरे गांव पैदल स्कूल जाते थे तो बीच में एक नाला पड़ता था जो बरसात के दिनों में भर जाता था, तो हम लोगों को पार करने में बड़ी मुसीबत होती थी। हम सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर जैसे तैसे भीगते हुए पार करते थे। मुसीबत तो थी लेकिन बड़ा मजा आता था। मैं आज उस रास्ते से कभी भी गुजरता हूं तो वो दृश्य मेरे सामने याद आ जाता है। सच में ये यादें बहुत ही खूबसूरत और अनमोल है। चैलेंज भी थे उस जमाने में, कितना मुश्किल भी था लेकिन उसे भी इंजॉय करते थे हर चीज को। भवरपुर बसना से है राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन, राजू नेहा जगदीश देवांगन जी का संदेश, इन्होंने भी किसी भी गीत में शामिल होने के लिए कहा। सुनील पाठक जी का भी संदेश आया है और ये भी लिखते हैं कि बहन जी, हम कॉलेज गए नहीं क्योंकि हमारे पिताजी काम बहुत ही कम करते थे, इसलिए मुझे काम करना पड़ा। तो कोई नहीं, अनारकली बाजार जगराओं से इन्होंने संदेश भेजा है। सुनील जी, आप अपने और दूसरे एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो हम समझ सकते हैं। परिस्थितियां कई बार इंसान को बांधे रखती हैं, रोके रखती हैं, लेकिन फिर भी खूबसूरत यादें गली मोहल्ले स्कूल और दोस्तों के साथ, जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ हम सबके होते ही हैं। और हमारे श्रोता है बबल जी, इन्होंने भी संदेश भेजा है जिसे, क्योंकि घड़ी इशारा करिए कि समय कम है, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि आप सबके संदेश में शामिल कर लूं। ओम प्रकाश मल्होत्रा और बबल मल्होत्रा का मोहाली पंजाब से संदेश है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा मेल भी शामिल कर लीजिए, तो लीजिए, आपका संदेश शामिल हो चुका है। साथ ही साथ अभी जितने संदेश मैं देख रही हूँ इन सबके संदेश हम शामिल कर चुके हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित, खुशी गोस्वामी, इन्होंने रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से अपना संदेश भेजा और इन्हें कार्यक्रम पसंद आया, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपके प्रोत्साहन से ही हम भी अपना प्रोग्राम अच्छे से अच्छा पेश करने की कोशिश करते हैं। और

ये देखिए, चलते चलते उषा मोहन जी ने एक प्यारा सा संदेश भेज दिया। ये लिखते हैं कि एक और जहां दूर दराज के श्रोताओं के ईमेल कार्यक्रम में इनको भी शिकायत थी, अभी आपका मेल शामिल कर चुकी हूं मैं पहले, आपने ध्यान से नहीं सुना। शिकायत करने से पहले आप पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुने भाई। आप उषा मोहन जी, टिल्लू नायक जी, आप सबका संदेश मैंने बहुत पहले ही शामिल कर लिया था प्रोग्राम में। और अनूप सिंह जी ने भी संदेश भेजा, अभी अभी हमें स्क्रीन पर मिला, गांव कल मंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावाथ हैं ये शायद। इन्होंने अपना संदेश भेजा कि 90 के दशक में पढ़ाई की, रेडियो कार्यक्रम सुनने में लगे, गाने की 90 के अच्छे लगते हैं। अच्छा, मतलब आपको प्रोग्राम पसंद आया, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि कोई और अगर हमारा लिसनर बच गया तो चलते चलते उनके संदेश भी शामिल कर लें। जैसे उत्तम सिंह चंघेल जी हैं, उनका संदेश आया कि जब स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का पर्सनैलिटी अलग होते हैं और स्कूल से अलग हटके। भिलाई छत्तीसगढ़ से इन्होंने मोरस चंघेल और अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी चंघेल के साथ ये संदेश हम तक पहुँचाया है। सीताराम कांगड़ा जी का भी संदेश हम तक पहुंचा है। बबीता बोट, निखिल तन्वी और के साथ एकता कॉलोनी रोहतक से। नासिर शेख ने भी संदेश भेजा और रास क्रिएशन की तरफ से पार्थ रेडियो क्लब की ओर से छत्रपति संभाजी नगर से संदेश आया था। राजेश सांभले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, शीतल, इन्होंने हमें संदेश भेजा था। पीएस नाहवकर जी ने भी संदेश भेजा था नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, निर्मला विशाल और सोपान ताइड़े नारायण आशीष के साथ। मस्कीन दादा जी ने भी, जिनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं, भेजा था संदेश। बबलेश पवार जी ने भी संदेश भेजा, प्रमोद बगाड़े हैं, फिर साथ ही साथ हमारे चंदू कुलकर्णी जी हैं, सतीश अनिजा जी का संदेश ले चुके हैं, तनुजा देवांगन जी का संदेश है और कीर्तनपुरी गोस्वामी जी ने भी संदेश भेजा, संजय ढींगिया ने भेजा। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई और साथी हमारा छूट गया तो कोशिश कर रहे हैं उसे भी शामिल करें। जैसे एस एम जावेद हैं, इन्होंने भी हमें संदेश भेजा शगुफ्ता अंजुम जावेद के साथ गुमला झारखंड से। सुधाकर जाधव जी ने भी संदेश भेजा, सोहन जोशी जी का भी संदेश हमें मिला है, सिद्धार्थ गोडाने जी का संदेश हम तक पहुंचा है, मेहर अरोड़ा और रवि कुमार जी का भी संदेश, दिवेश वर्मा, नीटू मल्होत्रा जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं प्रोग्राम में। तो साथियों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपने संदेश, नारायण खर्चे हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा। देखिए साथियों, हम कोशिश करते हैं, आपको बोलते भी हैं कि 10:10 के बाद जो संदेश आए उन्हें हम ज़्यादा प्राथमिकता से लेते हैं। तो कोशिश करें अगले कार्यक्रम जो कि अगले रविवार को हमारी मुलाकात होगी उसमें 10:10 के बाद ही अपना संदेश हम तक पहुंचाएं। रजक मोहम्मद जी ने भी भेजा, नारायण खर्चे जी का जैसे हमने नाम शामिल लिया अभी की, उन गुरमीत सिंह जी का भी संदेश आया, प्रवीण होगोने हैं और मोहम्मद सईद आबासी जी, इन्होंने भी सभी ने संदेश हम तक पहुँचाया है। तो साथियों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद आपका शुक्रिया। और अब विदा चाहती हूँ आपसे क्योंकि समय कम है आपसे विदा लेने का। नमस्कार, जल्दी ही मिलूंगी एक और प्रोग्राम में।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: Yeah.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाण जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर हो रहा है। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्ष से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने पहला पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी 1998 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरस। सबरस में आज आपने सुने लालित्या मोहन शाह, सुचित्रा और शुभा मुद्गल, साथ ही गुरदास मान के गाए गीत। और अब समय हुआ है सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रोमिता मुखर्जी का वायलन वादन राग अलहैया बिलावल। तबले पर आपके साथ संगति कर रहे हैं उस्ताद अख्तर हसन।

अभी आप सुन रहे थे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रोमिता मुखर्जी का राग अहिल्या बिलावल में वायलन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे उस्ताद अख्तर हसन।

0: और श्रोता बाबा, आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी समाचारों का, और 12:10 पर आप सुन सकेंगे महिला कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं के। इस कार्यक्रम में आज आप यमुना और रेणु तंवर के साथ रहेंगे। दोपहर 1 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और एक ही फिल्म से कार्यक्रम ना सुनना भूलें, तृप्ति जौहरी के साथ रखवाला फिल्म आज है, और इस फिल्म के बारे में इसकी कहानियां जरूर सुनें। और श्रोताओं, बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक बीएमडब्ल्यू कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगे और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
3: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India, and High Court.

0: Bala Rivan clinched a silver medal in the women's 10-meter air rifle event at the Aichi Nagoya Asian Games in Japan today. She added the individual silver to the team silver she won earlier in the day. In hockey, the Indian women's team began the Asian Games 2026 campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium in Japan today. इन वुमेन्स क्रिकेट इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ 100
1: आजकल सफाई का अभियान भी बहुत चल रहा है
2: स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है ना
1: जी आज 20 सितंबर है और आज ही के दिन हम सफाई दिवस मनाते हैं जिसे कि दुनिया भर में कचरे और प्रदूषण को खत्म करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाती है ताकि सफाई की जाए वैसे तो महिलाएं अपने आप में ही इतनी सुसज्जित हैं कि वो घर में लगी रहती हैं सफाई करने में
2: बिल्कुल सही कह रही हो और सरकार द्वारा वर्ष 2026 में जो स्वच्छता को लेकर स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है इस वर्ष अगर देखा जाए तो इसका जो उद्देश्य है ठोस कचरा प्रबंधन नियम के बारे में मान ली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की हम बात कर रहे हैं तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है और स्वच्छता सेवा अभियान 17 सितंबर से अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक चलेगा ये और थीम है इसका स्वच्छता से सहभागिता स्वच्छ भारत विकसित भारत
1: बिल्कुल तो सफाई अभियान बहुत जरूरी है और अपने आसपास भी सफाई रखें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात कही जाती है तो

0: तो इसका जो उद्देश्य है ठोस कचरा प्रबंधन नियम के बारे में, मान ली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है। और स्वच्छता सेवा अभियान 17 सितंबर से अगर देखा जाए तो अक्टूबर तक चलेगा ये, और थीम है इसका स्वच्छता से सहभागिता, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
1: बिल्कुल, तो सफाई अभियान बहुत जरूरी है और अपने आसपास भी सफाई रखें तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात कही जाती है, तो

0: और हमारे जो श्रोता हैं वो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, और सुनना ना भूलें कि हर रविवार 12:10 पर हम शामिल हाजिर हो जाते हैं। और पोषण की बात कहूँ तो मैं ना, हम माएँ बहुत ध्यान रखती हैं कि भाई बच्चों को सही तरीके से खाना मिले, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना खाना, यमुना जी, सही से खाते नहीं है। सही कह रही हूँ ना?
1: तो जो आप कह रही है ना, तो सच कहें, खाने की जो बात आती है, पोषण की बात आती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हम अपने पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो ऐसी कुछ ध्यान की बातें हम लेकर के आए बहनों के लिए कि वो भी थोड़ा सा जागरूक हो जाए और हमारी इस बातचीत को सुने, जिसमें सरिता गुप्ता जो कि लेखिका भी हैं और शिक्षिका भी हैं, इनसे बातचीत कर रही नीलम मदान। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता गुप्ता, आप हैं लेखिका एवं शिक्षिका, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि बच्चों के पोषण में माँ की क्या जिम्मेदारी है। डॉक्टर सरिता, हम शुरू करते हैं कि क्या है माँ की जिम्मेदारी।

और माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा। और इसमें परिवार की भी महती भूमिका होती है कि गर्भवती महिला को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इस चीज का हमें ज्ञान देना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए कि गर्भ अवस्था में पत्नी के साथ होने वाले जो मूड स्विंग्स हैं या खाने पीने में बदलाव हैं, स्वास्थ्य की कोई भी

है। और उस समय इसीलिए कहते हैं जिस समय माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस समय उसको कोई ना कोई अपना धर्म से संबंधित मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, इससे बच्चे के अंदर जो है आध्यात्मिक विकास भी होता है। कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। कहते हैं कि घर की जो महिला होती है वो अन्नपूर्णा होती है, और हम जिस भावना से सामने वाले को भोजन परोसते हैं उसके अंदर उसी तरह की

0: जैविक और वैकल्पिक उर्वरकों को खाद को बढ़ावा दें, और साथ ही ऐसा करने से देखें तो मिट्टी की जो सेहत वो सुधरेगी, और
1: बिल्कुल
0: इससे जैविक खाद मतलब जो ऑर्गेनिक आप रोपण करते हैं उसकी बायोफर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना सब्सिडी की बचत पर आधारित है, मतलब जैसे किसी राज्य ने अपने प्रयासों से रासायनिक खाद का उपयोग कम करके केंद्र सरकार की अगर 1,000 करोड़ रुपए बचाए तो केंद्र सरकार उस राज्य को 500 करोड़ का इनाम देगी।
1: क्या तरीका है,
0: मतलब इसका अलग से कोई बजट नहीं,
1: नहीं है, और यानी कि रासायनिक खादों पर मिलने वाली सब्सिडी का बोझ भी कम हो जाएगा।
0: तो वही धरती है ना, जब पुकार के कहती है तो क्या कहती है।

निभाया है लीना चंद्रवरकर ने। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं है। कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है श्याम का, जिसे निभाया है विनोद खन्ना ने। दीपक और श्याम के बीच रिश्ते धीरे धीरे तनावपूर्ण होते जाते हैं और वहीं से कहानी में प्रेम के साथ साथ दुश्मनी और साजिश का रंग भी गहरा होने लगता है। कहानी में आगे

जाती है और हत्या का आरोप दीपक पर लगा दिया जाता है। जिस भाई की रक्षा करने का वचन दीपक ने अपनी मां से लिया था, उसी भाई की हत्या के आरोप में वो खुद फंस जाता है। अब दीपक के सामने दो चुनौतियां हैं, एक तरफ अपने ऊपर लगे आरोप को गलत साबित करना और दूसरी तरफ उसी असली अपराधी को ढूंढना जिसने उस

बातों के बारे में। अब बात करते हैं फिल्म रखवाला से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। तो पहली बात ये कि ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी और इसमें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसी दो लोकप्रिय कलाकार एक साथ नजर आए। इसी के साथ फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने दिया था। फिल्म के गीतों में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे महान गायकों की आवाजें आपको सुनाई देती हैं। तीसरी खास बात, रखवाला तमिल फिल्म कावला कारन का हिंदी रूपांतरण थी। और खास बात यह कि फिल्म में रोमांस और गीत संगीत के साथ साथ रहस्य और एक्शन को भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। साथ साथ अगर हम गीत संगीत की बात कर रहे हैं तो क्यों ना सुन लेते हैं इसी बात पर एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

की दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। अगली ईमेल आई है, आरजे मैडम सुनी दीदी गुप्ता जी नमस्कार। तो माफ कीजिएगा, मेरा नाम तृप्ति जौहरी है और आप हैं हमारे साथी सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा। और अगली ईमेल आई है हमारी कार्यक्रम में, संजय ढींगिया जी ये हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। और ये लिखते हैं, आज की फिल्म रखवाला के गीत व जानकारी इन्हें पसंद आ रही है, शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद। और अगली जो ईमेल आई है ये आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, आप हैं

0: यात्रावां दी तीजे पड़ा दी शुरुआत अज केंद्री कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका दी सादिकी सरहद तो कर रहे ने। केंद्री मंत्री ने जो फाजिलका पहुंचे ने सूबा भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ते होर पार्टी आगुआ नाल 1971 दी भारत पाकिस्तान जंग दे शहीदां नूं आसफ वाला जंगी यादगार ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। मीडिया नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि आउंदी पीढ़ी नूं बचाउण दा प्रोग्राम है,
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: मंत्री ने भी कहा कि इस यात्रा नूं सियासी नजरिए तो नहीं देखा जाना चाहिए जिवें कि कुछ लोग कह रहे ने।
2: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहें और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं। हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए ये यात्रा है। कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विषय वस्तु नहीं है।
0: उन्होंने कुछ नशा प्रभावित परिवारों के मेंबरों नाल भी मुलाकात की थी अते उन्हां दा दुख सांझा कीता। ए यात्रा 18 सितंबर नूं सरहदी जिले पठानकोट तो पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन वल्लों शुरू की गई सी। ए मौजूदा समय विच पंजाब नूं दरपेश तीन वड्डियां चुनौतियां, वधदी नशाखोरी, बिगड़दी कानून व्यवस्था अते शासन दे हर पद्धर ते भ्रिष्टाचार ते केंद्रित ए। ए नशे विरुद्ध लड़ाई नूं इक लोक लहर विच बदलण लई राज दे सारे 117 विधानसभा हलकियां नूं कवर करेगी। सीनियर पत्रकार पायल मेहता दा अज सवेरे मुंबई विच देहांत हो गया। ओ 46 साला दे सन। मुंबई आए श्रीमती मेहता नूं सवेरे अचानक तबीयत खराब महसूस हुई अते उन्हां नूं अस्पताल ले जाया गया जिथे उन्हां ने आखरी साह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ते लोकसभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने पायल मेहता दे देहांत ते सोग प्रगट कीता है।

0: मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि सिर्फ योग्य परिवारों को ही सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलन। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी योग्य परिवार को एलपीजी तो वांझा करना नहीं है। बांग्लादेश विच ढाका दे जात्राबाड़ी चौराहे ते कई बम धमाके होए ने। एक दिन पहला स्थानक पुलिस थाणियां दे बाहर भी इसी तरह के धमाके होए सन। इस ताजा घटना विच एक रिक्शा चालक जख्मी हो गया है। यमन दे हौती लड़ाकियां वल्लों साउदी अरब नूं निशाना बना के मिजाइल ते ड्रोन हमले करन तों बाद पछमी एशिया विच तनाव वध गया है। वधदे खेतरी तनाव दरमियान अमरीका ने अपने नागरिकां नूं तनाव दे संभावित तौर ते तेजी नाल वधण, उडाणा विच विघन ते अमरीकी हितां नूं निशाना बना के हमले होण संबंधी चेतावनी दिंदिआं पछमी एशिया दी यात्रा ते मुड़ विचार करन दी अपील कीती है। खेडा विच भारत की एला वेनिल वालारिवान ने अज जापान विच आईची नागोआ एशियाई खेडा विच औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्या है। इस तो पहला भारत ने औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल टाइम मुकाबले विच चांदी दा तमगा हासिल कीता। भारत की औरतों की हॉकी टीम ने एशियाई खेडों की शानदार शुरुआत करदिया अपने पूल बी के शुरुआती मैच विच उज़्बेकिस्तान नूं 19-0 नाल हराया। भारत का अगला मैच कल इंडोनेशिया खिलाफ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एला वेनिल वालारिवन, विदर्शा के विनोद ते सोनम उत्तम मसरकर नूं एशियाई खेडा 2026 विच औरतां दे 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले विच चांदी दा तमगा जित्तण ते वधाई दित्ती है। औरतां दे क्रिकेट विच भारत ने जापान दे कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क विच एशियाई खेडा दे दूजे सैमीफाइनल विच बांग्लादेश दे सामने 196 दौड़ां दा टीचा रख्या है। इस तो पहला भारत ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करन दा फैसला कीता। शेफाली वर्मा ने अपना पहला सफेद गेंद वाला अंतरराष्ट्रीय सैकड़ा ला के इतिहास रच दिता ते एशियाई खेडा विच सैकड़ा लाउण वाली पहली बल्लेबाज बन गई है। इस दौरान सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स नूं पिछे छड्ड दिया औरतां दे 2020 भी सब तो वध दौड़ा बनाउण वाली खिडारन बन गई है। आखिर च खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम नवी दिल्ली विच चुगिरते ते जलवायु गतिशीलता दे भविख बारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दे समाप्ति सैशन नूं संबोधन करनगे। विकसित भारत लई नशा मुक्त युवा मुहिम दे हिस्से वजों अज देश भर विच प्रोग्राम कराए जा रहे ने। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अज फाजिलका दी सादिकी सरहद तों पंजाब भाजपा दी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा दी शुरुआत कर रहे ने। इस दे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:10 ते होएगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नशा मुक्त भारत के लिए नौजवानों को यकजा करने की खातिर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह का एहतमाम किया जा रहा है। भारत और जापान ने जोधपुर में वीर गार्जियन दो तरफा फिजाई मशकों के साथ दिफाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाया है। मगरबी एशिया में कशीदगी फिर बढ़ गई है, हौसियों ने सऊदी अरब पर मिजाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने चांदी के दो तमगे जीते हैं। भारत बांग्लादेश को हराकर एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। शिफाली वर्मा एशियाई खेलों में सेंचुरी बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान और निकोबार जजायर, साहिली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के मुहरिकात के मुस्तकबिल के बारे में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। उम्मीद है कि इजलास के दौरान बिजली महकमे के मरकजी वजीर मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीवी नागरत्ना और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस ने अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालत

0: श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: माहौलियात और आबोहवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक इस कॉन्फ्रेंस ने अदालती हिकमत अमली, साइंसी मालूमात, माहौलियात से मुतालिक हुक्मरानी के तौर तरीकों और इदारा जाती तजुर्बात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। इस कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के माहिरीन, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जिला अदालतों के जजेस, मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी

0: and the Asian Games campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium today. Deepika Sherawat was the star of the match as she scored 8 goals. Ishika Chaudhary scored 3 while Lal Than Luangi and Neha each bagged 2. India will next take on Indonesia tomorrow. In swimming, Indian swimmer Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100-meter breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds at the Asian Games. China's Shi Jiayu topped the heats while Japan's Hidekalu Takehara finished 2nd. Union Sports Minister Mansukh Mandavia today joined members of the Indian diaspora in Japan for a special Sundays on Cycle event organized to cheer for the Indian contingent. In a statement, Mr. Mandavia praised the Indian diaspora in Japan for supporting the country's athletes. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana, Vidarbh are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will organize at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. And IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। पांच दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
4: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
2: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
5: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपा गोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
6: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि भूमि और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
7: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
6: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
9: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
1: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
10: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वही हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
11: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला टी20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने

0: बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 2:30। जी हाँ, आपको रहता है बेसब्री से इंतजार इस समय का। आज है रविवार और रविवार आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं आज अपने इस कार्यक्रम को सुनने, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत का आज जन्मदिन भी है। और खैर, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आज आपके एक ही कलाकार कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त कुसुमलता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस कार्यक्रम में अगर आप शिरकत करना चाहें, अपना कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको याद आ जाए, या कोई पसंदीदा गीत, या फिर कोई बात करनी हो, तो आप भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर अपनी डिजिटल चिट्ठी। जी हाँ, डिजिटल चिट्ठी इसलिए क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, और इस ईमेल के जरिए भेजने वाले संदेश को हम कहते हैं डिजिटल चिट्ठी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लेकिन स्वागत करते करते हम छोटा सा एक मधुर जो सुर है वो बांध लेते हैं अपने साथ, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारे सुर बंधने वाले हैं, और क्योंकि ये तो आप अपने आप जान ही जाएंगे। खैर, कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ मैं, क्योंकि आज का सफर जो है थोड़ा सा अलग है। आज हम बात करेंगे उस फिल्मकार की जिसने फिल्मों में सिर्फ अपनी कहानियां नहीं कही, बल्कि जीवन के अंदर चल रही जो भी इंसान के अंदर कहानियां होती हैं उनको पर्दे पर उतारने की कोशिश की। वो कहानी जिसमें प्यार है, टूटना है, रिश्तों की उलझन है, अकेलापन है, सपने हैं, और सबसे बड़ी बात जिंदगी की सच्चाई है। जी हाँ, आज का जो एक ही कलाकार का हमारा विषय है, एक ऐसी शख्सियत महेश भट्ट, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जिनकी फिल्मों के जरिए आपने जाना होगा कि उन्होंने अपनी फिल्मों में हर एक उस जिंदगी की सच्चाई को छूने की कोशिश की जो इंसान के भीतर चलती है। ये एक ऐसा नाम है जिसने हिंदी सिनेमा में अलग अलग तरह की कहानियों को अपनी खास नज़र से देखा। कभी अर्थ के जरिए रिश्तों के भीतर की बेचैनी सामने रखी, तो कभी सारांश में उम्र, अकेलेपन, जिंदगी के अर्थ को छुआ, और फिर आशिकी जैसी फिल्म के जरिए प्रेम और संगीत को एक ऐसी लोकप्रिय पहचान दी जिसे आज भी याद किया जाता है।

तो आज के अगले 30 मिनट हम सिर्फ महेश भट्ट की फिल्में नहीं गिनेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कौन सा नजरिया था जिसने महेश भट्ट को महेश भट्ट बनाया। कौन है महेश भट्ट दोस्तों? महेश भट्ट का नाम हिंदी सिनेमा के उन फिल्मकारों में लिया जाता है जिन्होंने निर्देशन के साथ साथ लेखन और निर्माण के क्षेत्र में भी काम किया। बात करेंगे लेकिन सुनते हैं पहले ये गीत।

तो बात कर रहे हैं आज हम महेश भट्ट की। आज इनका जन्मदिन भी है, हम सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं। और साथ में हम बताना चाहेंगे कि 20 सितंबर 1948 को बॉम्बे में जन्मे महेश भट्ट ने फिल्म दुनिया में अपनी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उनकी पहली निर्देशित फिल्म मंजिले और भी हैं 1974 में आई, लेकिन हर फिल्मकार की तरह उनके लिए भी सफ़र एक फिल्म से शुरू होकर पहचान तक नहीं पहुंचता। उसके पीछे होते हैं कई प्रयोग, कई असफलताएं, कई सवाल और सबसे ज़रूरी अपनी आवाज़ खोजने की कोशिश। महेश भट्ट की फिल्मों में एक चीज़ बार बार दिखाई देती है, इंसान की कमज़ोरी को छिपाया नहीं जाता। जी हाँ, उनके किरदार हमेशा परफेक्ट नहीं होते, गलतियाँ करते हैं, टूटते हैं, कभी अपने फैसलों से जूझते हैं और कभी अपनी परिस्थितियों से। यही वजह है कि उनकी फिल्मों के किरदारों में दर्शक अक्सर खुद को तलाशता हुआ दिखाई देता है। और अब जरा माहौल को थोड़ा सा फिल्म संगीत के जरिए जोड़ देते हैं।

दोस्तों, संगीत के बिना महेश भट्ट की सिनेमाई दुनिया की चर्चा अधूरी लगती है। और अब बात उसी फिल्म की जिसने प्रेम और संगीत को एक नई लोकप्रिय पहचान दी, आशिकी।

गीत भी सुनते रहिए और बातें भी। जी हाँ, क्योंकि समय जो होता है ना बहुत ही थोड़ा होता है हमारे कार्यक्रम का और बातें बहुत ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि गागर में सागर वाली बात कर दें, यानी कि कम समय में बहुत सारी बातें कर ले। तो बात कर रहे हैं आज हम एक ही कलाकार कार्यक्रम में महेश भट्ट की। अर्थ के जरिए उन्होंने रिश्तों को देखने का नया नजरिया बनाया। साल था 1982, फिल्म आई अर्थ। और यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये रिश्तों के भीतर मौजूद सवालों की कहानी थी। शादी क्या है, प्यार क्या है, विश्वास क्या है, और अगर किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो क्या जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। अर्थ ने इन सवालों को बहुत ही सीधे तरीके से सामने रखा। फिल्म में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार थे। फिल्म का केंद्र था एक वैवाहिक रिश्ता जिसमें प्रेम, विश्वास और विवाह के बाद संबंध की जटिलता सामने आती है। महेश भट्ट के अपने जीवन के अनुभवों का प्रभाव भी इस फिल्म से जोड़ा जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी फिल्म की असली ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि उसकी कहानी किससे प्रेरित है, उसकी असली जो ताकत होती है ना, वो होती है कहानी दर्शक के भीतर कौन सा सवाल छोड़ जाती है। जी हाँ, और अर्थ भी यही करती है। वो पूछती है कि अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो क्या इंसान भी टूट जाता है, या वो खुद को दोबारा बना सकता है, जोड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि अर्थ को आज भी एक सिर्फ पुरानी फिल्म कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो लीजिए सुनते हैं अर्थ फिल्म का ये गीत।

ये फिल्म बनी तो महेश भट्ट के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में इनको गिना जाता है। नाम तो हमने आपको बताया ही। 1984 में आई ये फिल्म एक बुजुर्ग दंपति की कहानी के माध्यम से दुख, अकेलेपन, जिंदगी के अर्थ को सामने लाती है। फिल्म में अनुपम खेर ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अनुपम खेर अपने करियर की शुरुआत में थे, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने एक अभिनेता के रूप में गंभीर पहचान बनाई। सारांश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली और भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि बनी। दोस्तों सोचिए, एक माता पिता, उनका इकलौता बेटा उनसे दूर चला जाता है। घर वही है, कमरे वही हैं, यादें वही हैं, लेकिन घर में मौजूद एक इंसान की कमी पूरी जिंदगी को बदल देती है। यही है सारांश की संवेदना, और शायद इसी वजह से ये फिल्म हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है। अब जिंदगी हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं? महेश भट्ट के सिनेमा में ऐसे सवाल बार बार लौटते हैं और यही उनकी खासियत है। दोस्तों महेश भट्ट का सिनेमा सिर्फ गंभीर और संवेदनशील सवालों फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने मुख्य धारा के लोकप्रिय सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई। 1986 में आई नाम ने उनके करियर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने ऐसा सिनेमा बनाया जिसमें भावनाएं भी थी, कहानी भी थी और दर्शकों से जुड़ने की लोकप्रिय क्षमता भी। यानी एक तरफ गंभीर विषय, दूसरी तरफ आम दर्शक से सीधा संवाद। यही संतुलन महेश भट्ट के करियर की एक महत्वपूर्ण पहचान बन गया। और अब 1990 की फिल्म आशिकी। महेश भट्ट के निर्देशन और राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने प्रेम कहानी और संगीत को केंद्र में रखा। लेकिन आशिकी की सबसे बड़ी याद क्या है? जी हाँ, उसका संगीत। आज भी 1990 के दशक के रोमांटिक संगीत की बात होती है तो आशिकी का नाम जरूर आता है। आशिकी से दिल है कि मानता नहीं तक एक ऐसी फिल्म जिसने प्रेम कहानी को संगीत के साथ साथ बहुत मजबूती से जोड़ा, और महेश भट्ट ने कई अलग अलग तरह की कहानियों पर काम किया। 1991 में आई दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान और पूजा भट्ट की जोड़ी, एक रोड ट्रिप की कहानी। जी हाँ, प्रेम का हल्का फुल्का अंदाज। यहाँ महेश भट्ट ने एक दूसरा रूप दिखाया जहाँ अर्थ और सारांश की गंभीरता थी, वहीं दिल है कि मानता नहीं से रोमांस और मनोरंजन का रंग दिखाई देने लगा। उसी दौर में आई सड़क, जो बहुत चर्चित हुई और चर्चित फिल्मों में भी शामिल हुई। 1980 से 1990 के दशक में महेश भट्ट लगातार अलग अलग शैलियों में काम करते नजर आए। कभी सामाजिक और कभी भावनात्मक कहानी, कभी प्रेम, कभी अपराध, कभी संघर्ष और कभी संगीत से भरी कहानी। यही विविधता उनके फिल्मी सफर को खास बनाती है।

गीत भी सुनते रहिए और अपना नाम भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं के संदेश आ चुके हैं। तो जो बिल्कुल 2:30 पर हमें संदेश आया पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशात, लखन, सावित्रीबाई, इनका हमें संदेश मिला, मसरूर हसन जी का, दिग्दर्शन गौर जी का, अमर रमेश कुमार जी का, फारूक अली, ताज मोहम्मद, दिग्दर्शन गौर, बाबू शिवा, आर कुमार, हरजिंदर शिंदे और हिरमानी वर्मा, धर्मेंद्र छिपा जी का, रोहित वशिष्ठ, धर्मेंद्र छिपा, अनिल मोहन जी, संजय दिंगिया जी, राधेश्याम देवांगन, राजकुमार डूडी, रोशन देवांगन जी कहते हैं हम भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, प्रस्तुति लाजवाब रही, क्या बात है। सुदर्शन मुखी जी ने भी संदेश भेजा हमें शांति नगर सोनीपत से, और पीएस नावकर जी ने भी हमें संदेश भेजा। आप सभी का धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में शिरकत की।

क्योंकि समय अब सिर्फ रह गया है 5 मिनट का और बात करनी है बहुत सारी। तो चलिए हम बता दें कि महेश भट्ट एक ऐसे कहानीकार के रूप में हम इन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं जिसने रिश्तों की दरारों को भी कहानी के जरिए ढाला, अकेलेपन को पर्दे पर उतारा, प्रेम को संगीत से जोड़ा, जो निजी निजी अनुभवों को लाखों दर्शकों की भावनाओं से जोड़ सकते हैं। अर्थ से सारांश तक, नाम से आशिकी तक, दिल है कि मानता नहीं से सड़क तक और जख्म तक, उनका सफर एक हमें एक बात जरूर याद दिलाता है। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर दिखाई देने वाली तस्वीर नहीं है, सिनेमा वो एहसास है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारे भीतर चलता रहता है। इसी एहसास के साथ मैं कुसुमलता आपसे विदा लेती हूँ। सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो इंद्रप्रस्थ, जी हाँ इंद्रप्रस्थ चैनल, और याद रखिए कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस एक दिल से निकलकर दूसरे दिल तक पहुंचती हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे, जी हाँ, कार्यक्रम ब्रज माधुरी। 3 बजने को है, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को प्रेम भरो अभिवंदन। सखी देखो, कल बरसाने में श्री राधा के जन्म को उत्सव मनाया गयो। लाली को जन्म सवेरे तड़के ही कराया गयो और पूरे मंदिर में बधाई गायन भई।
0: हाँ, राधा अष्टमी ते ही समाज बैठे और 8 दिवस की झांझ की बधाई गायन होए और 8 दिवस तक नित्य नवीन श्रृंगार धारण करायो जाएगो।
1: सखी, अष्टयाम सेवा को नियम अष्ट छाप के कवि रसिक कवियन द्वारा दियो गयो, पर अष्टयाम सेवा को ही नियम क्यों दियो गयो, जी बात जानवे की है?
0: हाँ बहना, जे ऐसा कहे कि राधा जी की प्रमुख सखी 8 ही और हर सखी अपनी कला में निपुण हती और सेवा के काजे तत्पर और आतुर हो रहती, और या को मतलब अष्टांग योग की भावना ते है सके है।
1: और सखी, 8 दिन तलक जो बधाई गाए जामे बाकू सुन के बड़ो आनंद आवे, बड़ी मनोहारी पद बधाई के गाए जामे।
0: हाँ, बधाई में झांझ मंजीरा ते आनंद और दोनों है जाए, तो एक बधाई गीत तो हम हूँ सुनवाए दे अपने श्रोतान को।
1: हाँ हाँ सखी, चौना ही सुनवाओ ना।
0: तो लियो सुनो, मदन मोहन बजवासी के स्वर में।

0: लीला को आयोजन होएगो।
1: फिर सकी चोटी बंधन लीला साकरी खोर पे और मान मंदिर पे मान लीला और श्याम सगाई होएगी। ऊंचा गांव में सखी गिरी पर्वत पे व्यावला लीला होएगी।
0: हाँ, मटकी फोड़ लीला सांकरी खोर में होएगी, चीर हरण लीला कदम खंडी में, महारास मतलब काऊ न काऊ पर्वत पे, खोर पे, वन उपवन घनी कुंजन में रास लीला को आयोजन हो तो ही रहे है।
1: तभी तो ब्रज के वन उपवन कुंजवन खोर इनको धार्मिक महत्व अधिक है।
0: हाँ, इन्हीं वन उपवनन में, पर्वतन में और उनकी घनी कुंजन में श्री कृष्ण तरिया तरिया के खेल खेलते होंगे और गाय चराते होंगे। बेना वही जगह गांव बस गए और इन वनन के नाम से जाने गए, जैसे काम वन, वृंदावन, महावन।
1: तो सखी चौनाए इन्हीं वन उपवन पे एक वार्ता सुनवाए गए अपने श्रोतान को।
0: हाँ,
1: जाको विषय है ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध वन और उपवन, और वार्ताकार हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल।
2: भैयाओ बहनाओ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे ब्रज के वन उपवन के बारे में। और हम सब जाने ही हैं कि ब्रज प्राचीन काल से ही अपने वन उपवन के लिए प्रसिद्ध रहो है, जाके बारे में ग्रंथन में कहे गयो है, पूर्व हास्य वनम नीय पश्चिम श्योपहारिकम दक्षिण जहनु संज्ञाकम भूमनाख्या तथोत्तरे। पूर्व में हास्य वन यानी कहें तो बरहद जो अलीगढ़ जनपद को है वो क्षेत्र, और पश्चिम में उपहार वन गुड़गांव की सोन नदी के पार तक को क्षेत्र, और दक्षिण में जहन वन यानी आगरा जनपद को बटेश्वर क्षेत्र, और उत्तर में भुवन वन यानी मथुरा की जो यमुना पार वाले क्षेत्र है शेरगढ़ भूषण वन। ये वाक्य बारे में वर्णन करे हैं या के बारे में कहो भी गौ है, इत बरहद उत सोनहद उत सूर सैन को गांव, इत बरहद उत सोनहद उत सूर सैन को गांव ब्रज 84 कोस में मथुरा मंडल माह। जो ब्रज जो है वो 84 कोस में है और मथुरा मंडल जो है जाके केंद्र में है। अगर समग्रता के रूप में देखें तो ब्रज में 133 वन थे प्राचीन काल में, जिनमें थे यमुना पार की ओर कहें यानी कहें कि यमुना की बाई ओर जो थे वो 42 है, और यमुना के दाहिनी ओर यानी शहर की तरफ 91 वन है। मुख्य वन हमारे 12 कहे जामे हैं, जिनको नाम है महावन, काम्य वन, कोकिला वन, ताल वन, कुमुद वन, भांडीर वन, छत्र वन, खदिर वन, लोह वन, भद्र वन, बहुला वन और बिलु वन। इनके संग 12 उपवन माने जामे हैं, जिनमें ब्रह्म वन, अप्सरा वन, बिहुवल वन, कदम वन, स्वर्ण वन, सुरभि वन, प्रेम वन, मयूर वन, मानगीति वन, शेष साइग्री वन, नारद वन, परमानंद वन, और याई के संग 12 जो है प्रतिवनु होते, जिनमें नाम है रनका, वार्ता, करहला, काम्य, अंजन, काम, कृष्ण, शिपड़क, नंद प्रेक्षण, इंद्र, शिक्षा, चंद्रावती और लोहवन। इनके अलावा 12 अभिमन कहे जामे हैं। इन 12 अभिमन में आमे हैं मथुरा, राधाकुंड, नंदगांव, गतिस्थान, ललिताग्राम, ब्रसभानपुर, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, जावन, वृंदावन और संकेत। ये नाम भले ही ऐसे लगे कि काऊ क्षेत्र के या काऊ शहर के नाम है, ये वस्तुतः पहले वन के बीच में बने हुए निवास स्थान है। और या के अलावा 5 सभ्य वन माने जामे हैं, 12 तपोवन कहे जामे हैं, 12 मोक्ष वन कहे जामे हैं, और 12 काम वन हैं, 12 अर्थ वन हैं, 12 धर्म वन हैं और 12 सिद्ध वन हैं। या तरीकाते ये 133 कुल वन उपवन ब्रज के भय। हम सब जाने हैं कि जितने वन हैं ब्रज के उनको कोई ना कोई अधिष्ठाता है, कोई ना कोई पूजनीय व्यक्तित्व है। जैसे हम महावन की बात करें तो महावन में पूजा होवे है दाऊ जी महाराज की, कामवन में गोपीनाथ की, कोकला वन में नटवन नागर की, ताल वन में दामोदर भगवान की, कुमुद वन में केशव भगवान की, भांडीर वन में श्रीधर भगवान की, छत्र वन में हरि भगवान की, खदिर वन में नारायण भगवान की, भद्र वन में हयग्रीव भगवान की, बहला वन में पद्मनाभ भगवान की, बेल वन में जनार्दन भगवान की, परमानंद वन में जय बद्रीश्वर की पूजा जहाँ पे होबे है, काम वन में कहें कि जो प्रतिवन कहलावे है

या मैं परमेश्वर का नाम है, नंदगांव जो अभिमन है वह मैं गोकुलचंद जी की पूजा है, करहेला प्रतिवन है या मैं मुरलीधर की पूजा है, हास्यवन जो पूर्वी सीमा पे है लीला कमल लोचन का वहाँ पूजा है, उपहार वन जो दक्षिण सीमा पे है लोकेश्वर की पूजा है, और जहन वन जो दक्षिणी सीमा पे है वहाँ लंकाधी कुल ध्वंसी की पूजा है, और भुवन वन उत्तरी सीमा पे है वहाँ श्री सतशिला की पूजा है। यह तरीके से वन के अधिष्ठाता हु हैं जिनके नाम पे ये वन अपना प्रचार प्रसार पा में है। हम सब जाने हैं कि जितने भी वृक्ष हैं ब्रज में हो या ब्रज से बाहर कहीं हों, वो काऊ नामधारी हों, वो सब गुणकारी हैं, लाभकारी हैं, हितकारी हैं और परोपकारी हैं। काय रूप में परोपकारी हैं, काय रूप में हितकारी हैं। आप देखो कि वृक्षण ते जो पत्ता मिले हैं, पत्र मिले हैं, वो कौन कौन काम में आमे हैं। पुष्प मिले हैं वो सौंदर्य के साथ दवाई ने काम में आमे हैं। फल हमें भक्षण के काम में आमे, हमारी भोज्य सामग्री को हिस्सा है, वहाँ ये दवा को काम करें। छाया ते तो शीतल छाया हमें मिले ही है, मूल यानी जड़ वो दवा के काम में आवे, वृक्षण की जो छाल है वो काम में आवे, बाकी लकड़ी तो हमारे सब फर्नीचर के काम में आवे। कहे ना कि जो लकड़ी से ही पूरा जीवन चल रहा है आदमी को, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की लकड़ी की महिमा अपनी अलग है। और जो वृक्ष हैं वहाँते हमें गंध मिले, गोंद मिले, भस्म मिले, अस्थि मिले और टहनी मिले, यह रूप में जो उपयोगी है वृक्ष, तो वृक्ष की उपयोग को देख के ही ब्रजवासी ने अपने अपने क्षेत्र में वृक्षण की स्थापना करी, वृक्षण को रोपण करो हो, और वहाँ के संग ही वृक्ष के साथ में ही ब्रज में वन यात्रा हो शुरू भई। वन यात्रा माने कि आप वन की आप यात्रा करें हैं, जो हमारे विभिन्न वन हैं, जैसे हमने कही कि 12 वन हैं, तो 12 वन हैं, 12 ही उपवन हैं, 12 ही प्रतिवन हैं, 12 ही अभिमन हैं, इन सब की परिक्रमा वन यात्रा के रूप में हुए है। सबसे पहले श्री नारायण भट्ट जी के समय में या को प्रसार प्रसार भयो, जाए गोस्वामी विट्ठल लेस जी और बल्लवाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु ने या की शुरुआत करी वन यात्रा की। पहले अगर हम वन यात्रा की बात करें तो पंचतीर्थ परिक्रमा जे श्रावण मास की पंचमी तिथि को होबे है, जहाँ में मधुवन आदि की जो है 5 दिनन की परिक्रमा होबे है। और दूसरी है रामदल परिक्रमा जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की दशमी को वृंदावन से शुरू हुआ है और ये 15-16 दिन तक चले, या लठामार यात्रा हु का हो जाए। एक परिक्रमा है बड़ी परिक्रमा, जाए बल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी हैं उनके द्वारा ये होबे है, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी से शुरू है के मथुरा से शुरू होते हैं और 40 दिन की ये यात्रा है, यानी ये बड़ी परिक्रमा भाई। और एक है परिक्रमा, परिक्रमा माने प्रदक्षिण, यानी एक स्थान विशेष की, जैसे मथुरा की परिक्रमा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, वृंदावन की करना। वृंदावन की परिक्रमा प्राय जो है एकादशी को, पूर्णमासी को और पुरुषोत्तम मास जो होवे है, मल मास जो होवे है, वह हमें विशेष रूप से परिक्रमा इनकी करी जाए। मथुरा की विशेष परिक्रमा होवे है वैशाख पूर्णिमा को वन विहार होवे है, देवसैनी एकादशी को होवे है, अषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी को परिक्रमा विशेष होवे है, अक्षय नवमी यानी कार्तिक शुक्ला नवमी को जो होवेगी, जो जक कबु छैन हो वाकी परिक्रमा मथुरा की करी जावे है। देवोत्थान एकादशी यानी जाए हम प्रबोधिनी एकादशी कहें, जो कार्तिक शुक्ला एकादशी को होवे है, और व्यास पूनो जाए हम बुढ़िया पूनो कहें, ये गोवर्धन की परिक्रमा होवे है। परिक्रमा के कई तरीके हैं, या में एक तरीका बहुत ज्यादा प्रचलित है ब्रज में, वो है दंडोती परिक्रमा। दंडोती परिक्रमा को माने साष्टांग परिक्रमा, आदमी लेट के और वो परिक्रमा लगावे है, और वो अपने एक कंकड़ लेबे है या कुछ और निशान लगावे को अपना कोई चीज रखे है, वहां से फिर दोबारा से शुरू करे, ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाए, वो दंडवत परिक्रमा हमारे गोवर्धन पर्वत की विशेष रूप से होवे है। एक होवे अंतरग्रही परिक्रमा, जैसे विश्राम घाट की वामन द्वादशी भाद्रपद शुक्ल को होवे है, मथुरा की जन्मभूमि की, मथुरा देवी की, सतगढ़ा की और द्वारकाधीश मंदिर और गताश्रम की, ये अंतरग्रही परिक्रमा कहला, यानी कि इनकी अपनी अलग परिक्रमा होवे है। दूसरी जब बात करें कि ब्रज के जो वन हैं, उपवन हैं या अभिमन हैं, प्रतिमन हैं, वहां में कौन कौन से वृक्ष खासतौर से मिले ब्रज क्षेत्र में, तो सबसे पहले तो कदम है। कदम तो ब्रज की पहचान है, अनेक हमारे ऋषि मुनि ने कवि ने कदम की बड़ी बड़ी प्रशंसा में पद रचना करी है। कदम को कृष्ण प्रियऊ कहो जाए, ललना प्रियऊ कहो जाए, सुरभि कहो जाए, गंध कहो जाए, तूल कहो जाए, नीप कहो जाए, मदरा कहो जाए,
सुभाष

मद का हो जाए और हर पूर्वी का हो जाए, ये कदम के नाम हैं जो अनेक अनेक रूप जो होमे हैं। कदम खंडी खासतौर से ब्रज में बहुत मशहूर रही और उपवन में जहाँ जहाँ कदम खंडी हैं, खासतौर से सुरहरा गांव में, जतिपुरा गांव में, जल विहार में और नंद गांव में। आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि 1 जुलाई 1977 को कदम पे डाक टिकट भारत सरकार ने जारी करो हो, पर भारत सरकार को कदम की महत्ता को जानी ही और उनने जो है 1 जुलाई 1977 को डाक टिकट निकालो हो। दूसरा पक्ष यहाँ को खास जो लोकप्रिय है, ज्यादा प्रचलित है, जो वो है करील। करील को हम वंशा कुरु कहें, निष्पत्र को कहें, तीक्ष्ण कटकु कहें, ये एक तरह से कहें कि ये करील जो है वो ब्रज भूमि को पर्याय है। करील एक झाड़ी जैसा हो वह जमें कांटे से चुभे हैं और वहां पे पत्ता ना हो, बगैर पत्ता के जो हुआ है। और तीसरा प्रमुख वृक्ष है ब्रज को, वो है बट वृक्ष। बट यानी बरगद, चाहे हम श्याम बटू कहें, चाहे अक्षय बटू कहें, चाहे बंशी बटू कहें या विशाल बटू कहें। और ये जो बट है ये खासतौर से पेपरौली, रासौली, संकेत, परासौली और भंडीर वन में ज्यादा मिला है। और चौथा है पीपल, या अस्वस्थ कहो जाए, चाहे बोधि वृक्ष बुद्ध भगवान ने वहाँ ज्ञान प्राप्त करा हो, वह बोधि वृक्ष कहें, वासुदेव कहें, पारस पीपर हु कहो जाए। ये पीपल की जो पूजा हमारे गांव गांव में होवे है, घर घर में होवे, खास तौर से महिलाएं अपनी मनोती मानते हैं और जो उनकी मनोती पूरी हो जाए तो आपके ऊपर जो सूत की धागे लपेटे हैं और लपेट के अपनी इच्छा पूर्ति करे हैं। अगलो वृक्ष है तमाल। तमाल को हम नील तालु कहें, कल्प तालु कहें, नील ध्वजू कहें, ये भी तमाल जो है यहाँ को ब्रज को प्रमुख वृक्ष है। और पांचवा है छौकर। छौकर यानी समी वृक्ष, ये तो बड़ी पूजा काम में आवे, या के बगैर तो कोई शादी ब्याह पूरा न हो, या केस हत्रिव्यू कहें। और छौकर को वृक्ष को बल्लभ संप्रदाय में बहुत बड़ा महत्व है। बल्लभ के जितने गोसाई है उनने यही के नीचे अपनी उपासना करी, पूजा करी, अपनी पदन की रचना करी। एक और वृक्ष है जो खास तौर से यहाँ ज्यादा लोकप्रिय प्रतिष्ठित है, वह के हम पलास। पलास यानी ढाक। केसु कहें, चूला कहें, किस्म की कहें, यानी कि जब होली आवे तो होली पे जो हमें यहाँ में जब लाल लाल रंग के फूल आमे हैं, वो जो महके हुए हैं, तो वो रंग बनाया जाए, मतलब देसी रंग जाए का हो जाए, कि बगैर केमिकल का रंग जो बने वो पलास को बने हैं। और जाए हम अग्निरथु कहें, अग्निरथ माने मतलब लाल लाल फूल को है तो ऐसा लगे जैसे अग्नि के गोला मतलब सामने हमारे टक रहे हो, एकांत प्रिय है। और दूसरों को ये जो है बसंत बाटे वारो वृक्ष है, जाए हम कहे हैं पलास। और यहाँ जामुन भी बहुत हैं, जाए जम्बू फल के में है, यहाँ सैमर भी बहुत हैं, जाए सामली कहे हैं, सैमल कहे हैं, धूप चही कहे हैं। और अशोक के वृक्ष बहुत मिले, अशोक माने शोक रहित, जाके नीचे आके काउ तरह को कौए शोक न रहे है, वह हम अशोक वृक्ष कहे। यही तरीके से यहाँ आम बहुत हैं, आम के बागन के बागन मिले हैं ब्रज में, बेल के भी बहुत बाग मिले हैं, बांसू यहाँ बहुत पैदा करो जाए, उपजाए जावे है, नीम और आमले यहाँ की खास जो है वृक्ष है। यहाँ दूसरी वृक्षण की जब उपयोगिता की बात करें तो यहाँ में जो है बंजर भूमि को उपजाऊ करे वाले हैं कौन कौन से वृक्ष, वह है करील और बबूल। स्वच्छ वायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम अगर वृक्ष को इस्तेमाल करें हैं तो वो है पीपल और नीम। और भूमि की कटाव को रोकने वाले वृक्ष हैं ढाक, जामुन और बेर। घनी छाया के लिए हैं बरगद, पीपल, अशोक, आम, नीम, इमली और फल। जाए खाव में जावे हैं, हम सब जाने हैं कि हम आम खामे, जामुन खामे, बेर खामे, शहतूत खामे, अमरूद खामे हैं। और औषधि के लिए तो सभी वृक्ष सब काम में आमे, खास तौर से आमला है, बेल है, अशोक है। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी को माने जाते जो है हम अपने फर्नीचर बनावे हैं, किवाड़ बने हैं, हमारे पलंग बने हैं, हमारी कुर्सी मेज बने हैं, इनके लिए लकड़ी हो गए हमारे यहाँ शीशम की, सागौन की, नीम की और आम की। और जब गैस को चलन ना हो तो, जब जो है मिट्टी के तेल को चलन ना हो, जब ईंधन के रूप में यानी आग जलाएवे के लिए, पकाएवे के लिए हम ढाक की लकड़ी, इमली, बबूल, आम, इनके वृक्ष जो हमारे या के काम में आवे। पूजा के लिए जैसे मैंने बताया कि पीपल है, बट है, समी यानी छौकर है, आमला है, केला है, तुलसी है, बद्री है, कपूर है और हरप्रिया है, ये पूजा काम में। और श्रृंगार के रूप में आप जानो ही हो, मेहंदी लाल रंग लावे है,
महिलाएं बहुत इस्तेमाल करें जाए। हरिद्रा

0: है, मजीठ है, गुंचा घुंगनी है, और अन्य वृक्षों में जैसे गुलमोहर बहुत मिले हैं। या तरीका से हम कह सकें कि ब्रज के वन उपवन की महिमा अपरंपार महिमा है, और यह जितना कम कहा जाए वो कम ही का हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
1: हो ही ब्रज वृंदावन मोहि में बसत सदा, जमुना तरंग श्याम रंग अवलीन की, चहुँ ओर सुंदर सघन वन देखियत, कुंजन में सुनियत गुंजन अलीन की। बहना, ब्रज के वन उपवन श्री कृष्ण की दिव्य लीलान के साक्षी रहे हैं, और वनन के वन वृंदावन में तो हर मास में आनंद रस बरसे है।
2: हाँ सखी, वृंदावन तो आनंद रस की खान है और श्री कृष्ण को अति प्यारो है। कहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्त वृंदावन को अपने हिये में धारण करे हैं, और श्री कृष्ण वृंदावन ते कहूँ नाए जा मैं, निधिवन में बिनकी दिव्य लीला नित्य प्रति होवे, ऐसो ही मानो जाए।
1: हाँ बहना, ब्रज में जितने वन उपवन है सभी काऊ न काऊ लीला ते जुड़े भये हैं। यह में है कि श्री राधा रानी ने बरसाना में अपने हाथन ते गहवर वन को रोपो हो और सींचो हो, और या गहवर वन को श्री राधे को हृदय स्वरूप बतायो गयो है।
2: याई वन में सखी श्री राधा जी ने कृष्ण को खेल में बुलायो और कहा कहा कियो, आओ सुने या लोकगीत में वासुदेव नागर के स्वर में।

0: बड़ा ही मनभावन प्यारो सो लोकगीत बहन आपने सुनवायो।
1: अब यही के संगई हमारो आज को ब्रजमादरी कार्यक्रम यही सम्पन्न होवे है। मोकू यानी के वंदना को
0: और मोकू यानी वंदना जोरी को जाइबे की अनुमति देओ।
1: राधे राधे। कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं और ये समय होता है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम रेडियो किड्स का। लीजिए सुनते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति रेडियो किड्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुहानी,
1: और मैं यश।
0: तो हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको खूब रोचक लगेगा और ज्ञान वर्धक लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आज हमारी स्टूडियो में हमारे कुछ ऐसे दोस्त जुड़ चुके हैं जो यूनाइटेड किंगडम से स्पेशली हमसे मिलने आए हैं। तो चलिए, स्टूडियो में उपस्थित हमारे साथी अब हमें अपना परिचय देंगे और मैं तो बहुत उत्सुक हूँ उनके बारे में जानने में, उनकी रुचियाँ जानने में और भारत में अनुभव कैसा रहा उसके बारे में जानने में। क्यों यश?
1: बिल्कुल सुहानी, मैं भी जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ।
0: बिल्कुल, तो चलिए हम शुरू करते हैं आप सभी के नाम से।
2: नमस्ते, मेरा नाम सिमरन खत्री है, मैं लंदन से हूँ और मैं महाविद्यालय में पढ़ती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम हेमान्या कमठान है, मैं यूके में मैनचेस्टर शहर से हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम तविशा है।
5: नमस्ते, मेरा नाम इरा है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ।
6: नमस्ते, मेरा नाम पार्थ वशिष्ठ है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं लीड में रहता हूँ जो उत्तर इंग्लैंड में है।
7: नमस्ते, मेरा नाम अक्षय चितावल है और मैं लिवरपूल से हूँ।
8: नमस्ते, मेरा नाम स्वास्तिक है और मैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में रहता हूँ।
0: हम क्यों ना इनसे पूछे कि आखिर हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए ये क्या तैयार करके लाए हैं। तो चलिए एक एक करके पूछते हैं, शुरू करते हैं हम सिमरन से। तो सिमरन, आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएंगे?
2: जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मेरी मनपसंद कविता मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो ना निराश करो मन को, तो आज मैं आपको उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ।
0: मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये है जन्म हुआ कि अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, समझो कि सहयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपयाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। धन्यवाद।
0: बहुत ही खूबसूरत सिमरन, लेकिन एक प्रश्न मेरा आपसे अभी भी है कि आपके जो दोस्त यूके में रहते हैं, अगर उनको भी हिंदी सीखनी हो तो आपकी उनके लिए पहली सलाह क्या होगी?
2: पहली सलाह होगी कि यूके हिंदी समिति से क्लासेस लेना शुरू कर दो। हमारी जो अध्यापिका हैं और अध्यापक भी हैं, सारे इतने अच्छी तरीके से हिंदी सिखाते हैं, इतने अच्छे भाव के साथ सिखाते हैं, इतने मन से सिखाते हैं कि किसी का भी मन कर जाए हिंदी सीखने का।
0: तो मुझे तो ये उम्मीद है कि यह संदेश यूके में बैठे उन बच्चों का जो हिंदी सीखना चाहते हैं उन तक जरूर गया होगा। तो चलिए अब सिमरन से आगे बढ़ते हैं हम हेमन्या पर। हेमन्या, तो आज आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाई हैं?
3: हाँ जी, तो इसके संबंधित मैं भी एक कविता सुनानी चाहूंगी ब्रेग्जिट के बारे में, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा था। ये पद्मेश गुप्त जी की कविता है और इसका शीर्षक है 24 जून 2016 ब्रेग्जिट, जिसकी मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी।
0: तो चलिए, देरी किस बात की?
3: जी, चिड़ियों की चहक में उत्साह कुछ कम था, सूरज की रोशनी में प्रकाश कुछ नम था, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे यूरोप के नक्शे पर कुछ जख्म था, तुम्हें उड़ना मना है अब उस पार, कतरे जा रहे थे मेरे गोरैया के पर, मेरे एक्वेरियम के बाएं कोने में सहमी थी देश विदेश की मछलियां उनका डर, आज सुबह जब मैं सोकर उठा ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अंग्रेजी माँ मुझे गोद में लेकर छोड़ रही है मेरे फ्रांसीसी पिता का घर, ये माँ जिसने कभी सिखाया ही नहीं कि पड़ोसियों के संग रहने में है कोई बुराई, बचपन से मैं खेलता आया रंग बिरंगी तितलियों से, अब देखना पड़ेगा कौन सी अपनी है और कौन पराई।
1: बहुत अच्छा, अब मैं अक्षज से उनकी कविता सुनना चाहूंगा कि वो क्या तैयार करके आए हैं।
7: मेरा कविता है कोई अर्थ नहीं, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख का मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, जब फसल सुख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वालों वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, संबंध कोई भी हो यदि दुख में ना साथ दे, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
1: बहुत अच्छे अक्षज।
0: तो अक्षज, आपने हमें एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता सुनाई है ना, लेकिन मेरा प्रश्न एक और आपसे है। जब आप जीवन में थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हो, एग्जाम के दौरान आपको डर लगता है या जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें आप सोचते हैं कि अब नहीं होगा, तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, आप किसको याद करते हैं?
7: मेरा पापा से बात करता हूँ और मुझको बहुत अच्छा सलाह देता है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ।
1: बहुत अच्छे अक्षय, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। और आप जैसे आपने अभी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ी, तो इस तरह की कविता आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ यूके में रहते हैं, आप उन्हें सुनाते हैं या आप उनसे पूछते हैं कि आपको इस तरह की कविताएं सुन के कैसा लगता है?
7: उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका सच मीनिंग क्या है, तो मैं बताता हूँ कि ये मोटिवेशनल कविता है।
1: बहुत अच्छे।

तदुम तदुम तत्तुम ता। तदुम तदुम तत्तुम ता।

0: मैं स्वास्तिक से जानना चाहूंगा, आपने किस कवि की प्रस्तुति तैयार करी है?
1: मेरा कविता का नाम है हो गए है पेड़ पर्वत सी, ये दुष्यंत कुमार ने लिखा।
2: तो चलिए देरी किस बात की।
1: हो गई है पेड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलने चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करने मेरा मकसद नहीं, मेरा कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद।
0: बेहद ही सुंदर कविता। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाठ सुनाएंगे हमें अगली अपनी प्रस्तुति, किस कवि की उन्होंने कविता तैयार करी है।
3: मैं आपको शिखा वैष्णव जी की कविता सुनाना चाहूंगा, जिसका नाम है शब्द, शब्दों के बारे में और उसके महत्व बताती है। कुछ कहते हैं शब्दों के पांव होते हैं, वह चलकर पहुंच सकते हैं कहीं भी, दिल तक, दिमाग तक, जंग के मैदान तक। कुछ ने कहा शब्दों के दांत होते हैं, काटते हैं, दे सकते हैं घाव, पहुंचा सकते हैं पीड़ा। मेरे ख्याल से तो शब्द रखते हैं सिर्फ अपना रूढ़ अर्थ, कब, कहां, कैसे, कहे, लिखे, सुने गए। ये कहने सुनने वाले की नियत पर है निर्भर। कोई भी शब्द अच्छा या बुरा नहीं होता, भली बुरी तो नियत होती है। धन्यवाद।
2: क्या बात है पार्थ, सच बताऊं तो मैंने ये कविता पहली बार सुनी है और मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आरुषि की ओर। तो हेलो आरुषि, आज आप हमारे दोस्तों के लिए क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं?
4: आज मैं भारत की प्रसिद्ध कवित्री जो आप सबको मालूम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लोकप्रिय कविता वीरों का कैसा हो पसंद की कुछ पंक्तियां सुनाने जा।
2: बहुत खूब, तो चलिए शुरू करते हैं।
4: आ रही हिमालय से पुकार है उद्धति कर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भूनब अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो पसंद। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु विशुद्ध पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो पसंद। धन्यवाद।

0: आरुषि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको लगता है कि कोई ऐसे क्रांतिकारी रहे जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करते हो, या उनके जीवन के बारे में जानकर आप मोटिवेटेड हो जाते हो?
1: कल हम नेताजी का चश्मा का वो स्टैच्यू देखा था, और हम नेताजी का चश्मा का जो कहानी था हम हिंदी क्लास में पढ़ते थे, तो फिर जब वो असली में हमने देखा था कि उसका स्टैच्यू, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा।
0: अरे वाह, अच्छा अभी आपने नेताजी के चश्मे की जो कहानी है उसका उल्लेख किया, लेकिन क्या आप हमें पूरा नाम बता सकती हैं कि आखिर उन महान व्यक्ति का नाम क्या है?
1: नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
0: बिल्कुल सही, जोरदार तालियां हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आर्या की तरफ। आर्या, आज आप हमारे लिए क्या प्रस्तुति लेके आई हैं?
2: आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: तो उस कविता का शीर्षक क्या है?
2: मेरी कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी।
0: अरे वाह, तो चलिए शुरू करते हैं।
2: चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरिदाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतलाओ मुझे तोड़ लेना वनमाले, उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। जय हिंद।
3: क्या बात है आर्या, माखनलाल जी की ये कविता बेहद ही अच्छी थी।
0: तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ वार्तालाप करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आपसे मुलाकात फिर होगी, लेकिन उससे पहले एक और जस्ट छोटा सा प्रश्न, आप हमारे भारतीय दोस्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
4: कोई भी भाषा पकड़ो, हिंदी हो, हिंदी तो आपको पता होगा, अंग्रेजी या फ्रेंच स्पेनिश जो भी पकड़ते हो आप, उससे अच्छे से सीखो, क्योंकि भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, वो दिल को जोड़ता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इस उत्तर ने बिल्कुल हमारे दिल को भी जोड़ा।

0: इतनी रचनात्मक चीजें हमें जानने को मिली, सुनने को मिला, नए नए तरीके से हिंदी को जाना।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम जैसे यश को पसंद आया, आपको भी आज का कार्यक्रम बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे रेडियो किड्स पर, मुझे यानी सुहानी को
0: और मुझे यश को
1: दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आपको बताना चाहेंगे कि 5:10 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। और 5:30 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, प्रस्तुतकर्ता हेमंत कुमार और अतुल गुप्ता होंगे। 6:30 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार, पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। चर्चा होगी विश्व सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कजेल दिवस, योजना भारतमाला परियोजना और लोकगीत। 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि जगत, चर्चा FPO द्वारा किसानों को लाभ कृषि, पत्रोत्तर कार्यक्रम लोक संगीत के साथ। योजना होगी वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना। और आप जानेंगे अगले दिन के कृषि कार्यक्रम और मौसम के बारे में। गजल और कवाली का कार्यक्रम सुनना ना भूलेगा 7:35 पर। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कवि गोष्ठी, प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर सलोनी चावला, वरिष्ठ कवियत्री श्री ऋषि कुमार मौर्य, युवा कवि डॉक्टर दीपशिखा श्रीवास्तव दीप, वरिष्ठ कवित्री श्री हिमांशु शुक्ला, युवा कवि संचालन। और फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप 8:30 पर। और अब 4 बजने को है, लीजिए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। 14 दिन का यह अभ्यास मंगलवार को संपन्न होगा। यह अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरु मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक कि उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलेवाफ ने ये टिप्पणी की।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष।
0: जापान एशियाई खेलों में भारत की इलावेलिन वालारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले भारत की इलावेलिन वालारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि जापान को कांस्य पदक मिला। भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिला टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुला है। देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। डॉ. मांडविया ने भारतीय दल के भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में भी पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। President Draupadi Murmu will address the valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal, NGT. We have a report.
1: The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance practices, and institutional experiences across jurisdictions. The conference witnessed the participation of environmental experts, judges of the Supreme Court of India and High Courts, district court judges, secretaries of various ministries, senior government officials, and other stakeholders. It also brought together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. It facilitated dialogue on critical environmental and climate challenges, including gaps in policy formulation, implementation and enforcement, and explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi had addressed the gathering on the first day of the conference yesterday. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha Mukti Yuva Abhiyan or the Drug Free India campaign. The Ministry of Youth Affairs and Sport said the campaign is witnessing active mobilization of young people, with the program being held at 1,067 locations across the country under the 100 weeks Nasha Mukti Yuva Abhiyan, aimed at building a drug-free youth community for a developed India. In Punjab, the third phase of BJP's Nasha Mukti Yatras were launched today from the Sadiki border in Fazilka by Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal. Speaking to the media, Mr. Meghwal said the anti-drug marches and awareness yatras should not be viewed from a political perspective, as some people have described it.
4: A drug-free Punjab, where people stay away from drugs and work towards making Punjab a developed state. But how will we achieve this? It is by staying healthy and away from drugs. We can contribute to the progress of Punjab. This yatra is aimed at achieving that objective. Some people are viewing it through a political lens. This yatra should not be viewed from a political perspective.
3: As part of the campaign, a cycling rally was organized in Hyderabad, Telangana today, with the aim of encouraging young people to stay away from drug abuse. Union Minister of State for Defence Sanjay Seth witnessed the air show of the Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force at Meerut in Uttar Pradesh today. The team took over the skies yesterday for the first time

0: on climate change and its annual conferences of the parties. In that sense, environmental protection has become an arena in which national action and international responsibility are inseparable. The discussions at this conference have reinforced precisely this point. Rivers, forests, oceans, air, and ecosystems do not recognize political boundaries. Climate change, biodiversity loss, pollution, land degradation, and water scarcity are interconnected challenges, and their effective management depends upon cooperation between jurisdictions, sharing of knowledge and resources, and equitable responsibility sharing among nations inter se. Perhaps then the five elements of nature, which I referred to earlier, may also become Pancha Sankalp, or five commitments that environment leadership demands of us. The steadiness of earth, the adaptability of water, the urgency of fire, the openness of air, and the breadth of space. The environmental challenges of our time require all five. This conference, I hope, has provided a valuable opportunity for engagement across jurisdictions and traditions and an exchange of valuable experiences. I wish all of you continued wisdom and strength in the important work that lies ahead of us. Thank you for your kind attention. Namaskar.
1: ये थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, आपका संबोधन हुआ। माननीय न्यायमूर्ति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए पंच सिद्धांतों की बात की, साथ ही उन्होंने पंच संकल्प का भी जिक्र किया कि किस तरह से दुनिया में पंच संकल्प के जरिए पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और जिस तरह से ये सम्मेलन हुआ, यहाँ पर दो दिन के सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और अब इस समय यहाँ पर स्मारिका का विमोचन होने जा रहा है, और हमारे सभी जो गणमान्य अतिथिगण हैं वो खड़े हो गए हैं और स्मारिका को भेंट कर रहे हैं। इस समय
2: श्री मनोहर लाल, द ऑनरेबल ह्यूमन मिनिस्टर, releasing the souvenir of the National Green Tribunal and presenting the first copy to the Honorable President Srimati Draupadi Murmu. A commitment by India for the future of the world, of bringing every aspect together, of bringing diplomats, researchers, scientists, scholars together for the fact that the future of humanity shall be shared. Now, the time has come for the speech by Honorable Minister Sri Manohar Lal ji, the Honorable Minister of Housing and Urban Affairs and Minister of Power. Sri Manohar Lal ji will now address this August gathering.
3: तो माननीय मंत्री जी के विचारों को आमंत्रित करते हैं, और मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ पावर।
4: महामहिम राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जस्टिस श्रीमती बीवी नागरत्ना जी, माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माननीय अध्यक्ष श्री तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, देश विदेश से पधारे हुए डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स एंड डिग्निटरीज, देवी और सज्जनों, नमस्कार। मुझे लगता है कि आज बहुत सही समय पर मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आने का अवसर मिला है। आज ही मैं अमेरिका से लौटा हूं, जहां ह्यूस्टन में G20 एनर्जी अबंडेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर मिला। वहां भी हमारी चर्चा के केंद्र में यही प्रश्न

था कि दुनिया की बढ़ती ऊर्जा और विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए हम एक ऐसा फ्यूचर कैसे बनाएं जो सिक्योर, अफोर्डेबल, रिलायबल और सस्टेनेबल हो। और मैं धन्यवाद देता हूं एनजीटी के सभी साथियों को जिन्होंने इस दो दिवसीय चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन आज केवल चिंता का विषय नहीं है बल्कि चिंतन का विषय है। और जब हम किसी चीज की चिंता से निकलकर उस पर चिंता करने लगते हैं तो समस्या का समाधान जरूर निकलता है। साथियों, ये वह क्षण है जब जलवायु परिवर्तन केवल एक वैज्ञानिक परिकल्पना से निकलकर सार्वजनिक और राजनीतिक चेतना का विषय बन गया है। और आज इस कॉन्फ्रेंस के समापन पर जहां द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स थीम पर पिछले दो दिनों से विचार विमर्श हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसमें भी यही भावना प्रमुखता से सामने आई होगी। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ ही भारत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद डेडिकेटेड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश और पहला डेवलपिंग कंट्री बन गया है। ये हमारी उस पुरानी सोच का आधुनिक इंस्टीट्यूशनल रूप है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को महत्व दिया गया है। साथियों, भारत आज तेज गति से विकास और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमारी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, एनर्जी की जरूरतें बढ़ रही हैं और साथ ही हमारे शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने चुनौती केवल बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का नहीं है बल्कि उन्हें इस तरह पूरा करने की है कि विकास की गति भी बनी रहे और पर्यावरण के साथ संतुलन भी। पावर तथा हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्रीज की जिम्मेवारी संभालते हुए मैं इस चुनौती को बहुत करीब से देखता हूं। जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर नहीं, हमारी बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा है। मई में लगातार चार दिन तक बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए और इस वर्ष 21 मई को यह सर्वकालिक उच्चतम स्तर अर्थात 270.82 गीगावाट तक पहुंच गई थी। बढ़ते हुए भारत को अधिक बिजली चाहिए, अधिक आवास चाहिए, बेहतर मोबिलिटी, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। साथियों, एनर्जी सेक्टर में हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2026 तक हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 304 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। इसमें सोलर एनर्जी अकेले लगभग 168 गीगावाट है। आज हमारी इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी का लगभग 55% नॉन फॉसिल सोर्सेज से है और इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ही भारत ने रिकॉर्ड 44.6 गीगावाट सोलर और लगभग 6 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पावर सेक्टर में 50% नॉन फॉसिल सोर्सेज की हिस्सेदारी का जो लक्ष्य 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया था उसे जून 2025 में 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और हमारी संस्कृति भी। अब इसी सोच को हम अपने शहरों के विस्तार और विकास में भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। आज हम जो शहर बना रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। हम आगे शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अभी अर्बन चैलेंज फंड लेकर आए हैं। अमृत 2.0 के माध्यम से हम शहरों में वाटर सिक्योरिटी और सीवेज सिस्टम्स को मजबूत कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी हमारे अर्बन डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज देश के 29 शहरों में मेट्रो और RLTS ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लगभग 1170 किलोमीटर नेटवर्क ऑपरेशनल हो चुका है और करीब 1013 किलोमीटर निर्माणाधीन है। आज हम मेट्रो के जहां तक विषय है, दुनिया के तीसरे बड़े देश में आ चुके हैं। हमारे से पहले केवल चाइना और USA है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
आने वाले 2 वर्ष में हमारा स्थान दूसरा हो जाएगा, हम यूएसए से भी आगे निकलेंगे।

0: इसी के साथ देश में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 25.5 लाख ईवीज रजिस्टर्ड हुए और कुल व्हीकल सेल्स में ईवीज की हिस्सेदारी 8% से अधिक रही है और ये सब हमारे साझा प्रयास और चिंतन का ही परिणाम है। साथियों, आज जब हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो ये केवल एक वैज्ञानिक विषय नहीं रह गया, ये मानव सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जब तक जलवायु परिवर्तन को केवल वैज्ञानिक दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जिस दिन हम इसे अपने इतिहास, संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली के नजरिए से देखेंगे हमें इसके समाधान मिलने लगेंगे। साथियों, समस्या जलवायु परिवर्तन की नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार है। जिस रफ्तार से आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस गति से कोई भी जीव उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है। सवाल बस इतना है कि हम इस परिवर्तन की दिशा में अपनी भागीदारी सकारात्मक रखते हैं या नहीं, या नकारात्मक रखते हैं, ये सोच का विषय है। हमारी सकारात्मक भागीदारी केवल पर्यावरण को नहीं बचाएगी बल्कि हमारे भविष्य को भी बचाएगी। आइए इसी भावना के साथ हम विकसित भारत और सस्टेनेबल भारत की ओर आगे बढ़ें। मैं पुनः आप सभी को इस सार्थक और सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे आप सभी के बीच आने और इस चर्चा का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: ये थे माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी। आपने विकास और पर्यावरण के बीच किस तरह से संतुलन किया जा सकता है इस पर प्रकाश डाला।
2: मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड भारत, अ सस्टेनेबल भारत इज इंडिया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इमेंस, covering all the areas with our bias to keep the environment protection to be of utmost importance. Now, it's the time for the chief guest of this international conference, Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India, to address the August gathering.
3: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शहरी और आवासन कार्य तथा विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी, यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के सभी जजेस, देश विदेश से आए सभी डिग्निटरीज, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सभी स्वजनों, सभी को नमस्कार। इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सम्मेलन में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न चुनौतियों पर केंद्रित इस आयोजन में अनेक देशों के विशेषज्ञों, न्यायाधीशों, विधि विद्याओं और पर्यावरण के मुद्दे पर सक्रिय प्रमुख स्टेक होल्डर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और उनकी समर्पित टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पर्यावरण से जुड़े लीगल मैटर्स ने एनजीटी में की विशेष भूमिका है। मुझे बताया गया है कि ट्रिब्यूनल ने बहुत बड़ी संख्या में विवादों का त्वरित निपटारा किए हैं। देश में नदियां, एयर क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े मामलों में ट्रिब्यूनल ने एक प्रभावी कॉम्प्लायंस आर्किटेक्चर विकसित किया है, ये सराहनीय है। ये आयोजन एनजीटी के पर्यावरण से जुड़े विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श करने की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत

गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है। ये सर्वविदित है कि क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट पहले से अधिक तीव्रता और बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी से सामने आ रहा है। फूड सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी क्लाइमेट चेंज गंभीर प्रभाव सामने आ रहा है। ऐसी जटिल और अनिश्चितता चुनौतियों का सुनिश्चित प्रकार से सामना करने के लिए नीतियों और कार्रवाई का एक संगठित ढांचा आवश्यक है। ऐसा व्यवस्था जिसमें केवल सरकारी और कानूनी विशेषज्ञों ही नहीं बल्कि वे समुदाय भी सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए जिनको क्लाइमेट चेंज सर्वाधिक प्रभावित करता है। ग्रामीणों और वनवासी समाज, छोटे किसान, महिलाएं तथा अन्य वल्नरेबल कम्युनिटीज की आवश्यकताओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं को पड़ता है। देवी और सुजन, दुनिया की अधिकतर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के पास सदियों से संजोया हुआ पारंपरिक ज्ञान हुआ करता है। प्रकृति के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ साथ रेजिलियंस और क्लाइमेट एडप्टेशन उनकी जीवन शैली का हिस्सा होता है। मेरा बचपन सुदूर ग्रामीण अंचल ने बीता है। प्रकृति से जुड़कर जीने की जनजातीय समाज की सरलता और रेजिलियंस को मैंने स्वयं अनुभव किया है। अपने बचपन का एक उदाहरण मैं कभी कभी देती हूँ, आज भी तक उसको दोहराना चाहती हूँ। मेरे पिता घर में खाना बनाने के लिए पास के जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाते थे। लकड़ी को जलाने के लायक बनाने के लिए और एक बार उसको घर में उसको कटना पड़ता है। जो उन्हें कटना शुरू करते हैं उसके पहले उसको नमन करते हैं। मैं बहुत बार देखा, मैं छोटी थी तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये तो सूखा है, ये सूखा लकड़ी को क्यों नमन करते हैं। मैं एक दिन पूछा कि पिताजी ये तो सूख गया है, हम इसको जलाने वाले हैं, तुम नमस्कार क्यों करते हो। समझ में आ रहा है कि एक जिंदा पेड़ को कटने से वहाँ से खीर निकलता है और उस और जिंदा होता है, ये मुझे समझ में था। लेकिन ये सूखे उन्होंने नहीं, आज वो सूख गया फिर भी मेरे हम लोगों के काम में आ रहा है, हम लोगों का सेवा में काम में आ रहा है। जो एक जिंदा था, जो एक जिंदा था वो हवा दे रहा था, हम ऑक्सीजन दे रहा था, अम्लजान हम कहते हैं, अम्लजान दे रहा था। इसके जोड़े, इसके पत्ता, इसके छल्ली को हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके फूल फल हम खाते थे, इसके पेड़ को हम घर बनाते थे। तो आज वो बूढ़ा हो गया फिर भी हम लोगों का सेवा करता है। इसलिए इससे ही आपको पता चलता है जनजाति के लोग कितने संवेदनशील अपने प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधा के प्रति। पेड़ पौधा, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर को मेरे गांव लेकर गई थी, उनको ऐसे नहीं कि मैं गांव बहुत सुंदर चलिए देखिए, ऐसे नहीं। जनजाति के लोग कैसे पेड़ पौधा को पूजा करते थे, आज भी हम कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई फोटो हम बनाते नहीं, हम पेड़ पौधा को ही पूजा करते हैं। एक जाहिरा कहा जाता है, वहाँ बहुत सारे पेड़ रहता है, हम साल में जैसे सालों में 12 मास में 50 पर्व होता है, ट्राइबलों का भी होता है।

कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, सामूहिक रूप में गांव के बीच में एक रहता है ऐसे जगह जहां पेड़ सूखा पेड़ को नमस्कार करते हैं, और गांव का अंत में जाहिरा रहा है। सब सभी गांव में जितने भी संथाल गांव हैं वैसे बहुत सारे ट्राइबल, जितने शेड्यूल लिस्ट में संविधान के शेड्यूल लिस्ट में जितना ट्राइबल सूची में है, जितने ट्राइबल लोग हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ ट्राइबल जिसको हम आदिवासी कहते हैं, आज उसको वनवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, हम आदिवासी, पहले से हमको सिखाया गया हम आदिवासी हैं, आदिम आदिवासी। तो आज भी जंगलों को पूजा करते हैं, आज भी पेड़ पौधा पूजा करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जी गए थे वहाँ नमन किए, उनका कोई बहुत सारा प्रसाद, बहुत सारे जगजमक की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अरुआ चावल और नमन, आज भी वो मानते हैं। तो और ये एक कहानी नहीं है, हम जो फाइव एलिमेंट्स कहते हैं उसको पूजा करते हैं, केवल पेड़ को नहीं पूजा करते हैं, धरती को भी पूजा करते हैं, पहाड़ को पूजा करते हैं। आज भी हम लोगों का बड़ा वाला जो ठाकुर जी है वो मारंग गुरु मीन्स सबसे बड़ा पहाड़ के अधिकारी, उसका नाम कोई नहीं है लेकिन हम बड़ा वाला पहाड़ आज भी पूजा करते हैं और धरती को पूजा करते हैं। इसीलिए मैं घर पे सबसे बड़ी थी, घर के पास में जो जमीन है, जमीन पिताजी के साथ में जाती थी। पिताजी जब हाल चलाते थे या फावड़ा मारते थे उसके पहले धरती को नमन करते थे। मैंने बोले तुम क्यों करते हो, मैं बार बार मैंने देखा, उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, हम जो इसके ऊपर हाल चलाते हैं, फावड़ा मारते हैं, हम लोगों के आवश्यकता के हिसाब से हम करते हैं, लेकिन धरती के ऊपर भी अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे कीट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रहते हैं, बास करते हैं। हम लोगों को हाल चलाने से, फावड़ा मारने से उन लोगों का जान चला जाता है। तो इसीलिए मैं धरती माता को नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं आवश्यकता हिसाब से इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। विनम्रता की ये भावना हमारी संस्कृति में रची बसी है। ये मनुष्य और प्रकृति के मूलभूत संबंधों को समझदारी से स्वीकार करती है। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं, ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं। मुझे बताया गया है ऋषि मुनि जो केवल पेड़ पौधा धरती आकाश जीव जंतु से भी बातें करते हैं, करते थे। इसीलिए उस टाइम एक ऋषि कहते हैं जो ये तो वेद की वाक्य है, यत्ते भूमे बिखनामि क्षिप्रं तदोपि रोहतु। इतमें ऋषि जी कहते हैं, ये पृथ्वी को कहते हैं, मैं तुमसे जो कुछ लेता हूँ उसे शीघ्रता से लौटाने के लिए प्रयत्न करूँगा। इसीलिए हम अभी जिस युग में जीते हैं, मैं जो छोटी थी जंगल गांव से सटा हुआ था, लेकिन आप वो नहीं है। उन दिन भी उसी दिन में भी लोग रहते थे, गांव में रहते थे, लकड़ी आके जलाते थे, लेकिन आज हम पत्ता का बिजनेस, लकड़ी का बिजनेस शुरू किए हैं, जो हमको जिंदगी जीते हैं। मुझे लगता है इसको कम कर देना चाहिए। पत्ता को हम साल भर बार बार तोड़ेंगे तो पेड़ कैसे बढ़ेगा, इसीलिए उसको जीने देंगे तो हम लोगों को भी जीने देंगे। क्योंकि आप साल भर पत्ता तोड़ेंगे तो वो कैसे जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस, हम

0: वो लोग साइंस के बारे में पता नहीं, लेकिन इतना पता है ये लोग जिएंगे तो हम जिएंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइंस कहते हैं कि पत्ता से और पेड़ के लिए खाना बनाते हैं। तो फिर वो पेड़ को ही बार बार तोड़ा जाए तो पेड़ कैसे बचेगा? आज युग बदल गया है, हम लोगों के पास गैस है, हम लोग गरीब लोगों को भी आज पक्का घर दिया जाता है, तो जंगल क्यों कम होता है? इसीलिए कहते हैं सौ परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, पहले आप परिवर्तन हो जाए तो धरती आपे आप परिवर्तन हो जाए। ये सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स स्थानीय समुदाय की प्रथाओं और उनके जीवन के अनुभवों की क्लाइमेट अडेप्टेशन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। हमें ट्रेडिशनल नॉलेज पर आधारित पीपल सेंट्रिक और कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस को सुदृढ़ करने के प्रयास करने चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने में सस्टेनेबल अफोर्डेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट लैंड तो है लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं, उसमें फॉरेस्ट की अफोर्डेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अफोर्डेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को अडेप्टेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है। एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अफोर्डेबल तथा विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता से भी जुड़ा है। रोप टू सोलर पैनल्स उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार की ऐसे ही एक पहल है जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से भारत के एनर्जी लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। विकासशील देशों को ऐसा मार्ग तय करना चाहिए जो विकास की गति को सुनिश्चित रखते हुए रेजिलेंस बढ़ाए। जिम्मेदार क्लाइमेट एक्शन की प्रतिबद्धताएं देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं और आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। ये टेक्निकी रूप से फिजिबल भी होने चाहिए। मुझे बताया गया है सम्मेलन में ऐसे अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण विषय है आधुनिक विज्ञान और समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को साथ जोड़ना। रिमोट सेंसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिडिक्टिव मॉडल्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज और स्थानीय समुदाय के जीवन अनुभव से जोड़ा जाना चाहिए। ये समन्वय क्लाइमेट विस्टम के ऐसे युग का सूत्रपात कर सकता है जो अधिक प्रभावी क्लाइमेट रेस्पॉन्स का मार्ग प्रशस्त करेगा। देवियों और स्वजन, भारत की युवा आबादी देश की अत्यंत मूल्यवान संपदा है। युवाओं और जनसाधारण को जोड़कर पर्यावरण चेतना बढ़ाने की दिशा में भारत ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत सरकार की मिशन लाइफ पहल ने ये दिखाया है कि जन भागीदारी और कम्युनिटी ओनरशिप के माध्यम से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए बहुत सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। सरकार के कई अन्य पहलों को भी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के प्रभावी कार्यक्रम के रूप में वैश्विक सराहना मिली है। मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, न्यायपालिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, एक्टिविस्ट और अन्य हितधारकों के इस सभा में अनेक इनोवेटिव दृष्टिकोण सामने आए होंगे और इस मंथन के फलस्वरूप अनेक व्यवहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन का समावेशी नीतियों और प्रभावी कार्यों के आधार पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सोसाइटीज के निर्माण की दिशा सुनिश्चित करने में योगदान रहेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। उपयोगी अनुभवों के आदान प्रदान का मंच प्रदान करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विशेष प्रशंसा के पात्र है। मैं आप सभी के प्रयास के माध्यम से सस्टेनेबल और सुनिश्चित भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: Request you all to please rise.
2: And now it's time for the national song and the national anthem. That'll be played by the Rashtrapati Bhavan Military Band.

0: जय हिंद।
1: इसी के साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो रहा है और माननीय राष्ट्रपति महोदया मंच से प्रस्थान

0: सभी गणमान्य व्यक्तियों का।
1: As the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu highlighted that the soils, rivers, mountains, forests, the five elements are highly revered in our culture. Our country knows how important, how vital these are for our survival. Every Indian should be proud, every citizen should be proud that ancient Indian traditional knowledge systems combine science and values to give the highest regard to nature. As quoted by Sir David Attenborough and included in his speech by Honorable Justice Prakash Srivastavji, the chairperson of NGT, what we do now shall have a profound impact on the next 1,000 years. As stated by Justice Honorable Srimati B.V. Nagaratnaji, Honorable Judge of Supreme Court of India, that we have to learn from the Panchabhutam, from the five elements. From earth we learn patience and steadiness, from air broad-mindedness and adaptability, from fire warmth and energy, from sky equality, and from water purity and continuity. Let's hope that all the objectives of the conferences, like the knowledge exchange, like innovation and technology, like policy development, collaborative action and public engagement, all are working together, all work in a better way, for a better future, for a combined future for all of humanity.
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न सिर्फ वर्तमान में विश्व के सामने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा की गई, बल्कि भविष्य में इस गंभीर विषय को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया, ताकि इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाया जा सके और हमारी इस पृथ्वी और पर्यावरण को हरा भरा और संतुलित बनाए रखा जा सके, जहां तकनीकी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसी के साथ मैं यहां मौजूद आकाशवाणी की पूरी टीम, तकनीकी सहायता के लिए श्री कमल सिंह, सुमित कटियार, नकुल, मोनिका और अभिषेक के साथ ओबी कार्यक्रम प्रभारी श्री जय सिंह और संपूर्ण मार्गदर्शन और समन्वय के लिए श्री प्रमोद कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं। आइए इसी संकल्प के साथ कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और इस धरती को हरा भरा बनाए रखेंगे, मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: गणेश भाई, देखिए, लोक संगीत का हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही महत्व रहा है और हमारे देश के जो लोग हैं उनको हमेशा एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका रहा है। भारत की संस्कृति विविधता के लोक संगीत के विभिन्न रूपों में अपना भरपूर योगदान दिया है। यहाँ लगभग प्रत्येक क्षेत्र का अपना लोक संगीत है और लोक संगीत जहाँ हमारा मनोरंजन कराता है वहीं कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देता है।
1: बिल्कुल सही कहा सुनील भाई आपने। कहते हैं कि लोकगीत और लोक संगीत हमारे देश की आत्मा में रचा और बसा हुआ है। आज भी हमारे ग्रामीण इलाकों में इस तरह के लोकगीत और लोक संगीत सुनना लोग पसंद करते हैं, और अब तो शहर के लोग भी सुनना पसंद करते हैं।

0: ये तो लोकगीत सुना बबीता चौधरी से। और देखिए, लोकगीत लोक से निकले और लोक चरित्र पेश करने वाले गीत होते हैं, जो मनुष्य की उसकी संस्कृति को न केवल जानकारी देते हैं, बल्कि उन्हें समाज से जोड़े भी रखते हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, आपने सही कहा। और लोकगीत और लोक संगीत हमारे जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो अब आइए अपने श्रोताओं को रेणु बर्मन की आवाज़ में सुनाते हैं ये लोकगीत।

0: तो सुनील भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने ये सुना और अब
1: और भाई देखिए, हम बातचीत कर रहे थे लोकगीतों की, तो लोकगीतों में देखिए विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे करताल, मंजीरा, ढोल। और देखिए अवनेश भाई, ने भी ताजगी होती है, ये आम लोगों द्वारा लिखे जाते हैं और हर समूह, हर गांव के अपने लोकगीत होते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि आल्हा उदल वगैरह के भी लोकगीत सुनने में मिलते हैं होली के टाइम में, ज़्यादातर फाग भी सुना जाता है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं गोपाल सिंह बर्मन के द्वारा गाया गया ये लोकगीत।

रोज किसी से कहना बड़ा मुश्किल ताने सहना, पड़ रोज किसी से कहना बड़ा मुश्किल ताने सहना, पड़ रोज किसी से कहना बड़ा मुश्किल ताने।

0: रणेश भाई, ये तो लोकगीत सुना गोपाल सिंह बर्मन से, और गोपाल सिंह बर्मन के गाइस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।
1: तो सब लोक संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: अभी आप लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: जी नमस्कार, आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में मैं हूं हेमंत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल गुप्ता। हम दोनों लेकर चलेंगे आपको खेलों के उस खूबसूरत सफर पर जहां हर एक मोमेंट होता है बेहद खास। और आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2026 की, साथ ही बात होगी
1: हेमंत ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन जो कि इटली में चल रहा है, उसके अलावा 46th फीडे चेस ओलंपियाड इस पर भी रिपोर्ट देंगे और करंट स्टैंडिंग क्या है उस पर भी अपने श्रोताओं को बताएंगे। आज रविवार है तो संडे ऑन साइकिल का आज का जो अंक है उस पर भी जानकारी दी जाएगी और साथ में होगा सुब्रतो कप और बचे हुए समय में कुछ अन्य खेल खबरें।
0: तो करते हैं अब कार्यक्रम की शुरुआत एशियन गेम्स 2026 से।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर तिरंगे की शान के लिए उतरते हैं तो करोड़ों भारतीयों का दिल एक साथ धड़कता है। एशियन गेम्स में भारत का ये सफर सिर्फ पदकों की दौड़ नहीं बल्कि हमारे एथलीटों के पसीने, जज्बे और कभी न हार मानने वाली जिद की कहानी है। खेल के मैदान से सीधे आ रही इस लाइव अपडेट और विशेष रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर उस जीत का जश्न और पल पल का रोमांच जो हर एक देशवासी के दिल को गर्व से भर देगा। आइए पूरे दिल से अपनी टीम का हौसला बढ़ाएं और भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा के हर पल से सीधे जुड़े रहें। जापान के आईची नगोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में आज भारत के लिए दिन की शुरुआत पदकों की सौगात के साथ हुई। निशानेबाजी में भारत ने 2 रजत पदक अपने नाम किए जबकि मिश्रित मार्शल आर्ट में सुचिका तारियाल ने देश के लिए एक और पदक सुनिश्चित कर दिया है। महिला और पुरुष हॉकी टीमों ने शानदार जीत दर्ज की। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई और टेबल टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विजयी शुरुआत की। वहीं तैराकी में ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में जगह बनाई और दूसरी ओर टेक बॉल में भारत पदक में मामूली अंतर से चूक गया। सबसे पहले बात निशानेबाजी की। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने दिन की शुरुआत रजत पदक से की। इला विनिल बलारीवन, सोनम मस्कर और विदारसा विनोद की भारतीय टीम ने कुल 1898 अंक हासिल किए और दूसरा स्थान हासिल किया। चीन ने 1904.2 अंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि मेजबान जापान को कांस्य पदक मिला। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन के साथ ही भारत का एशियाई खेलों में पहला पदक सुनिश्चित हुआ। इसके बाद व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल में भी इला विनिल बलारीवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में इला विनिल ने 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने 293 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि दक्षिण कोरिया की बान हो जिन को कांस्य पदक मिला। भारत की सोनम मस्कर 6वें स्थान पर रही। इस तरह इला विनिल बलारीवन ने एक ही दिन में भारत के लिए 2 रजत पदक जीतने में योगदान दिया, पहला टीम स्पर्धा में और दूसरा व्यक्तिगत स्पर्धा में।
1: बात करें मार्शल आर्ट की, मिश्रित मार्शल आर्ट में भी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। महिलाओं की पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तारियाल ने मंगोलिया की अलंता चिमेग बैगलामा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही सूचिका ने भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिया है। एशियाई खेलों में मिश्रित मार्शल आर्ट पहली बार पदक स्पर्धा के रूप में शामिल है और इस खेल में भारत का यह पहला सुनिश्चित एशियाई खेल पदक है। सूचिका तारियाल अब सोमवार को सेमीफाइनल में उतरेंगी और उनकी नजर पदक के रंग बदलने को होगी। हॉकी से भी खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है जहां पे महिला हॉकी में भारत ने शानदार 19-0 की जीत के साथ एशियाई खेलों में शुरुआत की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने अभियान की शुरुआत बेहद प्रभावशाली अंदाज में की। महिला भारत ने पूल बी के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से पराजित किया। भारत की ओर से दीपिका सहरावत ने अकेले 8 गोल किए। यह एशियाई खेलों के महिला हॉकी इतिहास में एक मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड है। भारत की ओर से इशिका

0: ने 3 गोल किए जबकि नेहा और लालंथल लुआंगी ने 2-2 गोल किए। लाल रेम सियामी, बलजीत, साक्षी राणा और नवनीत कौर ने भी 1-1 गोल किया। 19-0 की यह जीत एशियाई खेलों में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले भारत ने 1982 में हांगकांग के विरुद्ध 22-0 और 2018 में कजाकिस्तान के विरुद्ध 21-0 से जीत दर्ज की थी। भारतीय महिला टीम की इस जीत में आक्रमण के साथ साथ रक्षा पंक्ति का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा और उज्बेकिस्तान को पूरे मुकाबले में 1 भी गोल करने का अवसर नहीं मिला।
1: महिला हॉकी के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। पूल ए के मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। भारत की जीत के नायक रहे दिलप्रीत सिंह जिन्होंने 4 गोल किए। शिलानंद लाकड़ा और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए। इसके अलावा अभिषेक, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जुगराज सिंह ने भी भारत की जीत में गोल किए। एशियाई खेलों में पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम ने इस जीत के साथ अपने खिताब की रक्षा के अभियान की मजबूत शुरुआत की है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट से भी भारत के लिए एक शानदार खबर आई। महिला T20 क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर लिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत की पारी की सबसे बड़ी विशेषता रही शेफाली वर्मा का शानदार शतक। शेफाली ने केवल 49 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। उनकी पारी में 9 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। शेफाली ने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े। मंधाना ने 19 गेंदों में 37 रन बनाए। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंदों में 40 रनों की उपयोगी पारी खेली और शेफाली के साथ 94 रनों की साझेदारी की। 195 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 15 ओवर 4 गेंद में 81 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की ओर से नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। भारत ने 114 रन से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना अब श्रीलंका से होगा।
0: बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की, जहां भारतीय महिला टीम ने ग्रुप एफ के अपने शुरुआती मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहले मुकाबले में श्रीजा अकुला ने नी महारानी को 3-1 से पराजित किया। इसके बाद दिया चिताले ने अल्माइरा एन को 3-0 से हराकर भारत की बढ़त मजबूत की। तीसरे मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने सितारा रश्मि को 3-0 से हराकर भारत को 3-0 की जीत दिलाई। दिन के दूसरे मुकाबले में सिंगापुर को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज किया टीम ने। निर्णायक मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने शानदार धैर्य का परिचय देते हुए लॉय मिंग को 5 गेम के कड़े मुकाबले में 5-11, 11-8, 12-10, 4-11 और 11-9 से हराया और भारत को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। यशस्वी ने इस मुकाबले में अपने दोनों मैच जीते। वहीं श्रीजा अकुला ने अपना दूसरा मुकाबला जीतकर भारत की उम्मीदें कायम रखी। भारतीय पुरुष टीम ने भी इंडोनेशिया के खिलाफ अपने ग्रुप मुकाबले में 3-0 से जीत दर्ज की। जी साथियान, मानव ठक्कर और मनु शाह ने भारत को मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाई। जी साथियान ने निगारा मोहम्मद को 11-8, 11-7 और 11-9 से हराया जबकि मानव ठक्कर ने जुनेंद्र मोहम्मद को 11-7, 8-11, 11-6, 6-11 और 11-9 से एक कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। वहीं मनु शाह ने तीसरे मुकाबले में अफान प्रतामा को 11-9, 11-9 और 12-10 से हराकर भारत की जीत पक्की की। बात करें तैराकी की, 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में भारत के ऋषभ दास फाइनल में हार गए हैं। उन्हें 6ठा स्थान हासिल किया और जो मेडल की जो उम्मीद थी वो यहीं पर रह गई है। इससे पहले पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक हीट में ऋषभ दास ने 54.85 सेकंड का समय निकाला और कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। उनके साथी तैराक उत्कर्ष पाटिल 56.19 सेकंड के समय के साथ 12वें स्थान पर रहे और फाइनल में जगह नहीं बना सके। वहीं पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में भारत के बेनेडिक्टन बेनिस्टेन 50.25 सेकंड के समय के साथ 12वें स्थान पर और आकाशमणि 50.85 सेकंड के साथ 23वें स्थान पर रहे। दोनों फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: अब बात करते हैं टिक बॉल की, जहां भारत को पदकों की उम्मीद थी। टिक बॉल में भारत पदक के बेहद करीब पहुंचकर चूक गया। महिला एकल के कांस्य पदक के मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोटो ने 2-0 से हराया। दोनों गेम बेहद करीबी रहे और दोनों का फैसला 12-11 से हुआ। इसके बाद मिश्रित युगल में क्विंसी डिसूजा मोहम्मद अनस बेग की भारतीय जोड़ी का सामना वियतनाम के हो योंग मिनत तान ग्यूएन और त्रिना जियांगी से हुआ। भारतीय जोड़ी को 9-12, 6-12 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह टेक बॉल में भारत दोनों कांस्य पदक मुकाबलों में चौथे स्थान पर रहा। हालांकि एशियाई खेलों में पहली बार शामिल हुए इस खेल में क्विंसी डिसूजा का सेमीफाइनल में पहुंचना भारतीय टेक बॉल के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहा। अब बात करते बैडमिंटन की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने शानदार आगाज करते हुए कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कैमिना सुमागुलोवा को 21-7, 21-9 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। सिंधु ने यह मुकाबला केवल 24 मिनट में जीता।

0: इसके बाद उन्नति हुडा ने एलिसा कुलेशोवा को 21-7, 21-10 से हराया। वहीं तन्वी शर्मा ने डायना नामेनोवा को 21-5, 21-10 से मात देकर भारत को 3-0 की जीत दिलाई। भारतीय टीम ने तीनों एकल मुकाबले जीतकर बिना कोई गेम गंवाए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब उसका सामना मेजबान जापान से होगा। जापान की टीम में विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी और 3 बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची तथा 7वें नंबर की टोमाका मायाजाकी शामिल है। जापान को हराने पर भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में पदक पक्का कर लेगी। इस स्पर्धा में भारत ने अब तक 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में 1 कांस्य पदक जीता है। उधर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।
1: और हेमंत, बात कर लेते हैं वुशू की, तो जहां पे पुरुष चांगक्वान फाइनल में भारत के सूरज सिंह मायंगलाम्बम पदक हासिल नहीं कर सके। सूरज ने 21 खिलाड़ियों के फाइनल में 11वां स्थान हासिल किया। दिन की शुरुआत में उनसे पदक की उम्मीद थी, लेकिन फाइनल में वे पोडियम तक नहीं पहुंच सके। कुल मिलाकर दिन के परिणामों की बात करें तो निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक मिला। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में एलावेनिल वलावरिन का रजत पदक भी पक्का हुआ। और मिश्रित मार्शल आर्ट में सुचिका तारियाल ने कम से कम 1 कांस्य पदक सुनिश्चित कर दिया है। और खेलों के इस महाकुंभ से आकाशवाणी की टीम लगातार आपको जो ताजा जानकारी देती रहेगी और भी क्या आज की दिन की गतिविधियां रही उनसे भी आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जी हाँ हेमंत, आकाशवाणी पर हम एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स टाइम टू टाइम अपने श्रोताओं को देते रहेंगे। उन्हीं इवेंट्स में बात करें, लाइव अपडेट्स में बात करें तो वुशू से खबर है, जहां पे 75 किलोग्राम भार वर्ग में विक्रांत बालियान को ईरानियन प्लेयर से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पर महिला वर्ग की बात करें तो 52 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 8 के अपने मुकाबले में अपर्णा को भी ईरान के प्लेयर से हार का सामना करना पड़ा है। टेबल टेनिस की बात करें तो जहां ग्रुप स्टेज में मेंस टीम की बात करें तो इंडिया और भारत और ईरान का जो मुकाबला था उसमें भी भारतीय टीम को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए बात करें तो आज मिश्रित दिन था। और अगर क्या करंट स्टैंडिंग है वो भी बता देते हैं अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल अतुल, और करंट स्टैंडिंग की बात करें, पॉइंट टेबल की बात करें तो चाइना सबसे ऊपर है, 11 स्वर्ण पदक और 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ टोटल 20 पदक उनकी झोली में आए अब तक। जापान की बात करें तो जापान ने 6 गोल्ड 6 सिल्वर और 7 कांस्य पदक के साथ 19वें नंबर पर बने, 19 पदक टोटल उनके खाते में गए। वहीं कोरिया की बात करें तो 3 स्वर्ण 3 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ टोटल 13 पदक उनकी झोली में है। कजाकिस्तान टोटल 5 पदकों के साथ 4वें नंबर पर, थाईलैंड 5वें नंबर पर 3 पदकों के साथ, म्यांमार की बात करें तो 3 पदकों के साथ 6वें नंबर पर, कुवैत की बात करें तो कुवैत है 2 पदकों के साथ 8वें नंबर पर, चाइनीज ताइपी की बात करें तो 3 पदकों के साथ 9वें नंबर पर, और चाइना जो है वो हांगकांग चाइना की हम बात करें तो 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल अभी वो इस समय 3 पदकों के साथ 10 पे बने हुए हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2 रजत पदक अपनी झोली में डाले आज तक, आज के जो निशानेबाजी में आए थे, और उसके साथ वो 10 में बने हुए हैं।
1: जी हेमंत, ये तो बात हुई आज के दिन के खेलों की, और कल भी नजरें रहेंगी पदक पे भी, और कल बहुत सारी गतिविधियां होने वाली हैं एशियन गेम्स में। तो बात करें प्रमुखता तो बैडमिंटन में, कल भारतीय मेंस टीम फर्स्ट राउंड में सामने होगी बांग्लादेश की टीम के साथ। वहीं बॉक्सिंग में भी कल 70 किलोग्राम भार वर्ग के शुरुआती मैच खेले जाएंगे, जिसमें सुमित का मुकाबला थाईलैंड के सेंचुरी से होगा। अगर मिक्स मार्शल आर्ट की बात करें, जो हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया था, वहां पे विमेंस ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल का मुकाबला, जिसमें सुचिका तारियाल कल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी, उनके सामने सिंगापुर की हुई हुनतियो होंगी। कबड्डी में कल मुकाबले होने वाले हैं, जहां पे मेंस टीम की बात करें तो ग्रुप ए में भारत और जापान का मुकाबला होगा। वहीं पे विमेंस टीम ग्रुप ए में भी भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। टेबल टेनिस में भी कल मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पे महिला वर्ग की बात करें तो ग्रुप एफ में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। आज बहुत अच्छी शुरुआत की है भारतीय टीम ने, जहां इंडोनेशिया और सिंगापुर को हराकर कल का मैच जीतने के बाद अगले दौर में प्रवेश करेगी टीम। और पुरुष वर्ग में बात करें तो आज इंडोनेशिया से तो हम जीते, लेकिन ईरान से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर कल भारत की टीम पाकिस्तान से खेलेगी। स्विमिंग में भी कल हीट मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पे मेंस वर्ग में 50 मीटर बैक स्ट्रोक होगा, वहां पे 50 मीटर फ्री स्टाइल की भी हीट स्पर्धाएं होंगी, मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक के भी कल इवेंट्स देखने को मिलेंगे, और साथ में मेंस 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के भी कल इवेंट्स होंगे। हॉकी में कल पूल बी में भारतीय महिला टीम खेलेगी इंडोनेशिया से, और वहीं से पक्टेक्रो में भी इंडिया और जापान का मुकाबला होने वाला है मेंस टीम रेगू में ग्रुप बी के अंतर्गत। तो ये तो हुई कुल मिलाकर कल जहां पे भारतीय खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी हेमंत, और एशियन गेम्स से हम लगातार अपने श्रोताओं को लाइव अपडेट भी देते रहेंगे और खेल खिलाड़ी में भी दिन भर की जो भी गतिविधियां होंगी उनके जरिए अवगत कराते रहेंगे।
0: बिल्कुल, और ये तो बात हुई एशियन गेम्स की, और एशियन गेम्स से अब चलते हैं आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप की तरफ, जहां इटली के पोरपेटो में संपन्न हुए आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन 2026 में, और अंतिम दिन बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक पलों से भरा रहा, जहां इटली की युवा जोड़ी ने न सिर्फ स्वर्ण पदक पर निशाना साधा बल्कि जूनियर स्तर पर एक बड़े विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की। फाइनल मुकाबले का रोमांच और इटली का दबदबा ट्रैप मिक्स टीम जूनियर स्पर्धा का फाइनल मुकाबला भारी उम्मीदों और दबाव के बीच शुरू हुआ। इटली का प्रतिनिधित्व कर रहे लुका घेरी और वेलेंटीना अर्जिती की जोड़ी ने शुरुआत से ही अपनी नसों पर नियंत्रण बनाए रखा और गजब का फोकस दिखाया। पूरे फाइनल के दौरान उन्होंने अपने बढ़त को कायम रखा और फ्रांस की मजबूत चुनौती को पीछे छोड़ते हुए 35 हिट्स के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही आधिकारिक परिणामों में इस जोड़ी के आगे EWRJ का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड जूनियर दर्ज हो गया है। ये कोई सामान्य जीत नहीं है अतुल भाई, 35 हिट्स का ये स्कोर अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। दिलचस्प बात यह है कि पिछला रिकॉर्ड भी इटली के ही नाम था। इसी साल 25 जून को सुहेल में हुई आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इटली के मारिया युवा विलेना ने और फ्रांसिस के तानफेगुलिया को ने 35 का स्कोर बनाकर ये विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। पैरपेटो के फाइनल में एक और इतालवी जोड़ी द्वारा इस रिकॉर्ड को दोहराना यह साबित करता है कि शॉटगन स्पर्धाओं में इटली की नई पीढ़ी पूरी तरह से तैयार है। वेलेंटिना अर्जिती की शानदार वापसी स्वर्ण पदक की चमक वेलेंटिना अर्जिती के लिए और भी खास है। इससे ठीक एक दिन पहले ट्रैप वेमेंस जूनियर के व्यक्तिगत फाइनल में उन्होंने गजब का जुझारूपन दिखाया था। 35 हिट्स के बाद शूट ऑफ में उन्हें स्पेन के इरेन डेल एरुइस के हाथों बेहद करीबी हार का सामना करना पड़ा था और रजत पदक से संतोष करना पड़ा था, लेकिन उस हार से टूट कर बिखर जाने की बजाय वेलेंटिना ने अगले ही दिन गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए मिक्स्ड इवेंट में सीधे स्वर्ण पदक और वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कब्जा जमाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छी और सच्ची खेल भावना वापसी करने में बहुत मदद करती है। यदि भारत के प्रदर्शन और उम्मीदों की बात करें तो इस कड़े और विश्व स्तरीय फाइनल में भारतीय निशानेबाजों ने भी अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई थी। भारत की ओर से मैदान में उतरे जोहर खान और सबीर हारिस की युवा जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप फोर में अपनी जगह बनाई। हालांकि पदक के बिल्कुल करीब आकर ये पहुंचकर ये जोड़ी 14 हिट्स के साथ 14 स्थान पर रही। भले ही भारतीय जोड़ी पोडियम फिनिश करने से चूक गई, लेकिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन उनके उज्जवल भविष्य का संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन युवाओं का ये अनुभव भारत के आगामी टूर्नामेंट्स में नई उम्मीद जगाता है।
1: जी हाँ हेमंत, और कार्यक्रम में अगर आगे बढ़ें तो ये तो बात आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप की हुई। आज रविवार है तो आज संडे ऑन साइकिल का अंक भी था, तो अपने श्रोताओं को आइए सुनवाते हैं ये रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और जब सेहत के साथ जुड़ जाए साइकिल की सवारी और कहानियों को सामने लाने का जज्बा, तो सफर और भी खास हो जाता है। इसी सोच के साथ दिल्ली में आयोजित हुआ फिट इंडिया के संडेज ऑन साइकिल का 91वां संस्करण, जिसमें इस बार पत्रकारों ने साइकिल पर सवार होकर फिटनेस और पत्रकारिता के संदेश को आगे बढ़ाया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम थी मीडिया ऑन द मूव। फिट इंडिया युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की ओर से आयोजित इस साइकिल राइड में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में फॉर्मर क्रिकेटर परविंदर अवाना और फिट इंडिया के अम्बेसडर शिवम गहलोत चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। क्रिकेटर परविंदर अवाना ने फिट इंडिया के इस मूवमेंट को फिटनेस के साथ साथ लोगों से जुड़ने का माध्यम बताया।
4: इस मूवमेंट से जुड़कर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। संडे ऑन साइकिल एक अच्छा पिछले 2019 में माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से लोगों को जोड़ने

0: रहेगा और फिटनेस भी इम्प्रूव होगी इसमें, और आपस में लोग जुड़ रहे हैं इसके माध्यम से, और साथ में फिटनेस भी हो रही है और काफी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
1: तो आप साइकिलिंग करते हैं अपनी डेली रूटीन?
0: हाँ, मैं जिम में जाता हूँ या फिर मेरे पे है स्पोर्ट्स साइकिल 2010-11 में, अभी भी मैं मेरे पास है। अगर मैं पुराने दिनों में जाऊँ तो मैं वीक में एक दिन यमुना एक्सप्रेस वे पे जाता था, रनिंग करता था, उसमें मैं रनिंग भी करता था, मैं साइकिलिंग भी करता था। ठीक है, फिटनेस के लिए ठीक है, इसमें कोर इंगेज होता है, आपकी मसल्स पे काम आता है, स्टेमिना बढ़ता है, और जितनी आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग होते हैं कि लंबी आप साइकिलिंग करेंगे तो एक मेंटल टफनेस आती है, तो ये लोगों को करनी चाहिए और इसके रिजल्ट्स आउटकम्स जो है काफी अच्छे हैं। तो मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं और मेरे माध्यम से काफी लोग हैं जो लोकल गांव से जुड़े हुए हैं, जो मेरे माध्यम से मेरे सोशल मीडिया पे या मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, वो मेरे को देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो साइकिल तो हमारे स्टार्टिंग में बुजुर्ग भी चलाते थे, बट ये क्या है फिटनेस के तौर पे, पहले नॉर्मल अपने काम के दिनचर्या जो होते थे उसमें काम आती थी, अपनी फिटनेस भी हो जाती थी, बट अब एक तरक्की आ गई, तरक्की के साथ जो पुरानी चीजें छूटती जा रही थी, बट साइकिल इस माध्यम से सरकार एक अच्छा स्टेप ले रही है और इम्प्लीमेंट हो रहा है वो चीजें।
1: सर, एशियन गेम्स की बात करते हैं, एशियन गेम्स शुरू हो चुके हैं और हमारी क्रिकेट टीम भी एशियन गेम्स में आ चुकी है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा कि वुमेन्स और मेन्स क्रिकेट की टीम गई हुई है और मुझे उम्मीद है कि 2 गोल्ड तो पक्के हैं क्रिकेट के माध्यम से, बट मैं और मेरे को रिस्पेक्ट है और स्पोर्ट्स की भी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे गोल्ड मेडल आए तभी हमारे देश का नाम होगा, क्योंकि एशियन गेम में हम टॉप करें, क्रिकेट में हम अच्छा कर रहे हैं तो उम्मीद है कि हम गोल्ड लाएं।
1: आप हमारे जो लिसनर्स हैं आकाशवाणी के जरिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इंडोर गेम खेलिए, कोई मनाही नहीं है, बट आप एक बार इसका मजा लीजिए, इतने आउटडोर गेम है ना, तो आप खेल सकते हैं और आपको काफी मजा आएगा, सारे पसीने निकलेंगे, कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होगा, क्योंकि अब इंडोर ही गेम रह गया तो उससे क्या आएगी, वो शारीरिक व्यायाम नहीं रहा, तो आप बाहर निकलेंगे तो और एक प्रोफेशन बनेगा, आपको पैसे आएगा, आपका नाम फेम बनेगा और आप अपने घर की अपने परिवार की मदद कर पाएंगे।
2: फिट इंडिया के एम्बेसडर शिवम गहलोत ने भारत की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहकर फिटनेस की ओर बढ़ने पर जोर दिया।
3: ये मुहिम इतनी बढ़ गई है कि आज शहरों से निकल के गांव में और गांव से निकल के करोड़ों लोगों तक ये मुहिम पूरे देश भर में पहुंच चुकी है। तो मोदी जी की ये पहल बहुत काम आई और पूरे देश में लोग जागरूक हुए, और इस मुहिम का मेन उद्देश्य ये भी रहा कि भारत को, हमारे यूथ को, अपकमिंग जनरेशन को नशे से दूर रखना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। नशा नहीं होगा तो हम और ज्यादा स्पीड से प्रोग्रेस कर पाएंगे, हमारा देश बढ़ पाएगा आगे। पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोग जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्शन ले रहे हैं। मैं फिट हूँ, एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि मैं पिछले 17-18 साल से विदाउट एनी इंजरी, मैंने क्रिकेट भी खेला, मैंने बैडमिंटन भी खेला, मैंने स्विमिंग भी करी, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ इंडिया का मेंस फिजिक में, मैंने कोई सप्लीमेंट यूज नहीं किया और आज भी मैं विदाउट इंजर्ड अपने सारे वर्कआउट करता हूँ, मैं क्रॉसफिट गेम्स यूएसए की तैयारी कर रहा हूँ। तो बस यही एक यूथ से और हमारे जैनजी से यही एक दरखास्त है, प्लीज अवॉइड स्टेरॉइड्स।
1: हर प्रोफेशन को डेडिकेट किया जाता है संडे ऑन साइकिल, और इस बार जो है वो जर्नलिस्ट को है, मीडिया पर्सन के लिए, तो इस थीम के पीछे की आपको क्या लगता है कि क्या उद्देश्य होगा?
3: इस थीम के पीछे मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी कुछ टाइम पहले सीएस का था, फिर इंश्योरेंस एजेंट्स का था पूरे इंडिया में, हमने तरह तरह की संस्थाओं के लिए रखा, आज मीडिया के लिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी संस्थाएं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि उन्हें समय ही नहीं मिल रहा है फिटनेस के लिए, उन्हें कोई प्रेरित ही नहीं कर पा रहा है फिटनेस के लिए कि कैसे आधा घंटा निकाल। डेली कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आधा घंटा स्कीपिंग भी कर लेगा, होगी नहीं आधा घंटा स्कीपिंग, लेकिन आप 15-20 मिनट स्कीपिंग कर लेंगे, आधा घंटा बहुत इजीली 24 घंटे में अपने निकल जाता है, नहीं तो जितना आप जिंदगी भर में कमा रहे हैं वो एक दिन हॉस्पिटल में लगने वाला, तो आज आधा घंटा दे देंगे तो जितना आपने मेहनत करके कमाया वो बच जाएगा। स्पेशली आजकल बहुत चर्चित वर्ड है जेनजी, तो इसके लिए एक ही वर्ड है कि भाई स्टेरॉइड्स अवॉइड करें, घर का खाना खाएं और एक घंटा अपने लिए निकालें। एक घंटा 24 घंटे में अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एक घंटे को मोबाइल के लिए बिल्कुल बंद कर दें, एयरप्लेन मोड पे डालकर सिर्फ अपने शरीर की तरफ देखें। 3 महीने 4 महीने ये आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आपको खुद ही अपना शरीर अच्छा लगने लगेगा, फील गुड करेंगे, अपना शरीर आपको बहुत लाइट फील होगा, पूरे दिन आप और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा काम कर पाएंगे। जो आप 8 घंटे की नौकरी में नहीं कर रहे थे वो आप 5 घंटे की नौकरी में उतना ही वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं। तो बस यही है कि यार अच्छा खाएं और एक घंटा एटलीस्ट अपने लिए दें।
2: कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागी भी बहुत उत्साह और जोश से भरे थे।
4: हमने इंस्टा पे वीडियोस वगैरह देखी थी इसकी कि बहुत अच्छा है, फिर मौसी भी हमारी पहले से ही आती थी तो हमने प्लान किया कि एक ना एक दिन आते हैं, फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि इसमें मतलब साइकिलिंग का भी है, उस दिन साइकिलिंग नहीं हुई थी, फिर उसका धीरे धीरे बैंड का करवाया, फिर क्यूआर कोड का करवाया, फिर आज साइकिलिंग करी। यहाँ पे कोई ऐसे पॉल्यूशन नहीं है, नो स्मोक सब कुछ है, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए पूरा ट्रीज वगैरह है, यहाँ पे अच्छे से खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा जुम्बा सब कर सकते हैं।
1: मैं एनसीसी की वजह से यहाँ 2-3 बार स्टेडियम में आ चुकी हूँ इवेंट्स वगैरह, मैं लास्ट टाइम भी आई थी संडे ऑन साइकिलिंग में, तभी मेरे को फन एक्टिविटी लगी थी, इसलिए मैं इस बार फिर से आई हूँ। फोन वगैरह से थोड़ा सा

0: साइड हो जाओ, संडे को साइकिलिंग करने आ जाओ, बहुत सारी एक्टिविटीज है, इतनी सारी एक्टिविटीज है। मैंने बैडमिंटन वगैरह सब खेला, बहुत बड़ा है। इस बार मैं मेरे दो सिस्टर्स को लेकर आई हूँ, लास्ट टाइम भी मैं मेरे दो फ्रेंड्स को लेकर, मैं ट्राई करती हूँ मैं अपने आसपास वालों को लेकर आऊँ, उन्हें भी बताऊँ ये इनिशिएटिव के बारे में, और सारे आते मेरे साथ। मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दे, फिटनेस पे ध्यान दे, काम तो होता रहेगा, फिर कुछ नहीं तो संडे को आके साइकिलिंग कर दो। गवर्नमेंट ने तुम्हें फ्री प्रोवाइड किया, साइकिल भी वो दे रहे हैं, रिफ्रेशमेंट भी वो दे रहे हैं, तुम्हें सिर्फ आना है, आओ और एंजॉय करो यहाँ।
1: तो हमारे लिसनर्स को कुछ बोलना चाहेंगे आप, स्पेशली योर जेंजीज? तो जेंजीज के लिए कुछ,
0: जेंजीज को मैं यही बोलूंगी नेक्स्ट संडे को यहाँ मिलते हैं, सारे दिखा देंगे कितने सारे जेंजीज है एक साथ साइकिलिंग करके।
2: यानी संडेज ऑन साइकिल के इस विशेष संस्करण में पहिए के साथ कहानियों ने भी रफ्तार पकड़ी। संदेश साफ है, फिटनेस सिर्फ एक दिन की कोशिश नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और इसी संदेश के साथ मुझे यानी सिमरन को दीजिए अनुमति। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर हैं शहनवाज खान, नमस्कार।
3: साथी अतुल भाई, आज मनसुख मंडाविया ने खेल मंत्री मनसुख माड़िया जापान के नगोया में संडे ऑन साइकिल के 91वें संस्करण का नेतृत्व किया और ये आयोजन नगोया में चल रहे एशियन गेम्स में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए चीयर फॉर भारत अभियान के तहत किया गया और उन्होंने अपनी बात भी रखी। क्या कहा उन्होंने बातचीत में, आइए सुनते हैं।
4: जापान में नगोया में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, भारत के एथलीट भी एशियन गेम्स में भाग ले रहे हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय डायस्पोरा ने संडे ऑन साइकिलिंग करके उसको चीयर फॉर भारत करा है। मेरा विश्वास है कि हमारे एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करके भारत का गौरव बढ़ाएगा।
5: ये तो बात हुई संडे ऑन साइकिल पे, और आगे बढ़ते हैं और चेस पे अपने श्रोताओं को जानकारी दे देते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे 46वें फिडे चेस ओलंपियाड में चौथे राउंड के बाद शीर्ष टीमों के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है। 19 सितंबर को खेले गए राउंड चार के बाद ओपन वर्ग में 8 टीमें 4 में से 4 मैच जीतकर 8 मैच अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष समूह में है। इनमें चीन मेजबान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जर्मनी, भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स और हंगरी शामिल हैं। भारतीय टीम ने चौथे राउंड में स्पेन को 3-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। आर प्रज्ञानंदा और निहाल सरीन का मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि अर्जुन एरिगेसी और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपनी अपनी बाजियां जीतकर भारत की जीत सुनिश्चित की। अन्य प्रमुख मुकाबलों में मेजबान उज्बेकिस्तान ने तुर्की को 2.5 डेढ़ अंक से, अमेरिका ने यूक्रेन को 3.5 आधे अंक से, चीन ने सर्बिया को 3-1 और जर्मनी ने पोलैंड को 2.5-1.5 से हराकर मुकाबले अपने जीते। चौथे राउंड के बाद भारत के 8 मैच अंक हैं और बोर्ड पॉइंट के आधार पर वे शीर्ष समूह में हैं। अगले राउंड में भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। अन्य प्रमुख मुकाबलों में चीन का सामना आर्मेनिया, जर्मनी का अमेरिका और हंगरी का उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग की बात करें तो भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। दिव्या देशमुख और सविता श्री ने जीत हासिल की, जबकि सविता श्री ने टूर्नामेंट में अपना लगातार चौथा व्यक्तिगत मुकाबला जीता। 19 सितंबर को खेले गए राउंड चार के बाद महिला वर्ग में 10 टीमें 8 मैच अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष समूह में हैं। इनमें अमेरिका, पोलैंड, मेजबान उज्बेकिस्तान, चीन, बुल्गारिया, जर्मनी, भारत, अजरबैजान, कजाकिस्तान और सर्बिया शामिल हैं। 46वें फिडे चेस ओलंपियाड जो है वो 27 सितंबर तक चलेगा और कुल 11 राउंड खेले जाने हैं। पांचवा राउंड आज खेला जाएगा, जहां शीर्ष टीमों के बीच पहली बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।
3: और अब बात करते हैं सुब्रतो कप की। सुब्रतो कप में कल खेले गए मुकाबलों में सीबीएसई वर्सेस उत्तर प्रदेश के मुकाबले में 5-1 से जीत मिली सीबीएसई को। साथ ही मेघालय वर्सेस अंडमान निकोबार के मैच में मेघालय ने अंडमान निकोबार को 5-0 से हराया। वहीं एएफ स्कूल वर्सेस आसाम के मैच में आसाम ने एएफ स्कूल को 2-0 से हराया। गोवा वर्सेज हिमाचल प्रदेश के मैच में गोवा ने हिमाचल प्रदेश को 2-1 से हराया। वहीं जम्मू एंड कश्मीर वर्सेज छत्तीसगढ़ के मैच में छत्तीसगढ़ ने जम्मू एंड कश्मीर को 4-0 से हराया। सीआईएससी वर्सेस गुजरात के मैच में सीआईएससी ने गुजरात को 4-0 से हराया। लक्षद्वीप वर्सेस चंडीगढ़ के मैच में लक्षद्वीप ने चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का जो मैच था वो ड्रॉ रहा। वहीं मध्य प्रदेश वर्सेस नागालैंड का मैच नागालैंड को जीत मिली 2-0 से। डीएनडी वर्सेस डीएनएच वर्सेस सैनिक स्कूल के मुकाबले में सैनिक स्कूल ने बाजी मारी 6-0 से। झारखंड वर्सेस केरला के मैच में केरला ने हराया झारखंड को 3-1 से। वहीं श्रीलंका वर्सेस आईएसएसओ ने मैच जीता श्रीलंका से 0-5 से। वहीं एनसीसी वर्सेस वेस्ट बंगाल के मैच में 4-1 से जीता।

0: मैच वेस्ट बंगाल ने अरुणाचल प्रदेश वर्सेस उत्तराखंड के मुकाबले में 4-0 से उत्तराखंड ने मात दी अरुणाचल प्रदेश को। वहीं बिहार वर्सेस आर्मी बॉयज के मुकाबले में 1-0 से जीत मिली आर्मी बॉयज को। अब बात करते हैं आने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की। वहीं सीएससी वर्सेस आसाम का मुकाबला होगा कल। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि बाकी खबरें ली जाएं। अब प्रोग्राम प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी हेमंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times stresses the urgent need for strong climate action to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. She called for stronger cooperation among stakeholders at the local, regional and global levels to address the challenges posed by climate change.
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: President Murmu said farm ponds can help local communities in water-stressed regions. On the first day of the conference yesterday, Prime Minister Narendra Modi addressed the gathering. The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force are conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur to bolster defense collaboration. The 14-day exercise, which will conclude on Tuesday, involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI and Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. Japanese Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew a Tejas jet with a pilot, while Air Chief Marshal AP Singh flew solo on the Tejas jet as part of their sorties under the Indo-Japan bilateral air exercise. Talking to media in Jodhpur during an ongoing bilateral air exercise, Air Chief Marshal Singh said, Japanese fighter aircraft operating from Indian soil for the first time marks a major milestone in defense cooperation between India and Japan. Union Minister of State for Defense Sanjay Seth today witnessed an air show by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team at Meerut in Uttar Pradesh. The defense minister said the two-day air show began yesterday, drawing more than 1 lakh spectators, including students, NCC cadets and NSS volunteers. Speaking to media, Mr. Seth described the performance as a remarkable demonstration of discipline, precision, teamwork and professionalism reflecting the capabilities of the Indian Air Force. The Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across the country to strengthen the fight against drug abuse among young people under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan or Drug Free India campaign. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the campaign is witnessing active mobilization of young people with the program is held at 1,067 locations across the country. Under the 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan, aimed at building a drug-free youth community for a developed India. In Punjab, the third phase of the BJP's Nasha Mukt Yatras was launched today from the Siddiqui border in Fazilka by Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal. Ukraine launched more than 1,000 drones at Russia overnight, including hundreds targeting Moscow. Mayor of Moscow, Sergei Sobyanin, called it as the largest ever drone attack on the capital, reporting damage to an oil refinery and a residential building. Mr. Sobyanin said 2 people were killed and 20 injured in the attacks across wider Moscow region. Russia's Ministry of Defense said its forces shot down 1,100 Ukrainian drones across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv used a range of missiles and drones in the attack. Pakistani authorities today detained Aleema Khan, the sister of jailed former Prime Minister Imran Khan, ahead of a planned protest by his Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party next week. Aleema Khan was detained in Lahore and transferred to Kot Lakhpat Jail. She was campaigning for the release of her 73-year-old brother, who has been incarcerated since 2023. India has made a strong start to its medal campaign at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with two silver medals coming from shooting on the opening.

0: आज के इस अंक में प्रकृति संरक्षण पर केंद्रित नृत्य नाटिका अनिर्वेद शक्ति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा आयोजित संगीतमय कार्यक्रम स्वरांजलि। 10 सितंबर गुरुवार को कमानी सभागार में प्रकृति संरक्षण पर केंद्रित एक नृत्य नाटिका और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कथक गुरु विदुषी शोभना नारायण द्वारा निर्देशित प्रस्तुति का उपस्थित कला प्रेमियों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में विदुषी शोभना नारायण ने बताया,
1: ये आयोजन हमारे पर्यावरण के उस पर है, फ्रैक्चर हार्मनीज कहा है, फ्रैक्चर हम कर रहे हैं उस तालमेल को, सामंजस्य को, धरती जल और आकाश के बीच। इंसान हम लोग सोच नहीं रहे, हम लोग अपनी जो भी हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, ऐसा जरा जरूरत से ज्यादा है, विचलित हो रहे हैं, मन भी विचलित हो रहा है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हमको सोचना है कि उसका रिवर्स इम्पैक्ट तो हम लोग के ऊपर आएगा, जीवन पर आता है, इंसान पर आता है, और वही सामंजस्य फिर वापस लाना है। अंडर वाटर, जल के नीचे भी हम जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पृथ्वी पर नेगेटिव, और तो अब स्पेस को भी हमने छोड़ा नहीं है, तो उस पर भी को लेकर के
0: प्रस्तुत है नृत्य नाटिका।

0: 14 से 25 सितंबर तक अनिर्वेद शक्ति द्वारा गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रदर्शनी, जिसमें महाराष्ट्र से आमंत्रित महिला उद्यमियों ने महाराष्ट्र के चुने हुए व्यंजन और विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शनी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस आयोजन के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में आर विमला, पूर्व स्थानिक आयुक्त महाराष्ट्र सरकार, ने बताया।
1: अनिर्वेद ने यह संस्था स्थापित की, महिलाओं के लिए विशेष तौर से काम कर रही है। गणेश सेवा मंडल रजिस्टर्ड जो लक्ष्मी नगर के बैंक एनक्लेव में स्थित है, डीडीए मिनी क्रिकेट ग्राउंड में, वहाँ पे हमने मोदक और ट्राइबल आर्ट है, बंजारा का और लेदर प्रोडक्ट है, जो अंतरप्रनर्स है, इनका स्टॉल रखा हुआ है। गणपति जी जो बप्पा हमारे हैं, इनको मोदक प्रिय है। और आमतौर पे हम लोग अगर देखें तो लोग जो मोदक देते हैं मावा का होता है, मैदा का होता है, और गणपति जी को जो मोदक प्रिय है चावल के आटे से, जिसके अंदर नारियल और गुड़ का और खसखस मिला के जो सारण बनता है, उससे वो स्टीम्ड मोदक, जिसको हम लोग उकड़ीचे मोदक बोलते हैं मराठी में, ये उनको प्रिय है। गांव से जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले से, महिलाएं ये बनाती हैं। इसके अलावा पूरणपुली जो महाराष्ट्र का बहुत फेमस व्यंजन है, और औरंगाबाद का खासियत एक होता है जो बीड की हमारी महिला है वो लेकर आई है, दही धपाटे। तो ऐसे महाराष्ट्र के अलग अलग व्यंजन जो है ये हमने लाने का प्रयास किया है।
0: 17 सितंबर गुरुवार को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि श्रृंखला के अंतर्गत गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में लोक गायक चंद्रपाल और साथियों को आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत है इस अवसर पर गणेश वंदना प्रस्तुतीकरण की एक झलक।

0: चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नियम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम। और नेश भाई देखिए आज 20 सितंबर है और आज के दिन को विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए इस दिवस को जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया भर में कचरे और प्रदूषण की गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना। और इस वर्ष का जो अगर थीम यानी विषय की बात करें तो इस वर्ष का जो थीम है वो थालियों से स्वच्छ शहरों तक, और इसका मुख्य ध्यान भोजन की बर्बादी को रोकने और शहरों के कचरा प्रबंधन को मजबूत करने पर है।
1: बिल्कुल सुनील भाई आपने सही कहा, और आज हम सफाई दिवस मना रहे हैं। और देखिए सुनील भाई ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आप साफ सफाई पर ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और हमारे देश में तो स्वच्छ भारत अभियान ही चलाया जा रहा है जो कि एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। तो साफ सफाई हमें किसी एक खास दिन नहीं रखनी है सुनील भाई, बल्कि हर दिन रखनी है। तो विश्व सफाई दिवस हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है जैसा कि आपने बताया। और अगर मान्यता की बात करें कि इस दिन की मान्यता कहां से मिली, तो वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2023 को एक प्रस्ताव पारित किया था, और उसी समय उस प्रस्ताव में ये तय किया गया था कि हर साल 20 सितंबर को आधिकारिक तौर पर विश्व सफाई दिवस मनाया जाएगा।
0: और रणेश भाई ये जरूरी इसलिए कि देखिए हर साल दुनिया भर में लाखों टन कचरा पैदा होता है जिसका एक बड़ा हिस्सा नदियों और समुद्र में जाकर मिलता है। यह दिवस लोगों को एहसास कराता है कि हमारी लापरवाही से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही यह दिन हमें सिखाता है कि भी सफाई केवल सरकार या नगर निगम की काम नहीं है। जब तक हर नागरिक अपने स्तर पर सफाई नहीं करेगा, सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक स्वच्छता हासिल नहीं की जा सकती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सफाई का स्वरूप भी आजकल बदल रहा है, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, गैजेट्स है। तो जो ई कचरा प्रबंधन है, अर्थात इनसे निकलने वाला जो कचरा प्रबंधन है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, अगर आपका फोन खराब हो गया और आपने उसको फेंक दिया, तो वो भी हमारे वातावरण को कहीं ना कहीं प्रदूषित करता है। तो हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि साफ सफाई का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि आपने झाड़ू पोछा लगा दिया या कूड़े को कूड़े घर में डाल दिया। साफ सफाई को व्यापक तौर पर देखने की जरूरत है ताकि जो ई कचरा प्रबंधन है इस ओर भी हमारा ध्यान जाए।
0: बिल्कुल, देखिए मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये जरूरी है। कूड़े कचरे के ढेर और गंदगी से हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसे अनेक बीमारियां फैलती हैं। कचरे का सही प्रबंधन होने से एक संक्रामक रोगों की जो खतरा कम होता है और लोगों को एक स्वस्थ जीवन मिलता है। तभी तो कहा भी गया है जब होगी साफ सफाई धरती पर तो दूर भागेगी हर बीमारी। और धरती को सुंदर बनाना है तो वही कचरा मुक्त समाज बनाना
1: है। बिल्कुल सही कहा सुनील भाई। तो हम लोग यही अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि स्वच्छता अपनाइए और स्वस्थ बने रहिए।
0: और देखिए विश्व सफाई दिवस के साथ साथ आज हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस भी मना रहे हैं, जिसका जो घोषणा संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन द्वारा की गई थी, और यह वार्षिक परंपरा 2016 में शुरू की गई थी। इस वर्ष का जो थीम, क्योंकि देखिए 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस वर्ष का थीम भी 10 वर्ष 10 किलोमीटर रखा गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना, उच्च शिक्षा संस्थानों में खेल, शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल सुनील भाई, और हमें साथ में ये भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा कहा जाता है ना कि आजकल हमारे ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर, गैजेट्स पर, टीवी पर बिजी रहते हैं, और अपनी जो शारीरिक गतिविधियां हैं कि पार्क में जाएं, खेलें कूदें, तभी तो उनका ये बचपन खिलता है और संवरता है। इसीलिए हम सबको खेलों की भावना से जुड़ना है। आप इनडोर आउटडोर गेम्स, हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे जो श्रोता हैं वो भी अपने बच्चों को जो है बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। और हमारे जो देसी खेल हैं, चाहे वो गुल्ली डंडे की बात हो या फिर जो बड़े खेल हो गए जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जिस खेल में भी आपके बच्चे की रुचि है उसकी रुचि को पहचानिए, उसे मौका दीजिए

0: आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश की सरकार भी खेलों को आगे बढ़ा रही है। आज इसी दिशा में हम लोग खेल दिवस भी मना रहे हैं,
1: तभी इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए, बातचीत भाइयों से और भी करेंगे। आज पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है। भाइयों की काफ़ी संख्या में हमें देखिए भाई जो फरमाइश और खत मिले हैं, और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो है उदयवीर सिंह चौहान, और उनको सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है ये मिली है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गाँव ढाणी लाल खानोरा से, इसको भेजने वाले जावेद खान, इमरान खान और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है बलराम भैया, दामिनी भैया और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और भाई इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा, जबकि हम अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि भाई अब अपना नाम और जगह का नाम अवश्य लिखा करें। अगली जो फरमाइश हमें मिली है जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से स्वर्ण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और कुछ नाम हमारे पास भी हैं, अगर बात करें जो है सहारनपुर यूपी, तो वहाँ से हमारे श्रोता हैं श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लविस प्रजापति और मुनेश देवी प्रजापति। इसके अलावा दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का भी संदेश मिला है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई दतरंगी छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और अगली फरमाइश हमें मिली है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और उनके समस्त परिवार की तरफ।
0: और पहाड़गंज मुल्तानी ढाबा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक का भी संदेश हमें मिला है। और इसके साथ ही रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का भी मैसेज आया है।
1: उदयवीर सिंह चौहान को ही सुनना चाहते हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा।
0: और इसके साथ ही एक और संदेश आया है बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैन जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़ और हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और कांता चौधरी का। तो क्यों ना हम इन्हीं सभी श्रोताओं के नाम पे सुनवाते हैं।
1: चलिए आप सभी की पसंद से सुनते हैं उदयवीर सिंह चौहान से रागनी किस्सा रहेगा पूरणमल का, और ये उस मौके की रागनी है जब पूरणमल 12 वर्ष तक रहने के बाद बाहर निकलते हैं, तो उनके पिता अपनी छोटी रानी जो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भेजते हैं। जब रानी लूना को पता चलता है कि उसका सौतेला बेटा पूरणमल उससे मिलने आ रहा है, तो बेटे के आने की खबर सुनकर नंगे पाँव भाजी चली जाती है। और लेकिन जैसे ही लूना महल की दहली पर खड़े अति सुंदर युवा पूर्णमल को देखती है तो उसका मन बदल जाता है। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: रणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी उदयवीर सिंह चौहान से। और भाई देखिए, किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और आगे बात करें तो देखिए, सरकार द्वारा सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। यह एक राष्ट्रव्यापी जन कल्याण और जागरूकता अभियान है। और इसके देखिए जो मुख्य उद्देश्य है, जन सेवा और सुशासन। जैसे जन सेवा ही प्रभु सेवा के भाव के साथ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, योजनाओं की जानकारी किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों तक, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, साथ ही सामाजिक कल्याण की अगर बात करें, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य सेवा और जरूरतमंदों की सहायता सेवा कार्य करना।
1: बिल्कुल सुनील भाई, सेवा ही संकल्प, इसको हमें ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारी सरकार हमारे नागरिकों को भी अपने साथ ले रही है। माई गॉव ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के आप भी अपने विचार, अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी योजना से संबंधित आप वो बात रख सकते हैं। तो एक तरीके से नागरिक सहभागिता का मंच है माई गॉव प्लेटफॉर्म, जो कि सेवा और संकल्प से आपको जोड़ता है।
0: बिल्कुल। और इस उपलक्ष्य में देखिए, सांस्कृतिक और रचनात्मक जो प्रतियोगिताएं, उनका आयोजन किया जा रहा है। साथ ही वही देखिए, सेवा के रंग राष्ट्र के संग सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं में आभार और संकल्प को दर्शाती भव्य रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम की बात करें तो भाई देखिए, आंगन मिलन सेवा, इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा अभियान की बात करें, स्वास्थ्य और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और नशा मुक्त युवा अभियान, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए खेल रैलियां और अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और निर्माण यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी और पर्यावरण और जल संरक्षण श्रमदान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
1: बिल्कुल। तो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सुशासन, यानी आपके लिए ही अच्छा शासन हो, उसमें हमारे नागरिकों की भी सहभागिता हो। इसलिए आप भी सेवा से संकल्प का जो अभियान है, इससे जुड़ सकते हैं। और सुनील भाई, अब हम एक और परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है भारत माला परियोजना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परियोजना देश में राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि जो नेशनल हाईवेज हैं, और सड़क नेटवर्क के विकास और सुधार से संबंधित है। आप सबको ही मालूम है कि हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, यानी जो परिवहन के साधन है, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट प्रमुख भूमिका निभाता है। तो उनका आधुनिकीकरण करना और पूरा देश का हर एक गांव, दूर दराज का गांव भी मुख्य मार्ग से जुड़े, हाईवे से जुड़े, उसके लिए प्रयास करना, इसके लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। और यह देश में लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाती है, आर्थिक गलियारों यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को भी मजबूत करती है, और इसके साथ ही आवागमन की सुविधा को भी बेहतर करती है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। और
0: भाई देखिए, इसके प्रथम चरण की अगर बात करें तो इसमें 34,800 किलोमीटर लंबी राजमार्ग सड़कों का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भाई 26,400 किलोमीटर से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही भाई देखिए, जो गति शक्ति योजना है, अब इस योजना को जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत कर दिया गया है, ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण और तेजी से हो सके।
1: बिल्कुल। और तो आपको ये भी बता दें कि इस यानी योजना भारतमाला परियोजना जो है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे देश में ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक समस्या है। तो देश के 550 से अधिक जिला मुख्यालयों को कम से कम 4 लेन राजमार्गों से जोड़ना भी एक उद्देश्य है, ताकि ट्रैफिक को शिफ्ट किया जा सके। तो ये तो सुनील भाई हमने अपने श्रोताओं को जानकारी दी भारतमाला परियोजना के बारे में। अब उनका मनोरंजन कराते हैं।
0: अब मनोरंजन की बात आपने की, तो देखिए आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो है रविंदर सिंह और जयवीर सिंह। और उनको सुनने के लिए भाई देखिए, काफी फरमाइश मिली है। ये पहली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की।
1: इसके अलावा ग्राम संसार हमारे इस कार्यक्रम में रागनी सुनना चाहते हैं और ये जो है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया हैं। इसके अलावा गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम सचिन सतीश योगेश और युथव है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश शाहू जितेंद्र शाहू और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा महिपाल नीरू उत्कर्ष और दिव्यांश गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से भी इन्होंने मैसेज भेजा है। और इसके अलावा गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला विशाल और निशा का भी संदेश हमें मिला है।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता और कर्ण बत्ता और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और है मैसेज मेरे पास आया है नूर महल महसोल से सीतामढ़ी बिहार से मुसरित जहानाज तलहत फरहत रिफत मुजहत साजिया नाजिया और पठान टोली कलेर से निकहत प्रवीण सदफ अर्जू और सादिया तस्नीम का।
0: तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं रविंदर सिंह और जयवीर सिंह से रागनी किस्सा रहेगा महाभारत का। और ये उस मौके की रागनी है जब युद्ध नीति के दौरान अर्जुन द्विविधा में है, युद्ध की स्थिति को लेकर कृष्ण उन्हें समझाते हैं और समय व धर्म का महत्व समझाते हैं। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: उमेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी रविंद्र सिंह और जयवीर सिंह से, और किस्सा था महाभारत का। और भाई, आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो है योगेश कुमार। और योगेश कुमार को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है वो मिली है चौधरी वास से राजू अग्रवाल के सब प्रियांशी की।
1: इसके अलावा मेरे पास भी कुछ संदेश आए हैं, इन्हीं कलाकार को सुनना चाहते हैं। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, और इसके अलावा जो है नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन का भी मैसेज आया है। और इन्होंने संदेश ये भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से। इसके साथ ही गाँव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम, ऋतु सिंह, हिमानी शुभम और यश कुमार, और
0: साथ ही हमें फरमाइश मरी है धनौरी तेलेवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की।
1: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू का। इसके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहां, ये संदेश इन्होंने भेजा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से संदेश आया है हमारे पास। सुरेंद्र सिंह संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रीति संधू, शिखा संधू, प्रतीश और मैक्स का। और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से संदेश आया है सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर, गौरव शारिया, महेश सोनल जोवा का।
0: और योगेश कुमार को ही सुनना चाहते हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की, और गाँव लोहगढ़ जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, उनकी प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी की और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गाँव खोखरवाली श्री गंगानगर से विनोद बारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं योगेश कुमार से ये रागनी, और किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।
2: अरे मुझ निर्धन कंगाल की गल्या तू के

0: सावत्री घने दुख उठावेगी।
1: गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी योगेश कुमार से, और किस्सा था सत्यवान सावित्री का। और योगेश कुमार की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
2: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिवन महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। रणेश भाई देखिए आज पत्रोत्तर कृषि पत्रोत्तर लोक संगीत के साथ कार्यक्रम है, तो खत भी भाइयों का कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल साथ भाई, देखिए ऐसा है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ना, और इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं हमारे किसान भाई बहन, क्योंकि उनकी पसंद के लोक गीत हम सुनवाते हैं और साथ ही बहुत सारी जानकारी भी देते हैं।
0: और भी मिली है जो पिछले कार्यक्रम,
1: तो उनकी फरमाइशों पर आधारित हम तो सुनवाएंगे ही, लेकिन क्यों ना सुनील भाई पहले एक जानकारी दे देते हैं अपने किसान भाई बहनों को कि आज जो है हम कौन सी योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
0: आज देखिए पहले बात कर लेते हैं किसान उत्पादक संगठन की, जो किसानों का एक ऐसा समूह है जो बाजरा गेहूं या अन्य फसलों के उत्पादन और बाजार में बिक्री से जुड़े काम करता है, ताकि किसानों की उनकी उपज के सही दाम मिल सके। इसके देखिए जो सामूहिक संगठन है, छोटे और सीमांत किसानों को एक पंजीकृत समूह होता है, साथ ही है आमतौर पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है और किसानों की सौदेबाजी की क्षमता और आय को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल, ये प्रमुख लाभ हैं। और कुछ और अगर लाभ की अगर हम बात कर लें तो इसके तहत जो बीज होते हैं, उर्वरक और कीटनाशक, इनकी थोक खरीद में कम खर्चा आता है, और जो आधुनिक कृषि उपकरण हैं, मशीनरी हैं, इनकी सामूहिक उपलब्धता भी होती है, और बेहतर बाजार तक पहुंचना भी एक प्रमुख बिंदु है। इससे क्या होता है कि जो बिचौलियों की भूमिका है वो लगभग खत्म होती है, तो इसका सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता है।
0: और थे के साथ ही बैंकों से जो कार्यशील पूंजी है और कृषि लोन में आसानी से सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का सीधा लाभ भी उन्हें मिलता है। साथ ही आधुनिक खेती और उन्नत तकनीकों की जानकारी और मिट्टी की जांच और फसल प्रबंधन की सलाह भी इसके तहत मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: तो काफी अच्छा ये संगठन है भाई, इससे किसान भाइयों को भी लाभ है और जो संगठन बनाने वाले हैं उनको भी लाभ है। तो आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो दिनेश गिरी और खताब के हाथ में दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, पहला ये जो संदेश हमारे पास आया है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या का। और साथ ही में एक और संदेश आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, एंड नासिर शेख, नासिर साजिद और शाहिद का। इसके अलावा
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव खोखरावाली से, श्री गंगानगर से विनोद वारसा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और संदेश आया है नरसाना भिवानी से, जगदीश चांडलिया, राजवीर, सतीश चांडलिया, ऋतिक और केला देवी जी का। और साथ ही गांव उगला जिला अंबाला हरियाणा से, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। इसके साथ ही हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का भी मैसेज आया है। और साथ ही दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा के साथ साथ कुणाल मेहरा जी का भी संदेश आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव नथाना पंजाब से, हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और ये फरमाइश हमें मिले सिद्धेश्वर नगर से, इसको भेजने वाले पंजाब रामटेक, यशोधरा और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिले बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशन लाल, कौशल्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला श्री करणपुर राजस्थान से, राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, मनु, शिव, करणपुरी, इस्माइल टुटेजा का। और साथ ही भोला कॉलोनी घरोड़ा जिला करनाल हरियाणा से, विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल वाणी जयाम। और भी एक संदेश आया है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से, रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर का।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं दिनेश गिरी से ये उपदेश।

0: दिनेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना दिनेश गिरी से, और आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल। और साथ ही खत लेने से पहले क्यों ना हम एक सवाल ले लें। तो
0: बिल्कुल
1: ये एक विनोद कुमार का सवाल आया है, ग्राम माजरा जिला झज्जर हरियाणा से। और इन्होंने लिखा है कि वे सर्दी के समय गेंदे के फूल का उत्पादन लेना चाहते हैं, और क्योंकि सर्दी आने में भी 2-3 महीने बाकी हैं, तो क्या ये सही समय है, उपयुक्त समय है गेंदे के फूल का बुवाई करने के लिए? और अगर ये समय उचित नहीं है तो फिर कौन सा समय उचित है? और इसके साथ ही किस तरह की जमीन हो, मिट्टी हो, भूमि हो, उसका चयन कैसे करें? और साथ ही इसके लिए उन्नत किस्में

0: कौन सी हैं बीज की, और इसके अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि वे गेंदे के फूल का अच्छा उत्पादन पा सकें।
1: विनोद भाई, देखिए, आप गेंदे के फूल का उत्पादन लेना चाहते हैं सर्दियों में, और अगर सही बात की बात करें तो, अगर सही समय की बात करें तो देखिए, सितंबर का दूसरा सप्ताह इसके लिए सबसे उचित माना जाता है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है भाई, आप बिजाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें देरी बिल्कुल ना करें, अब जल्दी से आप इसकी बिजाई कर दें। और जहां तक भूमि चयन की बात होती है कि गेंदे की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही भाई देखिए, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि भाई खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, और आपका खेत अगर तैयार है तो भाई इसमें देरी ना करें। उन्नत प्रजातियों की अगर बात करें तो आप अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा दो प्रचलित किस्में हैं, जिसमें अफ्रीकन गेंदे में जो मुख्य किस्में हैं उसमें पूसा नारंगी, पूसा बसंती, पूसा बहार, जीनिया गोलू और मैन इन द मून प्रमुख हैं। और फ्रेंच गेंदे की अगर बात करें तो पूसा अर्पिता, फ्लैम, फर्स्ट लेडी और गोल्ड लेडी, ऑरेंज लेडी आदि प्रमुख किस्में हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं, लेकिन जहाँ से भी बीज लें उपचारित बीज लें, और भाई उपचारित ना हो तो उसे उपचारित अवश्य कर लें। देखिए, नर्सरी में गेंदे के बीज की बुआई के बाद पौधा एक माह में रोपण के लिए तैयार हो जाता है, तो सही समय पर आप रोपाई करें। और भाई अफ्रीकन गेंदे की अगर बात करें तो 40 से 40 सेंटीमीटर तथा फ्रेंच गेंदा 30 से 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी जो उचित मानी जाती है, और गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। भाई खरपतवार नियंत्रण का आपने ध्यान रखना, साथ ही सिंचाई आदि का ध्यान रखकर समय पर आप रोपाई करें। और भाई रोपाई से 60 से 70 दिन के अंदर फूल आना शुरू हो जाता है, और ये 90 से 100 दिन तक लगातार चलता है। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर बिजाई करेंगे तो आप ले पाएंगे गेंदा फसल से भरपूर उत्पादन।
0: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है सुनील भाई कि आपने ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो ये जानकारी का लाभ न सिर्फ हमारे विनोद कुमार जो श्रोता हैं उनको मिलेगा, बल्कि हमारे अन्य जो किसान हैं जो कि गेंदे का फूल का उत्पादन करना चाहते हैं उनको भी आपके द्वारा दी गई इस जानकारी को लाभ मिलेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और ब्रजेश हैं उनके के जो है हमारे ये कलाकार हैं, और इनके लिए जो रिक्वेस्ट आई है वो मैं आपके पास देख रहा हूँ, कुछ फरमाइश आई है।
1: बिल्कुल फरमाइश आई है, काफी फरमाइश आई है। ये पहली फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से, इसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, सीता कश्यप और उनका समस्त परिवार।
0: इसके अलावा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस का भी मैसेज आया है, और साथ ही जो है जिला अम्बाला और कस्बा है बराड़ा, यहाँ से संदेश आया रवि कुमार का, राहुल का, रणजीत कौर का।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई, ये फरमाइश मिली है कॉलोनी मुराद नगर गाजियाबाद से, उसको भेजने वाले करमवीर सिंह और उनका समस्त परिवार।
0: इसके अलावा भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान का भी संदेश आया है।
1: ब्रजेश से ही उपदेश सुनना चाहते हैं, सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का।
0: इसके अलावा दादरी गेट भिवानी से भी कृष्ण, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल का मैसेज आया है,
1: और ये फरमाई समय मिली है साले बाटा छत्तीसगढ़ से, इसको भेजने वाले जीतू, केवल, किरण और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा की।
0: इसके अलावा और भी संदेश हमारे पास आ रहे हैं, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मांडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया और हिना, शकीला, राजिया, इन सबका संदेश भी हमें मिल चुका है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी की।
0: और एक संदेश आया है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू काव।
1: ये फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और कणु वर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: ओल्ड लिसनर ग्रुप ऑफ इंडिया रामगढ़ कैंट से ये संदेश आया है, महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह हीरा, भारत भूषण श्रीवास्तव। और इसके अलावा एक और संदेश आया है कालानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा का।
1: ये फरमाइश हमें मिली है भाई एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ग्राम रजौनी जिला महोब बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जयंत पाल, दीक्षा पाल और उनके समस्त परिवार की तरफ से।

0: इसके अलावा दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से भी एक संदेश आया है। मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्री, बेबी चाहत और सादिया का। और इसके साथ ही जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का भी संदेश मिल चुका है।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली, आदर्श नगर मालोट पंजाब से राज शर्मा, अमीना शर्मा, योगा शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भटिंडा रोड मंडी से, उसको भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और उनका समस्त परिवार।
0: सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का भी संदेश मिला है।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव चोलदा बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और उनके समस्त परिवार की तरफ से। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कुमार हेड़ा, सैयद मसरूर, साइना हसन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गवैया मल्होत्रा और जयपाल यादव का भी संदेश मिल चुका है।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ब्रजेश से ये उपदेश।

0: द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं और उपयोजनाएं चलाई जाती रही हैं। ऐसी एक जो उपयोजना वर्षा आधारित क्षेत्र विकास भारत सरकार के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत चलाई जा रही है, जो एक उपयोजना है। और इस उपयोजना का जो मुख्य रूप से जो वर्षा पर निर्भर जो कृषि क्षेत्रों में टिकाऊ और समय कृषि को बढ़ावा देती हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, और बात करें अगर वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना के बारे में जो कि अभी आप जानकारी दे रहे थे, तो अगर इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करें तो आप सबको जैसे कि पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं। इससे क्या है कि फसल में नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचाने के लिए भी ये योजना जो है लाभदायक है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन के लिए भी ये योजना काफी अच्छी है, और इससे है क्या कि किसानों की आजीविका में सुधार होता है और वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं।
0: बिल्कुल, साथ ही देखिए एकीकृत कृषि प्रणाली की अगर बात करें तो किसानों को खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आमदनी के स्रोत बढ़ाए जा सके।
1: और इसके अलावा अगर प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो जल संरक्षण की दिशा में भी बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि जो तालाब होते हैं और जल संचयन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इसका जो है लाभ मिलता है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य, जिसमें कि जैविक खाद है, हरी खाद है, और मृदा परीक्षण यानी मिट्टी की जांच को भी बढ़ावा मिलता है, और साथ ही फसल में विविधता आती है, जैसे कि दलहन, तिलहन और मोटा अनाज यानी मिलेट्स जैसी कम पानी की आवश्यकता वाली जलवायु अनुकूल फसलों को भी समर्थन मिलता है।
0: और देखिए पात्रता की बात करें, सभी किसान पात्र, देश के सभी छोटे सीमंत और बड़े किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आवश्यक जो दस्तावेज की बात एक बार भाइयों को बता दें तो देखिए आधार कार्ड जो आपका बैंक खाते से लिंक हो, भूमि के दस्तावेज, इसमें खसरा खतौनी और लीज एग्रीमेंट वगैरह आता है, और साथ ही बैंक की पासबुक जिससे कि सब्सिडी आपके सीधे खाते में आ सके, इस तरह के आपको जो आवश्यक दस्तावेज करने हैं ताकि आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें।
1: और अब सुनील भाई, अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ओम वीर आर्या, और इनको सुनने के लिए जो संदेश हमारे पास आए हैं, तो अगर हम बात करें पहला जो ये संदेश आया है शीशपाल अकेला का, और ये संदेश इन्होंने लिखा है जटवाड़ा गाजियाबाद से। इसके अलावा ज्ञानेंद्र सरधाना जी का जो है भी मैसेज आया है, और गाँव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार, पिंकी, वंश और भूवेश का भी संदेश हमें मिल चुका है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, और इसको भेजने वाले राशिद हुसैन अंसारी और उनका समस्त परिवार। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है वो मिली है भाई हमें हितेंद्र दास की असम से, और साथ ही हमें फरमाइश मिली एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की।
1: इसके अलावा पुराना तालाब डुमराओं से ये संदेश आया है वली उल्लाह अंसारी, बेगम शबनम राज और असमा अंसारी का, और दूसरा संदेश है जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी, फातिमा राज और असलम राज का, और इसके अलावा बाबा कुटीर रायगढ़ से संदेश आया है शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान का, और अनारकली से जो अनारकली बाजार है जगराऊं पंजाब से सुनील का, उनका भी संदेश आया है और वो भी ओमवीर आर्या को सुनना चाहते हैं।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई बन्ने बुजुर्ग प्रेरा टीकमगढ़ से, बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी और उनके समस्त परिवार की तरफ से, ममना जिला हमीमपुर से फरमाइश मिली है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा एक और संदेश आया है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियम और दिव्यांशी विश्वकर्मा का।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ओमवीर आर्या से ये उपदेश।

0: गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना ओमवीर आर्या से। और अब देखें, मौसम की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में 17 से 25 सितंबर तक मानसून की विदाई हो जाती है, और उत्तरी मध्य भारत की बात करें तो 25 से 30 सितंबर तक मुख्य रूप से मानसून चला जाता है। आने वाले समय में धूप खिली रहने की आशंका और बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। देखिए, अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 24 रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब कल के कार्यक्रमों के बारे में भाइयों को बता दें, कल 5:10 पर कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे, और साथ ही भाई देखिए 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए कृषि ड्रोन सेवा उद्यम के बारे में जानकारी देंगे, और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जलवायु स्मार्ट कृषि के बारे में, बदलती जलवायु के अनुरूप खेती को कैसे बनाएं सक्षम, और साथ ही भाई जो कल जो बाजार भाव के बारे में भी चुनंदिया मुंडो की जानकारी देंगे।
1: और इसके अलावा देखिए श्रोताओं, हमें आपके सुझावों का लगातार इंतजार रहता है, क्योंकि उससे हम हमारे कार्यक्रमों को एक गति मिलती है और गति से ही प्रगति होती है। तो आप हमें इसके लिए संदेश भेज सकते हैं। हमें हमारा पता, जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनको तो मालूम ही है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए हम बता देते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: संभल नहीं।
1: श्रोताओ, आज का गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये देख कैसे?
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: देखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: I know na।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कैंसर देखभाल में नवाचार और किफायती उपचार विषय पर सेमिनार को संबोधित किया। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल संकट वाले क्षेत्रों में कृषि जल संरक्षण इकाइयां स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य साझेदार राज्यों के रूप में भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस कड़ी में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम और दिल्ली नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक का ऐतिहासिक टाउन हॉल केवल भवन नहीं बल्कि दिल्ली के समृद्ध इतिहास और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। श्रीमती

0: गुप्ता ने कहा है कि ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर देश दुनिया से दिल्ली आने वाले पर्यटकों को पुरानी दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और विरासत से परिचित कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ऐतिहासिक टाउन हॉल, प्रेस बिल्डिंग और पार्क का संरक्षण करते हुए एक ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक भवन की मूल विरासत पहचान को सुरक्षित रखते हुए उसका अनुकूली पुनः उपयोग करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में होने वाले इनोट्रांस 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत करेगी। इसके माध्यम से वो मोबिलिटी के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करेगी।
2: इनोट्रांस 2026 जर्मनी के बर्लिन में हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा व्यापार मेला और रेल परिवहन उद्योग पर आधारित केंद्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जमुआर ने कहा कि इनोट्रांस 2026 DMRC और DMIL की विशेषज्ञता को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए एक अहम मंच प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी दुनिया भर के परिवहन अधिकारियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और मोबिलिटी लीडर्स के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। DMIL ने पिछले 3 महीनों में 5 अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं जमा की हैं, जो उसके अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार की एक अहम शुरुआत है। इनोट्रांस 2026 संस्करण उन तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेगा जो रेल परिवहन को बदल रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने आज इंडियन कैंसर सोसाइटी द्वारा आयोजित कैंसर देखभाल में नवाचार और इलाज को किफायती बनाने से जुड़े विशेष सेमिनार को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए नवाचार और किफायतीपन का साथ साथ चलना जरूरी है। उन्होंने कैंसर की रोकथाम, जागरूकता, शुरुआती जांच और समय पर रेफरल को प्रभावी कैंसर देखभाल की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि समय पर बीमारी की शुरुआती पहचान से जान बचाने के साथ परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से भी राहत मिलती है।
3: फॉर अ पेशेंट एंड देयर फैमिली,
4: किसी मरीज और उसके परिवार के लिए कैंसर का निदान केवल एक चिकित्सकीय चुनौती नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक तनाव, अनिश्चितता और भारी आर्थिक बोझ भी लेकर आता है। इसीलिए वहनीयता को नवाचार से अलग मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना होगा। कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है बीमारी का शुरुआती चरण में पता लगाना।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने मरीजों को 35 वर्षों तक सहानुभूतिपूर्ण सहयोग देने के लिए कैंसर सहयोग की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज नायर सर्विस सोसाइटी और ग्लोबल नायर सेवा समाज द्वारा आयोजित नायर शिखर सम्मेलन 2026 और विद्याधिराजा महोत्सव समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संत और समाज सुधारक चट्टम्पी स्वामीकल ने सामाजिक भेदभाव और जातिगत रूढ़ियों के विरुद्ध समाज को जागरूक कर समानता और समरसता का संदेश दिया। ये आयोजन उनके इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाता है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इसी भावना के साथ दिल्ली में रह रहे केरलम के सभी भाई बहन अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए दिल्ली की विविधता को समृद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हरितालिका तीज महोत्सव 2026 में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने हरितालिका तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीज व्रत नहीं बल्कि नारी के संकल्प और शक्ति की गाथा है। माता पार्वती के तप और संकल्प से जुड़ा ये पर्व आज भी सभी माताओं और बहनों की आस्था, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने हरितालिका तीज को नेपाली और गोरखाली नारी की शक्ति और स्वाभिमान का पर्व बताते हुए समाज की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय कॉलेज के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। श्री सूद ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों और उनके सफर का जश्न मनाना उनके लिए खुशी का अवसर है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi.com और इंस्टाग्राम पर

0: आईआर न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: राजधानी में विभिन्न रामलीला समितियों ने आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण के साथ श्री रामलीला महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ किया। आज ऐतिहासिक लवकुश रामलीला समिति ने लाल किले के सामने लवकुश पार्क में भव्य भूमि पूजन और ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भूमि पूजन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भगवान श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्री हनुमान ध्वज को भूमि में स्थापित कर दिल्ली के रामलीला महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री खंडेलवाल ने कहा कि रामलीला केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का जीवंत उत्सव है।
2: प्रभु राम की जो मर्यादा है, उनके जो सिद्धांत है, वो प्रतिपादित होते रहे और हम सब मिलकर के प्रभु श्री राम के गुण गाते रहे। रामलीला हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और आज से विधिवत रूप से भूमि पूजन के साथ दिल्ली में रामलीला महोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।
1: श्री खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली की रामलीलाएं देश की सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक है, जो नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में आज 11 करोड़ 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और निगम पार्षद रोहतास बिधूड़ी तथा मंजू भी उपस्थित रहीं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि इन कार्यों पर खर्च की जा रही राशि दिल्ली सरकार के अनुसूचित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली नगर निगम MCD ने स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाए। पुरानी दिल्ली में विकसित फाउंडेशन के सहयोग से लाल किला और अंगूरी बाग क्षेत्र में आयोजित अभियान में करीब 400 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अंगूरी बाग में पौधारोपण भी किया गया। पूर्वी क्षेत्र में स्वामी दयानंद मार्ग और उत्तरी क्षेत्र के तिमारपुर, गांधी विहार, वजीराबाद और GTB नगर में विशेष सफाई अभियान चलाए गए। इस दौरान नागरिकों को कचरे के उचित निस्तारण और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आसमान साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल के विकास के लिए दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली मेट्रो की सहायक कंपनी दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड बर्लिन में इनोट्रांस 2026 में भाग लेगी। वैश्विक मंच पर सेवा विस्तार की दिशा में बड़ा कदम। और दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत राजधानी में स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं युवा कवि हिमांशु शुक्ला।
4: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आकाशवाणी दिल्ली स्टूडियो में आपके लिए जुड़े हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के कवि कवित्री उपस्थित हैं, जिनमें डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी हैं, दीप शिखा श्रीवास्तव दीप जी हैं और डॉक्टर सलोनी चावला जी हैं। तो आइए हम इनकी रचनाओं से, इनकी कविताओं से जुड़ते हैं आप सभी के साथ और आनंद लेते हैं इनकी रचनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जहाँ कविताएं होती हैं वहाँ कहते हैं स्वर्ग अपने आप जमी पर उतर आता है। मौसम ने आज कुछ ऐसा रंग जमाया है, हवा ने भी जैसे कोई गीत सुनाया है। हल्की सी

0: ठंड, चाय की प्याली और शायरी का साथ, लगता है आज की शाम में खुद को कविता से सजाया है। कुछ मौसम कविता लिखवाते हैं, कुछ मौसम कविता सुनवाते हैं, और कुछ शामें ऐसी होती हैं जो कवि और श्रोता दोनों को ही अपना बना लेती हैं। तो आइए आज की इस शाम को शब्दों की गर्माहट, भावनाओं की मिठास और कविताओं की खुशबू से महका दें, क्योंकि जब शब्द जब दिल से निकलते हैं तो असर करते हैं। मैं सबसे पहले आवाज देता हूं, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी को, और इनको मैं आमंत्रण देता हूं मोहम्मद अलवी साहब की इन चार पंक्तियों के साथ। शरीफे के दरख्तों में छुपा घर देख लेता हूँ, मैं आंखें बंद करके घर के अंदर देख लेता हूँ, उधर उस पार क्या है ये कभी सोचा नहीं मैंने, मगर मैं रोज खिड़की से समंदर देख लेता हूँ। तो स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्य जी का, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार सभी श्रोताजनों को, मैं ऋषि मौर्य अपने एक मुक्तक से आप सभी लोगों से रूबरू होता हूँ। तोड़ना ही नहीं था किताबों के दिल, तोड़ना ही नहीं था किताबों के दिल, क्यों पढ़ाया नहीं दीवानों के दिल, खून जितना पिया है पिलाया गया, खून जितना पिया है पिलाया गया, फिर लिखा क्यों नहीं है जवानों के दिल, फिर लिखा क्यों नहीं है जवानों के दिल।
2: वाह।
1: और मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रेरणा से मैंने एक कविता लिखी है, शेरनी, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। घूंघट की लाज रखी घूंघट उतार दई, मीन जैसी आंखों में अंगार भरे सैरनी, आंचल में बांधी सुते ममता बढ़ाए दई, चूड़ियां उतार दई कृपाण लिए सैरनी, पायलन की छनक घोड़न के टाप संग, पायलन की छनक घोड़न के टाप संग, युद्ध के मैदान में बवाल लगे सैरनी, प्रखर प्रचंड रण देख ललकारी जब, अश्व में सवार पाषाण लगे सैरनी, चपला से तेज गति तेज तलवारन की, चपला से तेज गति तेज तलवारन की, पलक झपक धड़ काटती है सैरनी, युगन जुगन की प्यासी धरती की प्यासी, पापियों के खून से बुझाए रही सैरनी, पापियों के खून से बुझाए रही सैरनी, और थोपन और मोतन को ठेंगा दिखाए दे, खुद मुस्काए के चढ़ाए रही सैरनी, खुद मुस्काए के चढ़ाए रही सैरनी, मुंह में लगाम रखी आंखें शिकार करी, मुंह में लगाम रखी आंखें शिकार करी, वे अजब गजब कमाल करे सैरनी, अहे में बहे में तोड़े जान ले वे जान से, अहे में बहे में तोड़े जान ले वे जान से, रूप ऐसा रौद्र का दिखाए रही सैरनी। करतार में हम आपको अयोध्या ले चलते हैं, और अयोध्या में 14 साल पूरे हो चुके हैं, भगवान राम अभी लौट के नहीं आए हैं, तो भरत की जो विरह वेदना है वो हम आपके सामने रखते हैं।

0: बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपका डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी,
1: जी धन्यवाद।
0: शुभकामनाओं के साथ। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच में देश की प्रसिद्ध कवित्री दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी हैं, और आपकी रुचियाँ बहुत सारी हैं। आप कविताएं लिखती हैं, आप गज़ल लिखती हैं, नज्म, मुक्तक, हाइकू, कहानी, लघु कथाएं, नाटक, नुक्कड़ नाटक, ऐसी बहुत सी आपकी रुचियां हैं लेखन के प्रति, और आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको आमंत्रण देता हूँ प्रभाकर माचवे जी की इन चार पंक्तियों के साथ। निर्जन की जिज्ञासा है निर्झर की तुतली बोली में, विटपो के हैं प्रश्न चिन्ह विघों की वन्य ठिठोली में, इंगित है कुछ और पूछ लूं इंद्रचाप की रोली में, संशय के दो कर लाया हूं आज ज्ञान की झोली में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी, आइए अपनी कविताओं से हमारे श्रोताओं का मन मोह लीजिए।
1: बहुत धन्यवाद आकाशवाणी दिल्ली का, मैं बहुत धन्यवाद देती हूं और अपने श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं, नमस्कार करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस अभी अभी बीता है, तो हिंदी हिंद की अभिलाषा है ऐसा मैं मानती हूँ, और भारत माता के मस्तक की बिंदी हिंदी के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ।
2: स्वागत है।
1: हिंदी खड़ी बाजार में मांगे अपना हक, दोयम दर्जा ही मिला अपने घर में नाहक, करे प्रयास सार्थक चुकाए अपना कर्ज, सिर्फ हिंदी दिवस मनाकर ना निभाए अपना फर्ज।
0: वाह बहुत खूब।
1: हिंदी सिर्फ भाषा नहीं हिंदुस्तान की अभिलाषा है, हिंदी सिर्फ भाषा नहीं हिंदुस्तान की अभिलाषा है, रसों की चाशनी में घुली भावों का बताशा है। हिंदी प्रेम का अंकुर है, प्रिय का उज्जवल उर है, संस्कारों की धरती है और मर्यादा का अंबर है। हिंदुस्तान के हृदय का भाव है, शहरों का अदब नेह का गांव है, सरल सुग्राह्य रूप इसका जिसमें ज्ञान का ठहराव है। माँ भारती के गले का हार है, गंगा की धवल धार है, मानस की सरस चौपाइयां भूषण की तीखी कटार है, कृष्ण की बंसी का स्वर शिव धनुष की टंकार है, मीरा की रागिनी मनोहर दिनकर की हुंकार है, महादेवी का राग संचित निराला का राग विराग है, पंत का प्रकृति प्रेम समाहित जिसमें सुभद्रा की सी आग है, और माँ की स्नेह भरी पाती है, माँ की स्नेह भरी पाती है, घर घर की दिया बाती है, संचित संस्कृति अनमोल, हिंदी भाषा नहीं हमारी थाती है। हिंदी भाषा नहीं हमारी थाती
0: है। बहुत खूब, बहुत सुंदर।
1: और कहना चाहती हूँ आप सभी से कि कवियों की कलम उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं, इसी को लक्ष्य में करके मैं कवियों की कलम से एक प्रश्न करती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा।
0: स्वागत है।
1: राग रंग से सजा सजा के नयनों के अभिराम लिखे, मधुर अधर मुस्कानों पर सिंदूरी अरुण ललाम लिखे, लिखा पायल कंगना हार लिखे वही श्रृंगार लिखे, जी हजूरी लिखी सबने दरबारी संज्ञान लिखे, जी हजूरी लिखी सबने दरबारी संज्ञान लिखे,

0: चारी दांव लगा बैठा व्यभिचारी, पोषक पर शोषक के वार, छूटे आंगन टूटे दीवार को आज सच की दरकार है। बोल मेरी कलम लिख सके जो उस सच को, क्या तुझ में वो अंगार है।
1: बहुत खूब।
0: कब तक नर्तक बनकर नक्कालों की जयकार करोगी, या दर्शक बनकर अन्याय स्वीकार करोगी। दिनकर की रणभेरी हो, सुभद्रा की तुम चेरी हो, अब निर्बल में होंकार भरो तुम, दुर्बल की ललकार बनो तुम। जीत लिखो या हार लिखो, पर युग परिवर्तक बन तुम सच हर बार लिखो, तुम सच हर बार लिखो, तुम सच हर बार।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता।
0: और इसी क्रम में मैं और एक अपनी छोटी सी रचना सुनाना चाहती हूँ, यायावर।
1: स्वागत है।
0: यायावर से बीते दिन बंजारों सी ये रातें, दिल आवारा बादल ढूंढे खुशियों की बातें। बढ़ता रहा यूं ही जीवन, ठहरा साल कहीं ये मन, पथरीली राहों पर खोजे समतल सा एक उपवन। मुट्ठी भर सपनों के बीच चाहतों की बरखा से सींचे, उपजे समय की धरा पर नन्ही नन्ही अखियां मीचे। कर कंटक कभी पांव शूल चुभे, कभी हर्षित पुष्प प्रसून खिले। डगर में मिला कभी सूर्य प्रखर, कभी मिला अंधकार गहन। युग पर्व संवत्सर बीते, युग पर्व संवत्सर बीते, आशाओं के समर भी जीते। मिला जो पद पाथे ये मुझे, लगा हृदय स्वीकार किया। मैं पथिक प्रवासी चकित, बहती नदियां सी निरंतर, आदि अंत और अनंत से भ्रमित, सागर में जा मिली चिरंतन, सागर में जा मिली चिरंतन।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपने पढ़ी दीपशिखा श्रीवास्तव दीप जी, और बहुत ही भावपूर्ण आपकी कविताएं, बहुत ही खूबसूरत शब्दावली आपकी, और इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत शाम चल रही है, बहुत ही खूबसूरत कविताओं का आनंद हम सब ले रहे हैं। आशा है कि हमारे श्रोतागण भी इन कविताओं का आनंद ले रहे होंगे। और अब इसी श्रृंखला में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सलोनी चावला जी, और आप देश की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, और आप साहित्य शिरोमणि सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं, अगीत की लेखिका और गायिका हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मैं अदम गोंडवी साहब की चार पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूँ। अचेतन मन में प्रज्ञा कल्पना की लौ जलाती है, सहज अनुभूति के स्तर में कविता जन्म पाती है। उठाता पांव है विज्ञान संशय के अंधेरे में, अचानक उस अंधेरे में ही बिजली कौंध जाती है, अचानक उस अंधेरे में ही बिजली कौंध जाती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सलोनी चावला जी, आइए आपको सुनते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी प्यारी पंक्तियों से बुलाने के लिए, और कला की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए और दिल्ली आकाशवाणी का आभार प्रकट करते हुए श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मैं एक कविता तरन्नुम में पेश करना चाहती हूँ, जो आज के युग में बहुत मायने रखता है।

जीवन भर तेरी शांति को भंग करने वाले, मौत पे तेरी आत्म शांति की अरदास लगाएंगे, मौत पे तेरी आत्म शांति की अरदास

0: बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी पहली कविता थी।
1: बहुत सुंदर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी दूसरी रचना बिना तरन्नुम के सुनाना चाहूँगी।
2: स्वागत है आपका।
0: दुश्मनों में वफा, दोस्तों में बेवफाई देखी है हमने, मरहम में नमक की परछाई देखी है।
2: क्या
0: खींचते
2: बात है।
0: रहे लोग ऊंची लहरों की तस्वीरें, हमने डूब कर समुद्र की गहराई देखी
2: क्या
0: है।
2: बात। वाह।
0: हमने डूब कर समुद्र की गहराई देखी है। खुश नसीब चलते रहे सीधे साफ रस्तों पर, खुश नसीब चलते रहे सीधे साफ रस्तों पर, हमने एक कदम सागर दूजे खाई देखी है।
2: वाह
0: बहुत आई।
2: वाह।
0: वक्त दूर नहीं जब डिजिटल पलंग भी मिलेंगे, बस हम वो जमाना है जिसने चारपाई देखी है।
2: क्या बात है, क्या
0: बस
2: बात।
0: हम वो जमाना है जिसने चारपाई देखी है। आज खरौंदे सिमट गए, आसमां भी हुआ तन्हा, हमने भरे घर में दादी चाची और ताई देखी है।
2: क्या बात।
0: कदम बढ़ाते रहो, बढ़ने का नाम है जिंदगी, हमने रुके हुए पानी में उगती काई देखी है। आज के बालक बहुत ज्यादा समझदार, हमने तो मात पिता की पिटाई देखी है।
2: क्या बात है।
0: हमने तो मात पिता की पिटाई देखी है। क्षमा को मालूम था कि वो बुझ जाएगी, लोगों ने तो सिर्फ लौ की अंगड़ाई देखी
2: अरे
0: है।
2: वाह, क्या बात।
0: लोगों ने तो सिर्फ लौ की अंगड़ाई देखी है। बनी बनाई पोशाकों का दौर है आज, बनी बनाई पोशाकों का दौर है आज, हमने हर घर में कढ़ाई बुनाई देखी है।
2: वाह,
0: हमने हर घर में कढ़ाई बुनाई देखी है।
2: बहुत अच्छे।
0: अमन और शांति बस किताबों में अमर हैं, हवा की नैनों ने देश देश में लड़ाई देखी है। दौलत की कद्र महलों में रहने वाले नहीं करते, करता है जिसने सिक्के सिक्के की कमाई देखी है। काबिलियत जिसमें भी ज्यादा होती है, जमाने ने हमेशा उसी में बुराई देखी है।
2: सही बात है।
0: कर्म फल के तमाचे हल्के नहीं होते जनाब, अच्छे अच्छों की अच्छी खासी धुलाई देखी है। अब अंतिम, न्याय का लफ्ज बेमायने हो गया सलोनी,
2: क्या बात है।
0: निर्दोषों को सजा, दोषियों की रिहाई देखी है। दुश्मनों में वफा, दोस्तों में बेवफाई देखी है हमने, मरहम में नमक की परछाई देखी है। हमने मरहम में नमक की परछाई देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका सलोनी जी, और बहुत ही खूबसूरत कविताएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: आइए, खूबसूरत संचालन कर रहे हमारे सुप्रसिद्ध कवि हिमांशु शुक्ला जी को मैं चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुंदर नहीं गिरता। तो ऐसे ही समुंदर दिल वाले को, हिमांशु शुक्ला जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी दिल्ली का। और जैसा कि बहुत ही खूबसूरत शाम ये रही, हमारे बीच में जो भी कवि कवित्री जुड़े उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी, और जैसा कि मुझे आमंत्रण दिया गया है, और मैं माँ हिंदी को समर्पित अपनी चार पंक्तियां देता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। है शब्द शब्द अर्थपूर्ण, पंक्तियों में सार है, शाश्वत है मात्राएं, व्याकरण अपार है, गद्य पद्य काव्य सब माँ हिंदी के प्रारूप हैं, पर्याय

0: हिंदी अलंकार सब हिंदी के श्रृंगार हैं, सब हिंदी के श्रृंगार
1: क्या
0: हैं।
1: बात,
0: ये
1: बहुत
0: मेरी पंक्तियां माँ हिंदी को समर्पित। और अब मैं सीधे सीधे आपको अपने गीत से जोड़ता हूं,
1: स्वागत
0: इस
1: है।
0: गीत को सुने। मैं

0: तलवारों सी पर मेरे दिल की रानी
1: क्या
0: हो,
1: बात,
2: वाह
1: क्या
0: इस
1: बात है।
0: दोधारी तलवार से मैं, इस दोधारी तलवार

0: हूँ,
1: बहुत बढ़िया,
0: लो
1: बहुत अच्छा।
0: आज अभी कह देता हूँ, मेरी जान मैं तुझ पे मरता
1: बहुत
0: हूँ।
1: बढ़िया, बहुत
0: बहुत
1: ही
0: बहुत
1: बढ़िया।
0: धन्यवाद, ये मेरा गीत था। और आइए अब मैं आपको सीधे द्वापर से जोड़ता हूँ। ये कटाक्ष सुने जो राधा जी का एक कटाक्ष है कन्हैया के लिए। कृष्ण कृष्ण जपती है विरहा में तपती है, ऐसी मेरी राधा रानी दुख नामा लाल है। कृष्ण कृष्ण जपती है विरहा में तपती है, ऐसी मेरी राधा रानी दुख नामा लाल है। अविरल हर पल छलिया को छल छल, उत्तर भी जानती है फिर भी सवाल
1: वाह
0: है।
1: क्या बात है,
0: क्या सवाल है? सवाल ऐसा पूछती है माधव उससे जूझती है, कारी कारी अखियों में लाली माँ बवाल
1: वाह
0: है।
1: बहुत सुंदर।
0: भाग्य खुद लिखते हो भाग्य में ही दिखते हो, भाग्य से ही हारी हूं मैं कैसा ये कमाल है।
1: क्या बात
0: भाग्य
1: है, क्या
0: से ही हारी हूं मैं कैसा ये कमाल
1: बात,
0: है।
1: क्या बात,
0: बहुत
1: अच्छा।
0: बहुत धन्यवाद। मेरे माधव को अक्तर सुनिएगा जो क्या कहते हैं त्रिलोक के स्वामी राधा जी से। राधे राधे चाहूं और राते मध्य भानु भोर, बांसुरी भी कहती है राधा सुर ताल है। राधे राधे चाहूं और राते मध्य भानु भोर, बांसुरी

0: की मिसाल राधा राधा बिन काना आधा, आधे आधे मोहन में राधा ही गोपाल है।
1: क्या बात,
0: भाग्य को क्यों कोसती हो भाग्य।

0: है।
1: अच्छा
0: और एक बहुत छोटी सी अपनी एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देता
1: जी,
0: हूँ। और एक कविता आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे बीच में घटित हो रहा है महिलाओं के साथ में, उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है। और आज के परिवेश में महिलाओं को क्या करना चाहिए, इस कविता के अंत में आपको ये सुनाई देगा। इसका शीर्षक है चूड़ियां गई भाड़ में। इस कविता को सुनिएगा। कुछ नहीं बदला युगों से, हर तरफ शैतान है। कुछ नहीं बदला युगों से, हर तरफ शैतान है। भेष मानुष का धरे हैं, कर्म से हैवान है। जानकी भी त्रस्त थी त्रेता युगी अप कर्म से, द्रौपदी अल्पवस्त्र थी द्वापरी दुष्कर्म से। कलयुगी इस दौर में केशव कहाँ से लाओगे, लुट चुकी अस्मत धरा की क्या नवतलक भी जाओगे। वेद विद्या सब है मिथ्या, ज्ञान का ना मोल है। अगर आत्मा अमृत साधे तो देह भी अनमोल है। न्याय घुट घुट मर रहा इन शकनियों की आड़ में, न्याय घुट घुट मर रहा इन शकनियों की आड़ में। तुम खुद सुदर्शन साध लो अब चूड़ियां गई भाड़ में। तुम ही
1: बिल्कुल
0: दुर्गा शक्ति भी हो, तुम ही दुर्गा शक्ति भी हो। बेवजह क्यों मौन हो तुम, प्राण देह से खींच लो अब और बताओ कौन हो तुम, और
1: बहुत
0: बताओ कौन
1: अच्छा,
0: हो
1: बहुत
0: तुम।
1: सुंदर।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे बीच में हमने बहुत ही खूबसूरत कविताएं सुनी, बहुत ही खूबसूरत गीत सुने। और आज हमारे बीच में जो उपस्थित थे देश के सुप्रसिद्ध कवि कवित्री डॉक्टर ऋषि कुमार मौर्या जी, दीप शिखा श्रीवास्तव दीप जी और डॉक्टर सलोनी चावला जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कविताओं से, अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से श्रोताओं के दिल में उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: धन्यवाद।
1: जी। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे युवा कवि हिमांशु शुक्ला। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम कवि की गोष्ठी का आनंद लिया और अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का और ठीक 9:00 आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर आप उर्दू में खबरें सुन सकते हैं और आज 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक पगली। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 8:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ तलत। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ जो लिया गया है फिल्म फुकरे से और इस गीत को गाया है सोना महापात्रा ने।

नए को पुराना और पुराने को फिर से थोड़ा सा नया कर देने में जो मज़ा है ना, और जो उसकी एक ताजगी बनी रहती है वो ज़बरदस्त है। जैसे इस गीत के जो बोल थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, कहीं उसमें पीछे फोक म्यूज़िक जो है, फोक गीत जो है, जो लोकगीत हैं उसका टच था, लेकिन जो म्यूज़िक था वो आज के दौर का था। तो दोनों को फ्यूजन कर गया कमाल। और अगला गीत जो है वो है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में और फिल्म है एक था टाइगर।

और अब इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे। अब से कुछ ही देर बाद आप मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम में, जो होगा 11:10 पर। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। तो मिलते हैं कुछ ही देर में, सुनते हैं ये आखिरी गीत जो है फिल्म चमेली से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 8:45 होने को हैं और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
5: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
6: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
7: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
6: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
8: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया

0: कि 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. Now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
4: Climate change manav astitv ke anek staron par asantulan paida karta hai. Biodiversity loss, water stress, aur land degradation isse gehrai se jude hai. Water stress wale kshetron mein farm ponds sthaniya samuday ke liye atyant upayogi siddh ho sakte hain. Ye na keval varsha jal ko खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
3: The president said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from the Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
5: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all, but unfortunately your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia, and we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive partnership between the two countries.
3: The Japanese Air Chief appreciated the warm hospitality extended by the Indian side and described the Tejas as a symbol of India's technological innovation and the country's Make in India initiative.
6: I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft born from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
3: The 14-day exercise, which will conclude on Tuesday, focuses on advanced operational missions and extensive professional interactions between the two air forces. The exercise involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30MKI, and Rafale, while Japan is participating with the F-2A fighter aircraft. Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force delivered a breathtaking aerial display featuring 9 Hawk MK-132 aircraft in close formation during an air show held at Meerut in Uttar Pradesh. The two-day air show took off yesterday when Surya Kiran team captivated spectators with a breathtaking display. The defense minister said the air show drew more than 1 lakh spectators. Minister of State for Defense Sanjay Seth witnessed the air show today. Talking to media, the minister commended the team, noting that the air show aims to inspire youth to join the armed forces.
0: सूर्यकरण एरोबेटिक जो टीम है,
7: द सूर्यकरण एरोबेटिक टीम हैज एन इनक्रेडिबल करेज. द वर्ल्ड कंसीडर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू बी आयरन. दे हैव शोन इट इन 800 प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. वी ऑल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. द सेम मोटिवेशन इज गिवन टू द इंडियन एयरफोर्स बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. ही ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ टू मेक द इंडियन डिफेंस सेक्टर्स इंडिजीनियस एंड स्ट्रॉन्ग. द इंडियन एयरफोर्स हैज शोन इट्स करेज टू द एनिमी जस्ट अ लिटिल लेस देन अ ईयर अगो.
8: थोड़ा समय पहले ही अपना शौर्य जो

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबोहवा से मुतालिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी तआवुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरक फजाई मश के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में मास्को और तेल रिफाइनरी पर दागे गए सैकड़ों मिसाइल भी शामिल हैं। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने जापान में अपनी कारकर्दगी का आगाज जीत के साथ किया। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हालिया दिनों में बार बार रूनमा होने वाली कुदरती आफात की वजह से आबोहवा से मुतालिक मजबूत इकदाम और आलमी तआवुन की फौरी जरूरत है, ताकि आबोहवा की तब्दीली के मुजिर असरात से निपटा जा सके। सदर जमहूरिया शाम नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुनक़िदा माहौलियात और आबोहवा के महरिकात के मुस्तकबिल के बारे में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे से खिताब कर रही थी।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है।

0: क्लाइमेट इंपैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं ये क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: सदर मुर्मू ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली से इंसानी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं से अदम तवाजुन पैदा हो रहा है, जिनमें हयातियाती तनव, पानी की दस्तियाबी और जमीनी वसाइल भी शामिल हैं।
0: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: भारतीय फजाइया के सरबराह मार्शल एपी सिंह और जापानी फजाइया JASDF के सरबराह जनरल ताके हिरो मोरिता ने आज जोधपुर में फजाई करतब के दौरान मुल्क में ही तैयार किए गए हल्के जंगजू तैयारे तेजस की परवाज की। दोनों सरबराहान ने ये परवाजें साथ साथ की। दोनों मुल्कों के फजाई सरबराहान ने ये परवाजें भारतीय फजाइया और जापानी फजाइया की मुश्तरका फजाई मश्क वीर गार्डियन 2026 के तहत अंजाम दी। ऐसा पहली बार है कि जापानी फजाइया के जंगजू तैयारे इस दो तरफा मश्क के तौर पर भारतीय सरजमीन पर परवाज कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकत दारी में मजीद गहराई लाना है। फजाइया के सरबराह एपी सिंह ने इस मश्क को भारत जापान दिफाई तालुकात में एक बड़ा संगमील करार दिया है। भारतीय फजाइया के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस की परवाज का जनरल मोरिता का फैसला भारत में तैयार करदा जंगजू तैयारे पर उनके एतमाद की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का फजाई शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसमें तहकीको तरक्की और तैयारे तैयार किया जाना भी शामिल है। वीर गार्डियन 2026 मश्क का आगाज 9 सितंबर को हुआ था और ये 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। भारतीय फजाइया की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में एक फजाई शो के तहत एक सहरंगेज कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 9 हॉक MK-132 तैयारों ने एक दूसरे के काफी करीब रहते हुए करतब पेश किए। दिफाई उमूर के वजीर मुमलिका संजय सेठ ने इस शो का नजारा किया और टीम की यह कहते हुए तारीफ की कि इस फजाई शो का मकसद नौजवानों को तहरीक देना है कि वो फौज में शामिल हों। ये दो रोजा फजाई शो कल शुरू हुआ था। वजारत दिफा ने बताया कि तलबा NCC कैडेट्स और नेशनल सर्विस स्कीम NSS के रजाकारों समेत 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस शो का नजारा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सेठ ने इस तकरीब को उसूल पसंदी, एहतियात से की जाने वाली कार्रवाई, तालमेल के साथ किए जाने वाले काम, पेशावाराना महारत का एक काबिल जिक्र इम्तिजाज और भारतीय फजाइया की शानदार सलाहियतों का एक सबूत करार दिया। उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने आज वाराणसी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान झारखंड की ममनुआ इंतहा पसंद तंजीम तृतीय प्रस्तुति कमेटी TPC के सरबराह ब्रिजेश कंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरदार जी को एक एनकाउंटर में हलाक कर दिया। ब्रिजेश कंझू तकरीबन 2 दहाइयों से मफरूर था। झारखंड पुलिस और कौमी तहकीकती एजेंसी NIA ने उसके ताल्लुक से मालूमात फराहम करने पर मजमूई तौर पर 30,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। उसके खिलाफ अगवा, जबरी वसूली, आतिशजनी, मुजरमाना साजिश और सरकारी मुलाजमीन पर हमलों समेत 50 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे। इन मुकदमात में आम शहरियों और पुलिस एहलकारों की मुबैना हलाकतें भी शामिल थीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने इस एनकाउंटर में शामिल ATS टीम के लिए 2,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। गंजू के लिए ऐलान करदा कुल इनामी रकम में से 25,00,000 रुपए झारखंड पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए गए थे, जबकि NIA ने 5,00,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। यूक्रेन ने रूस पर रात भर 1,000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें मास्को को निशाना बनाकर किए गए सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल हैं। मास्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया है और एक तेल रिफाइनरी और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचने की भी इत्तला है। जनाब सोबियानिन ने बताया कि मास्को के वसी इलाके में इस हमले से 2 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बताया कि उसकी फौजों ने मुल्क में 1,100 यूक्रेनी यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क ने इस हमले में तेल और लॉजिस्टिक ठिकानों पर बहुत से मिसाइल और ड्रोन दागे थे, जिनमें यूक्रेन के अपने बनाए हुए मिसाइल भी शामिल थे। पाकिस्तानी हुकाम ने जेल में कैद साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को आज गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अगले हफ्ते उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई की तरफ से एक मनसूबा बंद एहतजाज से पहले गिरफ्तार किया गया है। अलीमा खान को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। वो अपने 73 साल भाई की रिहाई के लिए मुहिम चला रही हैं, जो 2023 से कैद में हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने पंजाब में अवामी नज्म व नस्क के 1960 के हुक्म इम्तनाई के तहत उन्हें 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। इस कानून के तहत हुक्काम को यह अख्तियार हासिल है कि वो ऐसे अफराद को हिरासत में ले लें जो अवामी जगहों और नज्म व नस्क के लिए खतरे का सबब बन गए हैं। खान की पीटीआई पार्टी साबिक क्रिकेटर और सियासतदान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के मकसद से 27 सितंबर को एक एहतजाज का मनसूबा बना रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। एक ऐसा सफ़र जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इसका सिलसिला जारी है। सेवा से सुशासन के नज़रिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ की खातिर मुसलसल काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे जदीद तरीन और आला मेयार के कन्वेंशन और नुमाइशगाहों के जरिए इस विज़न को किस तरह अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के आलमी मयार के नुमाइश और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में जिनका मकसद भारत को माइस यानी इजलास, तरगीबात, कॉन्फ्रेंसों और नुमाइशों के शोबे में आलमी रहनुमा के तौर पर पेश करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका इलाके में यशो भूमि का इफ्तिताह किया था। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं और 11,000 मंदूबीन की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म ने जुलाई 2023 में भारत मंडपम मुल्क के लिए वक्फ किया था। भारत मंडपम में G20 सरबराह मीटिंग और हाल ही में मुनक़दा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग जैसे अहम आलमी इज्तिमात मुनक़द हो चुके हैं। इसके शानदार हॉल में मजमूई तौर पर 7,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस की गुंजाइश से भी ज़्यादा है। भारत मंडपम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि यह कन्वेंशन सेंटर मुल्क में कॉन्फ्रेंसों से मुतालिक सियाहत को फरोग देगा।
3: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
2: आकाशवाणी से बात करते हुए एक तालिबे इल्म ऋतिक, जिसने भारत मंडपम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है और रजाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दी हैं, बताया कि इस आलमी मयार के मकाम ने भारत में तकरीबात के मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही मुल्क में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े मराकज बन चुके हैं। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 81वें आला सतह के इजलास के दौरान भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस माह की 26 तारीख को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 81वें इजलास के आला सतह के सेशन से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मुख्तलिफ कसीर जहती और दो तरफ़ा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का मौसम खजां का सेशन कल से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। 10 रोज़ा सेशन 7 इजलास के साथ 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सेशन के दौरान हुकूमत मुख्तलिफ कानूनी तजावीज़ पेश करेगी, जिसमें GST से मुतल्लिक तजावीज़, बल्दियाती हुकूमत और तिजारत के तरीक़ेकार शामिल हैं। आज मुल्क भर में संकल्प समारोह का इनेकाद किया गया, जो 100 हफ्ते के नशा मुक्त युवा अभियान के हिस्से के तौर पर था। अभियान का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशे से पाक एक नौजवान बिरादरी तैयार करना था। नौजवानों और खेलकूद की वजारत ने बताया कि इस मुहिम में नौजवानों ने सरगर्म हिस्सा लिया और पूरे मुल्क में 1067 जगहों पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 रोज के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मगरबी

0: बंगाल के गंगा के इलाके, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शुमाल मशरक के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। जापान के शिनागोया में जारी एशियन गेम्स के आज इफ्तिताही दिन भारत ने चांदी के दो तमगे जीतकर एक मजबूत शुरुआत की है। तीन खिलाड़ियों की टीम दर्सा विनोद, एलेवेनिल वेलावीरा और सोनम मास्कर ने खवातीन के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि एलेवेनिल ने भी इनफरादी मुकाबले में एक और चांदी का तमगा हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी है। क्रिकेट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश से 114 रन से जीत हासिल की है। शिफाली वर्मा ने अपने T20 इंटरनेशनल का पहला सेंचुरी, 49 गेंदों पर 100 रन बनाई। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन बनाया। भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाकर बांग्लादेश को 81 रन पर आउट कर दिया। फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेला जाएगा। सुचिका त्रियाल एशियन गेम्स में खवातीन के रवायती 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंचकर मुल्क की पहली एथलीट बनकर तारीख रकम की है। भारतीय खवातीन की बैडमिंटन टीम कजाकिस्तान से 3-0 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हॉकी में मर्दों और खवातीन दोनों टीमों ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की है। मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को पूल ए के मैच में 13-1 से शिकस्त दी, जबकि खवातीन टीम ने अपने पूल बी में उज्बेकिस्तान को 19-0 से शिकस्त दी। टेबल टेनिस में भारतीय खवातीन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से और सिंगापुर को 3-2 से, जबकि मर्दों की टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त दी, लेकिन ईरान से 0-3 से हार गई। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कुदरती आफात के बढ़ते हुए हादसात से निपटने के लिए आबो हवा से मुतल्लिक मजबूत तर कार्रवाई और आलमी ताबुन पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में माहौलियात और आबो हवा के मुहर्रिकात के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। भारत और जापान के फजाई सरबराहान ने जोधपुर में मुश्तरका फजाई मशक के दौरान तेजस तैयारों की परवाजें की। भारतीय फजाइया के सरबराह ने कहा कि भारतीय सरजमीन से जापानी जंगजू तैयारे की अभी तक की पहली परवाज दिफाई ताल्लुकात में एक अहम संगमील है। एक नक्सल कमांडर जिस पर 30 लाख रुपए का इनाम था, वाराणसी में दहशतगर्दी की रोकथाम के उत्तर प्रदेश स्क्वाड के साथ एक झड़प में मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। और एशियाई खेल मुकाबलों में भारत ने निशानेबाजी में चांदी के 2 तमगे जीते हैं। खवातीन की क्रिकेट टीम भी फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक पगली। ये नाटक देवदत्त हरिभाऊ रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर है। हिंदी रूपांतरकार हैं पुरुषोत्तम जोशी और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक पगली।
2: जोशी साहब, आपने कभी लड़कियों का मजाक उड़ाया है, उन्हें छेड़ा है?
3: घोर बेइज्जती।
4: क्यों भाई? बॉस हमें किसी काम लायक नहीं समझता है, पत्नी किसी लायक नहीं समझती। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने जवानी के 4 दिन देखे ही नहीं है?
3: अरे बापट भाई, हमारे बाल सफेद क्या हुए, तुमने हमें पैदाइशी बूढ़ा मान लिया। हाँ। भाई तुम लड़कियों का मजाक उड़ाते हो या नहीं, छेड़ते हो या नहीं?
2: अरे जोशी साहब, हमारी तो उम्र ही है लड़कियों का मजाक उड़ाने की।
3: अच्छा, डॉक्टर ने हमें भी तो मना नहीं किया, क्यों ठीक है ना देशमुख?
4: और क्या। अरे बापट मांजरेकर, हम भी कभी जवान थे।
3: पर दुर्भाग्य से हमारी शादी हो गई। हाँ। और कहानी में सितार की जगह सारंगी ने दे दी। पर भाई वो मजाक उड़ाना या छेड़ना तमीजदारों की तरह होता था, पिटने और गाली खाने वाला नहीं। हाँ।
5: अरे आपके समय की बात अलग थी, अब तो मिलावटी जमाना है।
2: अच्छा जोशी साहब।
3: हाँ।
2: हमारे ये देशमुख साहब कैसे थे? तमीज की कमीज वाले।

0: या हमारी तरह के?
1: ये देशमुख, पूछो मत। तुम्हारे से छोटी उम्र का था तभी से नौकरी कर रहा है।
0: अच्छा,
1: मगर जब ये कुवारा था तब भी इसके अंदर एक शादीशुदा प्रेत की आत्मा बसती।
2: शादीशुदा प्रेत की आत्मा मतलब?
1: मजाल है जो देशमुख ने किसी टाइपिस्ट की तरफ नजर उठाकर देखा।
0: अच्छा,
1: हम भले और हमारा काम भला हो, पर आज ना वो जमाना रहा ना वैसे लोग, अब तो कर्णिक जैसे बंदों से ऑफिस भरा पड़ा है।
2: अरे हाँ जोशी जी, कर्णिक की बात पर याद आया, ये तो बताइए कि बड़े साहब ने कर्णिक को बुलाया किस लिए था?
1: हाँ, बड़े साहब किस लिए बुलाते हैं ये आपको नहीं मालूम? अजी साहेब, बड़े साहब ने बुलाया है तो समझिए कि आज
3: चंपी चंपी बोलो चंपी चंपी।
4: अरे कर्णिक के सामने तो लड़की बैठती है, कहीं उसने कोई शिकायत तो नहीं कर दी कर्णिक के अगेंस्ट?
1: कर्णिक हमेशा मजाक उड़ाता रहता है उसका।
5: अजी साहब, अपने ऑफिस में 4-5 दिन पहले जो एक लड़की आई है ना, वो उसका भी हमेशा मजाक उड़ाता है।
1: कौन सी लड़की?
5: अरे वही जो मांजरेकर के टेबल के बाजू में बैठती है।
4: अरे मिस साने, क्या लड़की है साहब। अरे सच में ऑफिस में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की ने काम नहीं किया कभी।
1: बापट बापट, तुम बता रहे हो या अपने आप को याद दिला रहे हो?
4: बता रहा हूँ जोशी साहब।
1: दिल पर हाथ रखकर इतनी मीठी आवाज में।
4: आप भी ना।
2: अरे चलो भाई चलो, बहुत काम पड़ा हुआ
4: है। चलिए चलिए चलिए, आइए। अरे बस क्यों नहीं आ रही है? जोशी साहब, जोशी साहब।
1: हाँ बोलो बोलो करने।
4: हमारे ऑफिस में वो जो नई लड़की आई है ना, मिस साने। हाँ हाँ मिस साने। अजी साहब, वो हाफ मैड है। हाँ हाँ हाफ मैड।
1: कैसे?
4: तुम्हारे थोबड़े पर कुछ दे मारा क्या उसने करने का? अजी साहब, बड़ी अजीब लड़की है।
5: अरे आखिर हुआ क्या?
4: अरे बात ऐसी हुई कि कल मैं लंच ब्रेक में आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में वो मुझे मिली, उसकी तरफ देखकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, डार्लिंग करने, तुम मुझे बहुत पसंद हो, चलो ना हम शादी कर ले, हाँ कहीं दूर भाग जाए, और मेरे गले में बाहें डालने आगे बढ़ी। अरे मैं तो इतना घबराया कि बस, आप ही कहिए कोई ठीक ठाक लड़की ऐसा करेगी क्या? अरे पगली है वो पगली।
2: अरे तुम भी बड़े फेंकू हो करने का
4: है?
2: किसी भी शरीफ सभ्य स्त्री का अपमान करके तुम्हें बहुत आनंद आता है।
4: मिस्टर मंजरेकर, मैं तो मिस साने के बारे में बात कर रहा हूँ, और मिर्ची आपको लग रही है, है? कोई लगती है क्या तुम्हारी?
0: अरे करने, एक वो मांजरेकर की टेबल के पास बैठती है, इतना संबंध काफी नहीं है क्या?
2: देख करणिक, लगती तो कोई नहीं है, मगर तुम किस किस्म के आदमी हो ये पूरा ऑफिस जानता है। हर लड़की के बारे में तुम्हारे विचार बड़े ही ऊंचे होते हैं। तुम में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है। मिस साने पगली है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास?
4: सबूत? मेरे पास सबूत है, पूरा पूरा सबूत है।
2: तो दीजिए ना सबूत।
4: आपके सामने जो मिस्टर बापट है ना, आप उनसे ही पूछ कर देखिए।
2: बापट, तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
0: अब
2: कर्णिक सही कह रहा है?
0: हाँ मांजरेकर, कर्णिक का कहना सही है, मिसाने एक पगली है भाई, ये बात सच है। मैं सबसे बताना तो चाहता था कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई।
5: क्या कह रहे हो, मिसाने पगली है? तुम्हारे साथ क्या किया उसने?
4: अब मिस्टर मांजरेकर, आपके टेबल के नजदीक वो जरूर बैठती है, लेकिन याद रखना, उससे ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाना, उससे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ना। पगली है वो, और पागलों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा।
1: हे भगवान, नियति भी क्या क्या खेल दिखाती। भाई कौन सोच सकता था कि इतनी सुंदर लड़की पगली होगी। बेचारी। चलो भाई चलो दोस्त।
2: जोशी जी आप मेरे पास आ गए। मैं

0: अरे भाई अनारकर
1: जी सर,
0: जरा इधर आओ।
1: जी सर,
0: ये लो ये फाइल बड़े साहब के पास ले जाना और मेरे लिए एक गिलास पानी भी ले आना।
1: जी अच्छा।
2: एक्सक्यूज मी मिस्टर मांजरेकर।
0: जी आपने मुझसे कुछ कहा?
2: जी माफ कीजिए, मैं आपको कुछ तकलीफ दे रही हूँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगे?
0: काम?
2: जी ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ही नहीं मिल रहे, आप जरा देखिए ना इस फाइल को। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं?
0: किधर? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कह रही थी आप?
2: नंबर्स मैच ही नहीं हो रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो कृपया मेरी मदद कीजिए ना।
0: जी फाइल कहाँ है?
2: ले लीजिए।
0: एक मिनट है। हाँ ये देखिए, ये रही गड़बड़ी।
2: कहाँ? ये?
0: हाँ हाँ हाँ ये और ये जो, हाँ नीचे, ये हैं आपके मिसिंग नंबर्स।
2: अरे वाह, इतनी जल्दी मिल गए। मैंने 4 बार रिकैलकुलेशन किया और इस गलती पर ध्यान ही नहीं गया मेरा तो।
0: इसमें सब अटकते हैं, अनुभव से आता है ये, जल्दी सीख जाएंगे आप। ये आपकी फाइल।
2: थैंक यू।
0: नहीं नहीं थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे 6:30 बज भी गए। अच्छा मिस सानी, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ, कल मिलते हैं।
2: मिस्टर मांजरेकर एक मिनट रुकी है।
0: जी
2: मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ?
0: मेरे साथ मगर मैं।
2: चलिए मिस्टर मांजरेकर आइए।
0: जी जी जी

0: उसे आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं?
1: कोई 2 वर्षों से। क्यों पूछ रही हैं आप?
0: नहीं कुछ नहीं, यही पूछा। अच्छा ऑफिस है।
1: हाँ वो तो है, और सबसे अच्छी बात यह है कि 11:30 बजे से ऑफिस शुरू होता है, सुबह के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और शाम के पीक ट्रैफिक की भीड़ से भी।
0: ये तो है, कोई चाहे तो सुबह किसी दूसरी जगह भी काम कर सकता है।
1: आप बस कहाँ से लेती हैं?
0: मैं तो वो मंदिर वाले स्टैंड से लेती हूँ।
1: अच्छा हाँ। मैं उल्टी साइड वाले स्टैंड से लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर है? नमस्ते।
0: माफ कीजिए मिस्टर मांजरेकर, यदि आपको कुछ असुविधा ना हो तो हम कहीं चाय पी सकते हैं? आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है।
1: बस यार वो मुझे आज
0: क्यों वाइफ ने आज जल्दी बुलाया है आपको?
1: नहीं वाइफ ने नहीं, वो मेरी दीदी ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है, कुछ काम था। अच्छा आज्ञा दीजिए हैं।
0: अच्छा
1: जी जी कल मिलते हैं।
0: बाय
1: बाय बाय बाय बाय। ईश्वर मलाटली। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी
2: आई।
3: अरे सचिन बहुत देर लगा दी आज तूने।
1: हाँ दीदी जरा देर हो गई। अरे ये क्या दुकान खोल रखी है?
3: हम बच्चों के पेपर से जांचने बैठी थी। अच्छा तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। अभी लाती हूँ। हाँ। ये ले चाय।
1: दीदी
3: क्या हुआ?
1: दीदी अब तुम अपनी नौकरी छोड़ दो।
3: हाँ नौकरी छोड़ दो? सचिन बेकार की बातें मत कर। नौकरी छोड़कर घर बैठी बैठी क्या करूंगी? समय बिताने के लिए तो मैं नौकरी करती हूँ।
1: दीदी मगर तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है?
3: अरे उसमें काहे की तकलीफ, अब तो आदत हो गई है मुझे। जब से सवेरे का स्कूल हुआ है ना, क्या बताऊं, दोपहर काटने मुश्किल हो जाती है।
1: दीदी तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, मुझे पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तुमने
3: शादी तक नहीं की, मेरे सुख के लिए तुमने इतने दुखों के पहाड़ सिर पर उठा लिए वगैरह वगैरह। क्यों रे कैसी बच्चों सी बातें कर रहा है?
1: दीदी तुमने आज तक जो किया वो बहुत हुआ।
3: अच्छा अच्छा
1: लेकिन अब और नहीं, मेरी तनख्वाह इतनी तो है कि हम दोनों का निर्वाह अच्छी तरह हो सकता है ना?
3: ठीक है लेकिन मिस्टर सचिन मांजरेकर जी घर में आपकी स्थिति का दिल नहीं लगता, इसीलिए वो नौकरी करती है।
1: मगर मैं चाहता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो।
3: अच्छा तू कहता है तो नौकरी छोड़ दूंगी बस।
1: सचमुच?
3: बस रे तेरी शादी हो जाए, तेरा संसार बस जाए, फिर तू बाप बन जाए और मैं तेरे बच्चों को गोदी में लेकर लोरियां सुना सुना कर दिल बहला लूंगी।
1: दीदी क्या कह रही हो तुम? अपना सारा जीवन क्या मुझ पर उपकार करने में बिता दोगी?
3: सचिन अपने छोटे भाई पर कैसा उपकार है, हम दो ही तो बचे हैं परिवार में। अच्छा सुन अब तू शादी कर ले ठीक। कहीं लड़की भी देखी है या नहीं?
1: क्या कहती हो दीदी, मेरे लिए लड़की देखना तो तुम्हारा काम है।
3: पगला कहीं का।
1: पगला?
3: अरे
1: कोई
3: लड़की पसंद तो नहीं कर रखी है तूने जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
1: नहीं दीदी ये क्या बोल रही हो तुम, सच बताऊं जब तुमने मुझे पगला कहा तो मुझे कुछ याद आ गया।
3: क्या?
1: दीदी 15 दिन हुए हमारे ऑफिस में एक नई लड़की आई है, दिखने में सुंदर है, काम भी बड़ी अच्छी तरह से करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कहते हैं कि वो पगली है।
3: पगली?
1: हाँ दीदी, खूबसूरती और पागलपन का ये मेल कुछ अजीब सा लगता है।
3: लेकिन सचिन हर कोई उसे पगली क्यों बोलता है रे?
1: दीदी अगर वो हर किसी से ये पूछती फिरे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तो पागल ही समझेंगे ना। अरे
3: ऐसा क्या?
1: अभी तक तो मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मेरे ऑफिस के कर्णिक और बापट से उसने पूछा था।
3: बड़ी विचित्र सी लगती है लड़की, उसको नौकरी ऐसे मिल गई भाई।
1: दीदी यही तो मेरी समझ में भी नहीं आया। कहते हैं कि उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था और हमारे साहब उस पर बहुत ही खुश हुए। जाने दो ना। खैर दीदी, तुम्हारे स्कूल में एक टीचर की जरूरत थी ना, वो बापट बोल रहा था कि उसकी चचेरी बहन।
3: देर हो गई है रे, कल ही एक टीचर को अपॉइंट कर लिया है। बहुत अच्छी है, BA BT, नाम भी बहुत प्यारा सा है, विभावरी। विभावरी साने।
1: साने? विभावरी साने? दीदी मैं अभी जिस लड़की के बारे में बता रहा था ना, वही ऑफिस वाली पगली।
3: हाँ हाँ।
1: उसका पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, मगर सब उसे मिस साने ही कहते हैं।
3: तुम्हारी मिस साने होगी पगली, मगर हमारी विभावरी साने पगली नहीं है। वो तो बहुत समझदार और संस्कारी है। और हाँ, खूबसूरत भी बहुत है।
1: अच्छा, अजीब संयोग पर संयोग है। आपके यहाँ भी मिस साने, मेरे यहाँ भी मिस साने, एक ही दिन में 2 साने।
3: सुन सचिन, विभावरी साने अभी अनमैरिड है। बात चलाऊं?
1: लो, अभी तो मैं 2-2 साने के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया हूँ। और तुम हो कि 1 साने को घर में दुल्हन बनाकर लाने के चक्कर में पड़ गई। दीदी साने के बाकी गाने हम फिर किसी दिन गा लेंगे ना।
3: अरे जाकर देख ले एक बार उसका घर। पता है उसका मेरे पास। एक काम कर, परसों रविवार है, है? विभावरी के घर हुआ।
1: पागल तो नहीं हो गई हो? वहां जाकर क्या बोलूंगा मैं दीदी? विभावरी जी, मेरी दीदी आपसे मेरी शादी करवाने की सोच रही है, मैं इसलिए आपका घर देखने आया हूँ। क्या सोचेगी वो?
3: अरे पागल, तू बोलेगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की तलाश है, इसलिए आपके पास आया हूँ।
1: ये लो जी, अब मेरी बेटी भी पैदा करवा दी, शादी तो होने दो मेरी।
3: इसीलिए तो कह रही हूँ, रविवार को विभावरी साने का घर देखा। अरे मिल तो आ, वरना तेरी वाली मिस साने जैसी ना मिल जाए कोई। और हाँ हाँ सुन, याद आया, एक फाइल भी मंगवानी है उसके पास से। उसी को लाने के लिए मेरा दूध बनकर चले जाना।
1: अच्छा बाबा, चला जाऊंगा। क्या बनाया आज खाने में?
3: तेरी पसंद की सब चीजें बनाई है, चल आ जा।

0: यस
1: मेरा नाम सचिन मांजरेकर है।
0: सचिन तेंदुलकर को तो मैं जानती हूँ, महान क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। संजय मांजरेकर जी को क्रिकेट की कमेंट्री करते देखा है। आप तो आधा उधर के और आधा इधर के हो गए। देखिए मिस्टर, आधा वो आधा ये, अगर आप कोई सामान बेचने आए हैं तो यहाँ आपकी कोई दाल नहीं गलने वाली। दीदी आपको देखते क्या बोलेगी मालूम? आगे जा रहे बाबा।
1: आपकी दीदी विभावरी साने ऐसा बोलती है मुन्नी।
0: अच्छा, तो आप मेरी दीदी को जानते हैं?
1: वो घर पर है क्या?
0: वो घर पर तो नहीं है, आने वाली होंगी। लेकिन उनके आने से पहले मैं एक बात हमेशा के लिए क्लियर कर दूं कि मेरा नाम मुन्नी नहीं सुरेखा है। क्या नाम है मेरा?
1: सुरेखा।
0: वेरी गुड मेमोरी, गुड बॉय।
1: थैंक यू।
0: अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि दरवाजा खोलो?
1: जी।
0: तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जब दीदी घर में नहीं होती तो मैं यूं ही ग्रिल के अंदर से बात करती हूँ।
1: ओ।
0: अनजान लोगों के लिए दरवाजा खोलने का मतलब है रात में क्राइम सीरियल में आपकी खबर। आप भी नहीं खोलना?
1: कभी नहीं खोलूंगा। क्या तुम विभावरी साने की बहन हो?
0: हाँ, लेकिन मैं उन्हें विभावरी साने नहीं दीदी कहती हूँ।
1: अच्छा अच्छा, बड़ी होशियार हो तुम।
0: ये तो मुझे मालूम है।
1: अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम?
0: क्योंकि मैं होशियार हूँ।
1: हाँ ठीक है। अच्छा सुरेखा, ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी कब लौटेंगी?
0: बस अब वो आती ही होंगी, वो कह गई हैं कि जल्दी लौटूंगी। हमारी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती, अगर मिठाई लाऊंगी ऐसा कहती है तो वो जरूर ले आती है। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, और अगर रुकना है तो बातें करते हैं तब तक, ठीक?
1: एकदम ठीक।
0: तो आपको रुकना है, चलिए बातें करते हैं फिर। नाम तो आपने बता दिया।
1: हाँ।
0: आप रहते कहाँ हैं? आप काम क्या करते हैं?
1: मैं यही मुंबई में रहता हूँ, और काम तो तुम्हारी दीदी को ही बताऊंगा। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हारी दीदी जल्दी आएंगी या मैं जाऊं?
0: देखिए, दीदी कहती है किसी पर अपनी इच्छा कभी लादनी नहीं चाहिए। आपको जाना है तो जाइए।
1: अच्छा सुरेखा, दीदी स्कूल गई है क्या?
0: अरे आज तो रविवार है, आज क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगी? हाँ। रविवार को छुट्टी होती है।
1: सॉरी, भूल गया था।
0: फिर तो आप सुबह योगा किया करें, याददाश्त ठीक होती है। आपका नाम सचिन मांजरेकर है ना?
1: हाँ।
0: मैं आपको कैसे बुलाऊं? आपका नाम तो ले नहीं सकती, मेरी दीदी ने कहा है
1: कि बच्चे बड़ों के नाम नहीं लेते, यही ना?
0: हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम?
1: क्योंकि जैसे आपकी एक दीदी है ना, वैसे ही मेरी भी एक दीदी है।
0: आपकी भी बड़ों की भी दीदी होती है?
1: हाँ।
0: गुड। दीदी, मेरी दीदी आ गई। दीदी ये है
2: मिस्टर मांजरेकर।
1: मिस साने,
2: आप यहाँ

0: यहाँ?
1: आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ रहती हूँ?
0: देखिए सच कहूँ, मैं तो विभावरी साने से मिलने आया था, लेकिन तुम अब आप मुझसे गलती हो गई। ऑफिस में आपको सब मिस साने कहकर पुकारते हैं, आपका पूरा नाम मुझे मालूम ही नहीं था।
2: दीदी ये बड़ी अजीब बातें करते हैं कि इनकी भी दीदी है और इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती है। मैंने जब इनसे पूछा कि मैं इन्हें क्या कहकर बुलाऊं तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया।
1: सुरेखा तुम अंदर जाओ। मिस्टर मानसिकर आइए, अंदर आइए।
0: थैंक यू।
1: आइए बैठिए। आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया?
0: स्नेहलता मांजरेकर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ऑफिस की फाइल के लिए। नहीं नहीं, ट्यूटर के लिए नहीं, फाइल ट्यूटर।
1: स्नेहलता मांजरेकर आपकी?
0: वो मेरी दीदी हैं।
1: ओह अच्छा। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो?
0: आपके बारे में।
1: मेरे बारे में क्या
0: सोच रहा था? कि
1: मैं दो जगह नौकरी क्यों करती हूं?
0: जी
1: अपना संसार चलाने के लिए। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और छोटे भाई बहनों की शिक्षा का भार मुझको ही उठाना है।
0: मैं समझ सकता हूं, मेरी दीदी ने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और आज भी कष्ट उठा रही हैं। दुनिया के सारे कष्ट उन्होंने अपने हिस्से में रखकर मुझे सुखी बनाया।
1: परिस्थितियों के आगे हर किसी को माथा झुकाना पड़ता है।
0: ठीक कहा, दीदी कहती हैं परिस्थितियों के प्रवाह में बहते चले जाना ही जीवन है। एक बात पूछूं मिस साने
1: जी,
0: करणिक और कुछ और लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: कहते हैं कि आप आप
1: पगली हैं।
0: जी
1: ठीक है, तो कहते हैं
0: यानी सचमुच आप
1: करना पड़ता है, करना पड़ता है अपने आप को अपने कर्तव्य के पथ पर सजग बनाए रखने के लिए, करना पड़ता है सचिन।
0: मैं समझा नहीं।
1: सुंदरता कभी कभी अभिशाप भी बन जाती है। कर्णिक और बापट जैसे लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे उन जैसे लोगों से खुद को बचाने के लिए कुछ अजीब सी हरकत करनी पड़ती है। और दूसरी बात है कि इससे मुझे लोगों से अलिप्त रहने में आसानी होती है। सोचो अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जिसे मेरे कर्तव्यों का पथ स्वीकार ना हो, मेरी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो, तो क्या होगा? सिर्फ अपनी खुशी के लिए मैं इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। मैं
0: लेकिन लोग तो पगली समझते हैं तुम्हें।
1: मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे अपने छोटे भाइयों और बहनों से वास्ता है। क्या आप भी मुझे पगली समझते हैं?
0: नहीं, मुझे इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ और इसी वजह से कर्णिक से झगड़ा भी हुआ था।
1: मेरे लिए
0: मिस साने, मुझे अब आपके बारे में सोचकर अजीब लग रहा है। दुख भी, सहानुभूति भी, इज्जत भी, सम्मान भी।
1: और कौन है? बोलो।
0: विभावरी, मेरी दीदी का एग्जाम्पल मेरे सामने है, जिसने अपने भाई के लिए अपना जीवन मिटा डाला, और शायद तुम भी उसी रास्ते पर हो। विभावरी एक बात पूछूं? मुझसे शादी करोगी?
1: सचिन
0: मुझे भी तुम अपने कर्तव्य में हिस्सा लेने की स्वीकृति दो। तुमको अपने परिवार में पाकर मेरी दीदी को बहुत खुशी होगी, सुख पहुंचेगा। और फिर अरे
1: आप भी पागल हैं।
0: पागल?

0: आप पागल? क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछने की वजह से लोग मुझे पगली कहते हैं, और अब तुम भी।
1: विभावरी, तो फिर क्या सोचा तुमने?
0: दीदी से भी तो पूछ लेना चाहिए ना।
2: सच? विभावरी, मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ।
0: सचिन,
1: विभावरी, क्या हम दीदी के पास अभी चल सकते हैं?
0: अभी?
2: हाँ अभी।
0: ठीक है, चलो।
1: लेकिन वहाँ हंसने का पागलपन मत करना।
0: हाँ, तुम भी ये फाइल ट्यूटर मत करना।
1: नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। चले।
3: पगली, अभी आप ये नाटक सुन रहे थे। ये नाटक देवदत्त हरिभाव रुकड़ीकर के लिखे मराठी नाटक बेड़ी का हिंदी नाट्य रूपांतर था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। जोशी की भूमिका में थे कीमती आनंद, देशमुख अशोक मलकानी, बापट राजेश काम्बोज, स्नेहलता सुचित्रा गुप्ता, मांजरेकर अनुराग अरोड़ा, कर्णिक संजय वर्मा, विभावरी साने कुमकुम जैन, और सुरेखा की भूमिका में थी बेबी सारा माइणकर। प्रस्तुतिकरण सहयोग शिवाली का था और इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: यह आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में हम आपको वी आर नटराजू और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत नाद स्वरम वादन सुनवा रहे हैं। वी आर नटराजू कर्नाटक के कोलार जिले के बेथ मंगला के एक प्रतिभाशाली नाद स्वरम वादक हैं। आप एक समृद्ध और विशिष्ट संगीत परंपरा वाले परिवार से आते हैं। बहुत कम उम्र में ही आपका संगीत से परिचय हुआ। आपके पिता विद्वान वी रमेश आपके प्रथम गुरु रहे और उन्होंने नटराजू के संगीत व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता के मार्गदर्शन में आपने न केवल नादस्वरम वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि कर्नाटक शास्त्रीय गायन का भी अभ्यास किया, जिससे शास्त्रीय संगीत की मूलभूत अवधारणाओं में आपकी मजबूत नींव तैयार हुई। नादस्वरम परंपरा के प्रति अपनी गहरी रुचि और समर्पण के साथ वी आर नटराजू ने आगे चलकर कई प्रतिष्ठित गुरुओं से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। वी आर नटराजू आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। 25 वर्षों से अधिक समय से वे मंच पर सक्रिय हैं और नादस्वरम की परंपरा के एक समर्पित साधक के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। आपकी प्रस्तुतियां अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर हुई हैं। आपने देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रसिद्ध नादस्वरम और तविल विद्वानों के साथ संगत करने का भी गौरव प्राप्त किया है। संगीत के प्रति आपकी निष्ठा और योगदान को अनेक पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज की प्रस्तुति में आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू नादस्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी। वी आर नटराजू इज एन accomplished नादस्वरम आर्टिस्ट फ्रॉम बेतमंगला इन कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। बिलोंगिंग टू अ फैमिली विद अ स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल ट्रेडिशन ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू म्यूजिक एट अ वेरी यंग एज। हिज फादर विद्वान वी रमेश was his first guru and played a significant role in shaping his musical personality. Under his father's guidance, V.R. Nataraju received training not only in Nadaswaram but also in Carnatic vocal music, developing a strong foundation in the fundamentals of classical music. With a keen interest and dedication towards the Nadaswaram tradition, V.R. Nataraju subsequently pursued advanced training under several eminent masters. V.R. Nataraju is an A-grade artist of Akashvani Bengaluru. His performances have been presented at important platforms. He has also had the privilege of accompanying several celebrated Nadaswaram and Tavil Vidwans across different parts of India. His dedication and contribution to music have been recognized through several awards and honors. In tonight's performance, he is accompanied on special tavil by S. Sudhakar.
0: वी आर नटराजू और उनके साथी अपने नादस्वरम वादन का आरंभ त्यागराज स्वामी की रचना अभिष्ट वरदा से कर रहे हैं। यह रचना राग हंसध्वनि और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी बिगिन देयर नादस्वरम रिसाइटल विद अभिष्ट वरदा, a composition of Tyagaraja Swami set in Raga Hamsadhwani and Adi Tala.

0: अगली प्रस्तुति है त्यागराज स्वामी की रचना शशि वदना, जो राग चंद्र ज्योति और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज शशि वदना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी सेट इन राग चंद्र ज्योति एंड आदि ताला।

0: रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं वी आर नटराजू और उनके साथियों का नाद स्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर एस सुधाकर संगत कर रहे हैं।
1: इंदी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नाद स्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी। ही इज अकंपनीड ऑन स्पेशल तविल बाय एस सुधाकर।
0: अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए वी आर नटराजू और उनके साथी अब प्रस्तुत कर रहे हैं सामगान प्रियकरम। यह गुरु सूरजानंद की रचना है जो राग कीरवाणी और मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस वी आर नटराजू एंड पार्टी नाउ प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद सेट इन राग कीरवाणी एंड मिश्र छापुताला।

0: वी आर नटराजू और उनके साथ ही अपने वादन का समापन लोकप्रिय कन्नड़ भक्ति रचना गोविंदा निन्ना से कर रहे हैं। इस रचना के रचयिता महान संत कवि पुरंदर दास हैं। यह राग जन सम्मोदिनी और आदि ताल में निबद्ध है।
1: वी आर नटराजू एंड पार्टी कंक्लूड देयर रिसाइटल विद द पॉपुलर कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन गोविंदा निन्ना कंपोज्ड बाय ग्रेट सेंट पोएट पुरंदरदास सेट इन राग जन सम्मोधिनी एंड आदिताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपने सुना वीआर नटराजू और उनके साथियों का नादस्वरम वादन। आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदि रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू नादस्वरम रिसाइटल बाय वीआर नटराजू एंड पार्टी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
4: The Japanese fighters have...

0: ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडियन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
2: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
4: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Garjan 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." The Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Brijesh Ganju alias Gopal Singh Bokta was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly 2 decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion, and targeted attacks on security forces. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly Constituency has clarified the details, facts and documents furnished by Election Commissioner of India, Dr. Sukhbir Singh Sandhu, has already been duly verified. The Electoral Registration Officer said the electoral entry of Dr. Sandhu has been validated and retained for inclusion in the final electoral roll of Assembly Constituency 38, Delhi Cant, which is scheduled for publication on 4th November. Indian Institute of Corporate Affairs, IICA, organized an insightful session today in Insolvency and Bankruptcy Code as an evolving law through the amendments in Manesar, Gurugram. The Ministry of Corporate Affairs said that the session rendered valuable insights over the dynamic nature of insolvency law, relationship between legislation, subordinate legislation and market developments. The ministry informed that the session was attended by former chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, Dr. M.S. Sahu, and DG and CEO IICA, Gyaneshwar Kumar Singh, among other key dignitaries. India made a strong start at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning 2 silver medals in shooting on the opening day today. Trio of Elavanil Velarivan, Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10-meter air rifle team event, while Elavanil added another silver in the individual event. The President and Prime Minister have congratulated the athletes on the feat. Sujika Tarial created history, becoming the country's first athlete to assure an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60 kg semi-finals. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11:10 हो चुके हैं और शुरुआत हो चुकी है मेरी आवाज़ के साथ ही आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। और आज का ये जो कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, इसे लेकर आई हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं, आपका मैसेज हम तक कैसे आ सकता है। तो आपको करना होगा हमें ईमेल, और ईमेल के लिए ईमेल एड्रेस दरकार है। तो हमारा ईमेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। ip.radio.delhi@gmail.com हमारा वो मेल आईडी है जिसके ज़रिए आप अपनी बात, अपनी फरमाइश, अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत संगीतमय सफर की, इस बेहतरीन गीत के साथ जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी ने।

0: तुम जमाने की राह से आए,
1: तुम
0: जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता मेरे दिल का। कई बार ऐसा होता है कि सामने रास्ता दिख रहा है और उसके उस पार मंजिल भी नजर आ रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप अपनी मंजिल तक वो रास्ता इख्तियार न करने के बजाय किसी दूसरी राह पर चल पड़ते हैं। कोई और पगडंडी आपके सामने आ जाती है और आपको लगता है कि नहीं, ये वाला जो रास्ता है ये बहुत आसानी तक हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा देगा, लेकिन आधा रास्ता गुजरने के बाद या फिर कोई मोड़ आ जाने के बाद एहसास होता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, जो सामने दिख रहा था वही तो सीधा रास्ता था जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकता था।

और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खुदा जाने, यही दिल में ख्याल आता है कि ना जाने क्या हो गया है, खुदा जाने। आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पल आपको मिल जाते हैं, आप उन पलों को जी जाते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होता। उनका तस्वुर कभी ख्याल में आया हुआ होगा और वो बस कहीं एक बुलबुले की तरह गायब हो गया होगा। लेकिन ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये जो हमारी डेस्टिनी है, वो कभी कभी उस बुलबुले को जो हमें लगा कि वो आया और वो ख़त्म हो गया, उसे एक ऐसा रूप दे देती है कि आप उस रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं। आप उस शख्स को देखकर हैरान हो जाते हैं जिसको देखने के लिए या मिलने के लिए आपकी ख्वाहिश रहती है, लेकिन वो ख्वाहिश कहीं दबी दबी सी रहती है और अचानक आपकी ख्वाहिश वो पूरी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो जाता है हर एक किसी की ज़िंदगी में। और अब जो हम गीत सुनाएंगे आपको, उसके बाद आपके लेंगे मैसेजेस बहुत सारे।

और अब वायदे के मुताबिक वक्त हो गया है आपके मैसेजेस शामिल करने का। और सबसे पहले जो हमें मैसेज मिला है, ये मिला है दिल्ली से, नई दिल्ली से हमें ये मैसेज आया है। और ये मैसेज लिखने वाली हैं फरहत खान, नुसरत खान, और उनके साथ है मसरत जहां। और दिल्ली से ही हमें एक और मैसेज आया है, ये लिखने वाली हैं सतबीरी, मोहित, राकेश, मीनू और विजयपाल। अगला मैसेज हमारे पास आया है संभल से, लिखने वाले हैं छोटे अंसारी, और आपके साथ हैं असद अंसारी आलम, और आपने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। वसंत कुमार सिन्हा हमें मैसेज कर रहे हैं बेंगलुरु से, और आपने हमें मैसेज किया है कि आप सुनना चाहते हैं एक गीत। आपके साथ है अजय कुमार गुप्ता, बेबी अनविका और तनुश्री गुप्ता। अगला मैसेज हमारे पास आया है दिलावर खान का, रघुवीर नगर दिल्ली से, आपके साथ है हसीना बानो, अलीजा नयाब और लड्डू। आपने

रहा है कि किसी भी गीत में आपको शामिल कर लिया जाए। चंडीगढ़ सिटी से हमें मैसेज कर रहे हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और सतीश जी, आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है, कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरा किया जाए। मोहाली चंडीगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आपकी फरमाइश भी पहुंच चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ये कार्यक्रम ज़रूर सुन रहे होंगे, अपनी फरमाइश के गीत भी आप सुन पा रहे होंगे। नागपुर से हमारे पास अगला मैसेज आया है देवेंद्र भटकर और सुशीला अंकिता अनिकेत भटकर का। और भी बहुत से मैसेजेस हैं, लेकिन सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, फिल्म है ठोकर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर, जो है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है पंजाब के नवांशहर से। लिखने वाले हैं गगनदीप थांडी और तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी। और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है थांडी परिवार। मैसेज हमारे पास आया है अनिल कुमार गौहानकर का और आप हमें महाराष्ट्र उमरखेड़ा से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं अभिजीत, सरिता, एकांश और बदलापुर मुंबई से हैं प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन और टुकटुक। नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश, एकांश, सुमित, कुमारी, ध्वनि और परी। मैसेज हमारे पास अगला है, यही एक मसला है कि बहुत सारे लोग एक ही मैसेज को बार बार लगातार करते हैं तो नाम ज़रा ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैसेज हमारे पास आया है अनारकली बाज़ार जगराऊं से और लिखने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा गव्या और सुच्चा सिंह पाठक। अगला मैसेज जो मेरी आंखों के सामने है वो है मऊ से। लिखने वाले हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू और उनका पूरा परिवार। मैसेज जो है अब वो है संतोष जी का और आप हमें अकोला से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं गीता, भूषण, विजया और समस्त धर्मकार परिवार। मैसेज अब हम लेते हैं किसका जी। अगला मैसेज है नेपा नगर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। मेहर अरोड़ा ने हमें मैसेज किया है राजस्थान श्री गंगानगर से। आपके साथ है ममता, कीर्ति, भूमिका और मैसेज की फहरिस्त आगे लंबी होती जा रही है। अगला मैसेज है हमारे पास बीड शहर से, महाराष्ट्र से। आप हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी और अंजलि करवा, बाला साहेब करवा। और उम्मीद है नंदकिशोर जी कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे, आपने अपनी फरमाइश भी सुन ली होगी।

हिसार से हमें मैसेज कर रहे हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और आपने बहुत ही खूबसूरत सी एक बात कही है, कोई भी गीत, ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। इससे क्या होता है ना कि जो बहुत अच्छे गीत होते हैं उस सभी आप सुन पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होते। ऐसा मेरे साथ भी होता है, बहुत से ऐसे गीत आप लोग फरमाइश के तौर पे हमारे पास भेजते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुने होते हैं। आपकी फरमाइश से हमें पता चलता है कि अच्छा ये गीत भी बहुत अच्छा है। अगला मैसेज हमें पंजाब से आया है, और वो पंजाब से मैसेज जो आया है वो इधर उधर हो गया है। अगला मैसेज है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, लिखने वाले हैं अनिल कुमार और उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, अनिल मोहन ने हमें मैसेज किया है। हिमकेश्वर साहू ने मैसेज किया है छत्तीसगढ़ से, आपके साथ हैं करण राहुल और चंपा साहू। प्रमोद बगाड़े जी ने हमें मैसेज किया है, और आप नांदुरा से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं वर्षा, प्रतीक, संकेत, और आपकी गीत की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। अक्रम हुसैन प्रिंस ने सीतामढ़ी बिहार से मैसेज किया है, आपके साथ हैं शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, और कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, रुबीना वसीम और वसीम अक्रम, बेगम इशरत और डाक बाबू। अक्रम हुसैन प्रिंस का मैसेज हमारे पास आया है। इसके साथ हमारे पास मैसेज अब है कहाँ से, जखोद से मैसेज है, जखोद कहाँ पर है ये भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये मैंने पहली बार नाम सुना है। लिखने वाले हैं शंभु दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपका मैसेज मेरे इस कार्यक्रम में पहली बार आया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मैसेज किया। हरियाणा के हिसार से मैसेज कर रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक। अब देती हूँ वाणी को विराम, सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गीत।

अगला मैसेज हमारे पास अब है मध्य प्रदेश राजगढ़ से। लिखने वाले हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परिकृतिका और रमेश चंद्र डांगी। आपकी फरमाइश भी हमारे पास क्यों है, और एक मेरे पास सजेशन भी आया है और आपकी बात पर पूरा गौर किया जाएगा। मोहम्मद फरीद अंसारी ने हमें ये मुरादाबाद से लिखा है और कोशिश रहेगी कि आपकी ये जो आपका जो ये कहूँगी कि ये जो आपका निवेदन है, निवेदन नहीं कहूँगी, जो आपका सजेशन है उस पर काम ज़रूर किया जाए, क्योंकि हमारे पास आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लिसनर्स हैं जो हमारा प्रोग्राम सुनते भी हैं, मैसेजेस भी करते हैं और अपनी फरमाइश भी भेजते हैं। तो मुश्किल होता है कि एक तो सभी को शामिल किया जाए, दूसरी बात सभी की फरमाइश पूरी की जाए, तीसरी बात ये कि गाने की जो ड्यूरेशन है वो हमारे हाथ में नहीं हो सकती, और गाने को बीच में काट देना ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा जुल्म किया। कोई हो सकता है वो गीत सुन के मस्त हो रहा हो और हमने बस सोचा कि अरे नहीं, टाइम ज़्यादा जा रहा है, उसे काट दो। नहीं, ये गलत बात है। अगला मैसेज हमारे पास आया है केरलम से और लिखने वाले हैं गायत्री और श्रीनिवासन, और आपने बहुत अच्छी हिंदी में लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका मैसेज भी हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार आया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कार्यक्रम लगातार सुनते हैं, आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है राम शरण जी का, और आप हमें कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, आप हमें बुंदेलखंड से मैसेज कर रहे हैं। बुंदेलखंड से आपके साथ हैं साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अनिल मोहन ने हमें मैसेज किया है मुल्तानी ढांडा से, और नासिर शेख का हमारे पास महाराष्ट्र के श्रीरामपुर से मैसेज आया है। आपके साथ हैं नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, और मैसेज अगला ले लेते हैं हम बोधराज खोरवाल का। आप उत्तम नगर दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। इंद्रभान सिंह ने हमें मैसेज किया है कलारी से, आपके साथ हैं इंद्रभान, के साथ हैं अनुभव, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी और ही मैसेज हमारे पास तो पहुंच चुके हैं, लेकिन लेकिन लेकिन एक सुन लेते हैं गीत।

दिल्ली से हमारे पास मैसेज आया है उषा जी का, और उषा मोहन और अनिल मोहन का, और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। गुरमीत सिंह ने हमें मैसेज किया है साउथ एक्सटेंशन से, आपको गीत पसंद आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैसेज करके आप हमें बता रहे हैं। और जी हमारे पास जो मैसेज आया है अनिल ताम्रकर जी का मैसेज आया है, आप हमें कटनी से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं अमर, दिलीप, राजू, रजक, संजीव, प्रकाश, अरुण, संजय, सुनील, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। मैसेज हमारे पास आया है योरी योगी राज मस्के जी का, और आप हमें कर रहे हैं मैसेज विदर्भ से, आपके साथ हैं श्री हरि, इंदुमती, मल्हार, कविता, मोहन, विशाल, कुशाल, गोपाल, श्याम, गोविंद, मस्के और साथी। आपने कहा है कि किसी भी गीत में आपको शामिल कर लें, तो उम्मीद है आप सुन रहे होंगे और आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है नासिर शेख का, आप हमें महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज है सुदर्शन मुखी जी का, आपने हमें

0: मैसेज क्या है, सोनीपत से आपके साथ है सिमरन मुखिया नीता और आपने गीत की फरमाइश की है। मुखी साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं चेतना नहीं, मैं तलत हूँ, लेकिन आपने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास किशन सपकल जी का आया है और आप हमें बीड़ शहर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ है आशा, सोनिया, सायराज और विशाल सपकल। नारायण खर्चे जी ने हमें बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं और आप हमें मैसेज कर रहे हैं एयरपोर्ट इंदौर से, मध्य प्रदेश से आप मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक, संजना परी, स्वाति प्रज्ञा कुमारी, लड्डू देविका चौधरी और आपने कहा कि किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। राजेंद्र जजौरिया जटौलिया, माफ़ कीजिएगा, आप हमें मैसेज कर रहे हैं दिल्ली के नागलोई से। आपके साथ हैं उषा जटौलिया। मैसेज हमारे पास आया हाजी मजहर का और आपने हमें मऊ से मैसेज किया है। आपके साथ हैं रजिया बेगम और मोहम्मद सादिक अंसारी। गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और मुझे लगता है कि और कुछ नाम अभी शामिल करने रह गए हैं और गीत भी आपको सुनवाना है। तो जी क्या किया जाए, आपके नाम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। और हमारे पास जो अगला मैसेज आया है वो आ गया है जी, दिलावर खान का मैसेज शामिल हो चुका है। अहमद फूल वाले ने हमें मैसेज किया है मुंबई से। आपके साथ हैं दुखनी सदफ, आरजू जूही, इकबाल, इमरान और कापस हेड़ा नई दिल्ली से हैं, बिटिया आमना, नसरीन, अस्मा, परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद और समस्त फूल वाली फैमिली, आप पूरे परिवार का धन्यवाद है। तनु कुमारी ने हमें मैसेज किया है दल्लूपुरा दिल्ली से और आपके साथ हैं नीरज कुमार। आपने कहा है कि आप ये कार्यक्रम हर रोज़ सुनते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया हर रोज़ हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए और मैसेज करने के लिए भी। दिग्दर्शन गौड़ हमें मैसेज कर रहे हैं शोभापुर से, मेरठ से, और आपके साथ हैं कविता गौड़। आपने बहुत सारी फरमाइशें हमें भेजी हैं। भागुराम यादव हमें हरियाणा से मैसेज कर रहे हैं। नहीं जी, भागुराम यादव जी आज हमें कहाँ से, आज हमें आप तो संबलपुर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मैसेज हमारे पास ताज मोहम्मद साहब का भी आ चुका है, आपने हमें मैसेज किया है हरिद्वार उत्तराखंड से। आपके साथ हैं गुलाम साबिर और मेरा जहां। और शरफुद्दीन ने हमें मैसेज किया है बक्सर बिहार से। आपके साथ हैं फातिमा, सुमित, रमेश साहू, डुमराव से हैं डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर हैं, श्रद्धानंद आर्य और अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से ही हैं, राज एस डी अंसारी, अस्मा खातून और इकबाल मस्तान। पारिश अली का हमारे पास मैसेज आया है मुरादाबाद से। आपके साथ हैं सऊद शारिक अली, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी और आपने कहा है कि कोई भी गीत। तो जी अब गीत के हिसाब से तो एक ही गीत बच पाएगा क्योंकि आप लोगों के नाम लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगला मैसेज हमारे पास अकोला महाराष्ट्र से आया है, लिखने वाले हैं संतोष गीता भूषण विच्या और उनका पूरा परिवार। अब्दुल गफ्फार का मैसेज आया है खंडवा से। आपके साथ हैं अब्दुल हक डाबर, ज़ियाउल हक, मोहम्मद उमर डाबर और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मैं आपको सुनवा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर अब 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जाँच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ. सिंधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान पर 19-0 से शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। इसके साथ ही भारतीय महिला बैडमिंटन और टेबल टेनिस टीम ने भी अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया है।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: Climate change manav astitv ke anek staron par asantulan paida karta hai. Biodiversity loss, water stress aur land degradation isse gehrai se jude hain. Water stress wale kshetron mein farm ponds sthaniya samuday ke liye atyant upayogi siddh ho sakte hain. Ye na keval varsha jal ko खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Garjan 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties. Ukraine launched over 1,000 drones at Russia overnight, including hundreds targeting Moscow. Mayor of Moscow Sergei Sobyanin called it the largest ever drone attack on the capital, reporting damage to an oil refinery and a residential building. Mr. Sobyanin said 2 people were killed and 20 injured in the attack across wider Moscow region. Russia's defense ministry said its forces shot down 1,100 Ukrainian drones across the country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Kyiv used a range of missiles and drones in the attack, including Ukraine's domestically made Flamingo and Pelican missiles, to hit oil and logistics facilities. Central Board of Secondary Education CBSE organized an interactive talkathon on the theme Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat yesterday on the call of Prime Minister Narendra Modi for a drug-free India. The CBSE said the 45-minute program brought together experts, educators and students

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10 15 सेकेंड हुए हैं।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट आज के कार्यक्रम की, यानी कि कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। और उस सफर की हम सफर हूं मैं आज आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी गीतकार, एक ऐसी फनकार की, जिन्होंने न सिर्फ बेहतरीन गीत दिए बल्कि वो एक बेहद ही कामयाब अभिनेत्री बनना चाहती थी, बन नहीं पाई, लेकिन कवियत्री तो थी वो। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर गीतकारों की, बात करते हैं जो गीतकार होते हैं उनकी, तो हमारा दिमाग जब चलायमान होता है तो सबसे पहले नाम आते हैं साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी या फिर गुलजार साहब। हमारी जुबान पर इन लोगों का नाम पहले आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पुरुषों वाले दबदबे में एक ऐसी महिला भी है जो इस क्षेत्र में अपनी कलम का लोहा मनवा चुकी है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक सशक्त हस्ताक्षर को याद कर रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गीत दिए बल्कि मंच की एक बेहद कामयाब कवित्री भी कहलाई। जी हाँ, आज बात हो रही है मशहूर गीतकार माया गोविंद जी की। तो आज का सुरों का सफरनामा पूरी तरह से आधारित है, डेडिकेट है गीतकार माया गोविंद की ओर।

इस शुरू के सफ़रनामे में हमारे साथ सफ़र कर सकते हैं। अपने ईमेल्स के ज़रिए अपने दिल की बात हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी, ये वो माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं हमारे साथ।

दोस्तों लखनऊ के नवाबों के शहर में 17 जनवरी 1940 को जन्म हुआ था कवित्री और गीतकार माया गोविंद का। माया जी को बचपन से ही कविताएं लिखने का भरपूर शौक था। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि वो एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ शुरू करा तो देखते ही देखते वो मंच की जान बन गई, और यही जान आज हम, जी हाँ, शुरू में खास सफरनामा कार्यक्रम में इन्हें लेकर आए हैं, मशहूर कवित्री और गीतकार माया गोविंद।

दोस्तों कहते हैं ना कि हुनर एक न एक दिन अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। हुआ ये कि माया जी की मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता रामानंद सागर जी से हुई। उन्होंने उसके हुनर को पहचाना और फिर फिल्मों में गीत लिखने का मौका दिया और माया जी ने करीब 300 से भी ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत लिख डाले। उनकी कलम ऐसी निकली कि लाइनें कभी होठों की मुस्कान बनी और फिर कभी आंखों की नमी बनकर आंसुओं के रूप में ढुलक गईं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर गीतकार माया गोविंद जी की। माया जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। एक तरफ वो भवंडर जैसी गंभीर फिल्मों के लिए गाती थी सूफी और दार्शनिक गीत, वहीं दूसरी तरफ वो बप्पी लहरी और अनु मलिक जैसे संगीतकार के लिए मज़ेदार और चुलबुले गीत लिख लेती थी। ऐसे गीत जो सीधे डिस्को में बजते थे। जी हाँ, उन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और दलाल जैसी फिल्मों में भी अपने शब्दों का ऐसा जादू चलाया कि लोग थिरकने पर मजबूर हो गए। जब वो लिखती थी तो किरदार की उम्र, उसकी स्थिति, फिल्म की कहानी पूरी तरह से अपने शब्दों में ढाल लेती थी। महिला होने के नाते उनके गीतों में भावनाओं की गहराई थी और साथ ही साथ नजाकत भी थी। वो उन्हें अपने बाकी गीतकारों से बिल्कुल अलग बनाती थी। तो ऐसी थी मशहूर गीतकार और कवित्री माया गोविंद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और हम बात कर रहे हैं आज गीतकार माया गोविंद जी की। माया जी ने न सिर्फ फिल्मों के लिए लिखा बल्कि भारतीय टेलीविजन में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। महाभारत जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक सीरियल में भी उन्होंने दोहे और श्लोक लिखे। इस बात से ये तो पता चलता है कि उनकी हिंदी के साथ साथ संस्कृत की भी बहुत ही गहरी समझ थी। उनकी लिखी चंद पंक्तियां कुछ

इस तरह से हैं कि मुंदरी उरझ गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। मुंदरी उलझ गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। ललिता ने पाई लई मंजरी सहेली लई, ललिता ने पाई लई मुंदरी सहेज लई। श्याम जो को जाए दई हीरे की मुंदरिया, बोली इटे लाए कछु भेंट तो करो निकारो। बोली इठ लाए कछु भेंट तो करो निकारो। श्याम बोले श्याम चूमी लेव मोरी या अंगूरिया। चूमत हंसत जात ललिता कहत जात, राम करे खोई जाए तोरिया बसुरिया। उन्होंने अपने शब्दों में कितनी खूबसूरती से कहा कि श्री कृष्ण की हीरे की अंगूठी राधा जी के बालों के लट में उलझ कर खो गई। कृष्ण अपनी अंगूठी खोने को बेचैन हो गए, ढूंढते रहे नहीं मिली। तब जाके ललिता यानी कि राधा जी की सखी को वो मुंदरी अंगूठी मिल गई, उसने सहेज कर श्री कृष्ण जी को वापस दे दी। जब ललिता इठला कर इनाम भेंट में मांगती है तो कृष्ण मुस्कुरा कर अपनी उंगली आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं इसे ही चूम लो। हंसते हंसते चूम लेती हैं ललिता और आशीर्वाद या उपहास में कहती हैं भगवान करे तुम्हारी ये बांसुरी ऐसे ही कहीं खो जाए। तो देखिए ना कितने खूबसूरत तरीके से माया गोविंद जी ने अपने शब्दों के जरिए पूरा एक परिदृश्य हमारे सामने उकेर दिया। माया गोविंद जी को साहित्य टेलीविजन और सिनेमा में बहुत सारे शानदार योगदान के लिए पुरस्कार भी मिले थे, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए पेशे खिदमत है, अलका याग्निक और किशोर कुमार की आवाज़ है। इस गीत को एंजॉय कीजिए और गीत के उस पार आपकी दोस्त सरिता कर रही है आपके ईमेल्स आपके संदेशों का इंतज़ार।

दोस्तों, माया जी को साहित्य और टेलीविजन सिनेमा के लिए बहुत सारे शानदार पुरस्कार मिले। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया। एक ऐसी सशक्त कवयित्री होने के नाते उन्हें उनके जीवन काल में देश भर की कई प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं और हिंदी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। फिल्मों में बेहतरीन गीत लिखने के साथ साथ बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक टीवी सीरियल महाभारत और विष्णु पुराण में उनके द्वारा लिखे गए दोहे और श्लोक और भजन, इनके लिए उन्हें विशेष रूप से सराहा गया और सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा के संगीत और मंच कविता में उनके दशकों लंबे बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें श्रेष्ठ गीतकार और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया।

0: दोस्तों, वक्त का पता ही नहीं चलता और जब इतनी मीठी और सुहानी यादें हों तो हमारा कार्यक्रम कब अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाता है हमें समय का पता ही नहीं चलता। 22 अप्रैल 2022 को माया गोविंद जी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। हम सब से रुखसत लेकर वो दूसरी दुनिया में विलीन हो गई। लेकिन यकीन मानिए, सच्चे कलाकारों की कभी भी मौत नहीं होती। वो अपने काम, अपनी कला, अपने शब्दों के जरिए हमेशा हमारे दिलों पर राज करते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नीचे सुनते हैं एक और खूबसूरत सा बेहतरीन सा गीत।
1: There's something I want to tell you, girl. I don't know what it is. I just can't. You've done some kind of magic. Magic's gone.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को है। अब पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आधारित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक के वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को बड़ोदरा में महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय ने साफ किया है कि भारत के चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु द्वारा दी गई जानकारी, तथ्यों और दस्तावेजों की ठीक से जांच कर ली गई है। एक प्रेस नोट में निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि डॉ. संधु की वोटर लिस्ट एंट्री को मंजूरी दे दी गई है और इसे विधानसभा क्षेत्र 38 दिल्ली कैंट की फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बरकरार रखा गया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। रूस में यह नया हमला ऐसे समय हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में R. प्रज्ञानंद और D. गोकेश ने अनिश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। ओपन कैटेगरी में R. प्रज्ञानंद और D. गोकेश की शानदार जीत की बदौलत भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से अहम जीत दर्ज की। दूसरी ओर महिला टीम को पोलैंड के हाथों 1.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि R. वैशाली को अलेक्जेंड्रा माल्टसेवस्किया ने हरा दिया। अवंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख और केनेरू हम्फी के मैच ड्रॉ रहे। इस बीच उज्बेकिस्तान की टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए 8वीं वरीयता प्राप्त हंगरी को 4-0 से हराया। अब उज्बेकिस्तान, जर्मनी और भारत तीनों ही 10-10 मैच पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening. President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
4: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all, but unfortunately your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia, and we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive partnership between the two countries.
3: Election Commission's Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Nagaland has recorded an 88.38% submission of enumeration forms during the enumeration phase from 16th of last month to 14th of this month. Of the 13,57,208 pre-SIR electors, a total of 11,99,456 electors submitted their enumeration forms. Chief Electoral Officer's Office said genuine electors who were unable to submit their enumeration forms can seek inclusion during the claims and objections period from 20th of this month to 20th of next month using Form 6 and the prescribed declaration. The final electoral roll is scheduled to be published on 22nd November this year. In a historic first, Ang, directed by Naga filmmaker Teja Rio, has won the Platform Prize 2026 at the Toronto International Film Festival, TIFF. Ang was one of 12 films selected for this year's Platform Program, TIFF's only competitive section. Beginning with the 2026 prize, winning the TIFF Platform Prize gives a non-English language film a direct pathway to eligibility for consideration for the Academy Award for Best International Feature Film. In the fifth round of the 46th Chess Olympiad, R. Pragyananda and D. Gukesh secured crucial wins over Anish Giri and Irvin Lamy, respectively, to help India seal a 3-1 win over Netherlands at Samarkand.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन, खूबसूरत गोल्डन एरा के वो गीत जो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आई मिलन की बेला। आवाज हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे गीत सुनहरे कार्यक्रम। गीतों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया है मदन मोहन ने और फिल्म का नाम है वो कौन थी।

अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में ये गीत। नीचे सुनते हैं अगला गीत फिल्म रूप सुंदरी से। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर की।

गगन भेजो दिशा।

अभी आप सुने, आपने सुना जहां आरा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और आयशा भोसले की आवाज में। नीचे सुनते हैं अगला गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की। ओपी नैयर का संगीत है, गीतकार हैं SH बिहारी। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म संगम से। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार है शैलेंद्र। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और उषा तिमोती की आवाज़ के साथ ही ये गीत सुनाई कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंझू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति कहीं और चले गए या अन्य श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सर्विस वोटर सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चल रही लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरिबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोस ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि FBI और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की, जिससे भारत ने नीदरलैंड्स पर 3-1 से जीत पक्की कर ली है। लेकिन भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi last evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
3: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur yesterday. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force as conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh Anti-Terrorism Squad in Varanasi. Brijesh Ganju, alias Gopal Singh Bhokta, was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly 2 decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion and targeted attacks on security forces. Central Board of Secondary Education CBSE organized an interactive talkathon on the theme Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat yesterday on the call of PM Modi for a drug-free India. The CBSE said the 45-minute program brought together experts, educators and students to discuss issues related to substance abuse, prevention and the importance of making healthy and responsible choices. The initiative aimed to directly engage students through social media platforms. CBSE invited questions from students and they raised questions concerning mental health, peer pressure and steps for de-addiction. India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy rainfall over Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana over the next 2 to 3 days. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky today. India made a strong start at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning 2 silver medals in shooting on the opening day yesterday. Trio of Elavanil Valarivan, Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10-meter air rifle team event, while Elavanil added another silver in the individual event. The President and PM have congratulated the athletes on the feat. Suchika Tarial created history, becoming the country's first athlete to assure an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60kg semifinals. In cricket, Indian women's team stormed into the final after a 114-run win over Bangladesh. They will take on Sri Lanka in the gold medal match tomorrow. Indian women's badminton team advanced to quarter-final with a 3-0 win over Kazakhstan. In hockey, Indian men's team defeated Indonesia 13-1 in their Pool A match, while Indian women's team beat Uzbekistan 19-0 in their Pool B opener. In the fifth round of the 46th Chess Olympiad, R. Pragyananda and D. Gokesh secured crucial wins over Anish Giri and Erwin Lamy, respectively, to help India seal a 3-1 win over Netherlands at Samarkand. On the other hand, Indian women slumped to a 1.5-2.5 loss to Poland after R. Vaishali was outplayed by Alexandra Maltskevaya. That is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2:10 हुए हैं। नीचे सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। आज के गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन की आवाज में गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ। जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल के साथ।

0: Hey, come on now, baby.
1: दोस्तों नॉनस्टॉप गीत संगीत कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 3 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतदाता गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,97,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं की अनुपस्थिति, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। हेती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हेती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इस हत्या ने कैरेबियन देश को हिलाकर रख दिया था। फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी रेडिंग क्विनोन्स ने के मुताबिक इन संदिग्धों पर फ्लोरिडा में मुकदमा चलेगा। उन्होंने कहा कि FBI और अन्य एजेंसियां ये पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि देश के प्रमुख की हत्या से फायदा उठाने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए। ये प्रत्यर्पण ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका इस मामले में कई अन्य संदिग्धों पर मुकदमा चला रहा है और उन्हें सजा सुना रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समरकंद में चल रहे 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें राउंड में आर प्रज्ञानानंद और डी गुरकेश ने अनीश गिरी और इरविन अलामी के खिलाफ अहम जीत हासिल की।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष P. Abraham।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताज़ा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: चुनाव अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे गोटू वैद्यम उषा विजय कुमार रागम चारुकेसी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना उषा विजय कुमार का रागम चारुकेसी में गोटू वैद्यम वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह 5 बजने को हैं और अब आप समाचार सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम जिन्हें आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं।

अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे खास कार्यक्रम आओ योग करें, और उसके बाद 5:20 पर आपको सुनाएंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर सुबह हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस खास कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पवार टंडन का बांसुरी वादन राग।

सुबह 10:00 माफ कीजिएगा, सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना और 6:40 पर सुनेंगे धर्म ग्रंथों से प्रेरणा कार्यक्रम चिंतन में आज का ये विषय होगा। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ और 6:55 पर सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: सुबह 7:10 पर कार्यक्रम संगीतिका होगा और 7:30 पर आप सुनेंगे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, ये वो कार्यक्रम थे जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में

महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस स्ट्रीट केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। नागालैंड में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चले मतगणना गणना चरण में 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। एसआईआर से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। इस गणना प्रक्रिया में 28,944 मृत मतदाताओं की पहचान की गई, जबकि 1,23,749 मतदाताओं को अनुपस्थित, कहीं और चले गए या अन्य श्रेणियों में रखा गया। इसके अलावा 5,059 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत पाए गए। इस प्रक्रिया के बाद कल मसौदा मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें सर्विस वोटर्स सहित 12,06,457 मतदाता शामिल हैं। सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या नगरी अब धार्मिक, पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से अयोध्या में विकास के नए दौर की शुरुआत हुई है और ये नगरी एक बार फिर सनातन धर्म के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। रूस में युद्ध के दौरान हुए पहले संसदीय चुनाव के लिए मतदान कल रात समाप्त हो गया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का कोई विरोध नहीं था और क्रेमलिन का दबदबा और मजबूत होना लगभग तय है। 3 दिन तक चले इस सप्ताह के आखिरी दिन यूक्रेन की सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की ओर दागे गए थे। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की जुलाई 2021 में हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 18 संदिग्धों को रविवार को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया गया। इसके साथ ही हैती में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 5:10 और पूरे 30 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते

हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी उष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धउष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धउष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना हमें आपे में जीवन जीना है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे पोस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस तीन नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर।

और जब पेट में गुड़ गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़ गुड़ में घर जाना इज ओके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़े, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा

0: दादी रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न कर लें, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं,
1: ना
0: खाऊं
1: खाऊं
0: खाऊं कि ना खाऊं,
1: जी
0: है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है, खाऊं कि ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाओ। ठीक
1: बिल्कुल
0: है, ये रूल याद रखना है, खाऊं कि ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं कि ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ। ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना
1: जी
0: चाहूंगी
1: प्रतिष्ठा जी
0: कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर।
1: कम
0: तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत सा। इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना,
1: हाँ
0: पेट तो
1: जी
0: इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो
1: जी
0: निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रहेंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीनवेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5:30 और पूरे 20 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रवर टंडन का राग ललित में बांसुरी वादन।